0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमे आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002।
2: इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636। दैट्स 416-625-2636।
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी,
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: ये जनाब ब्रैम्पटन अप्लायंसेस .com इनकी वेबसाइट है, .ca वेबसाइट है, और बोवर्ड जकूजी का इंटरसेक्शन है, और कमाल कमाल के आपको यहाँ पे डील्स मिलती हैं। हमारी कम्युनिटी की अप्लायंसेस के बारे से देखें तो बहुत बड़ी ये शोरूम है, सबसे बड़ा शोरूम है, और स्पेशल डील्स आती हैं हमेशा ही। सुल्तान साहब जो हैं खास तौर पर इनके पर, जो फिर क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड बहुत ज़्यादा जब सेल्स होती हैं तो वहाँ पर प्रमोशन जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। सुल्तान राणा साहब ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम।
5: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्र। कोई जबरदस्त डील्स टीवी किससे शुरू करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी डील्स बताएं हमारे सुनने वालों के लिए।
5: जी भट्टी साहब, क्योंकि सैमसंग कंपनी जो है जी फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो सैमसंग ने ये गारंटी की है कि हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर में कुछ एक तो एक्सक्लूसिव डील्स हैं जो ब्रैम्पटन टीवी पे मिली हैं, जिसमें मैं एक डील देने जा रहा हूँ बिग स्क्रीन टीवी में 85 इंच, ये भी QLED है, क्वांटम डॉट QLED सैमसंग का $2000 वाला, सिर्फ $1299 में।
4: जबरदस्त,
5: $700 आप 85 इंच पे सेव करेंगे जी। 55 इंच लेना है तो भी आपको $399 में मिलेगा। 65 इंच लेना है तो भी आपको $699 में मिलेगा। तो बिग स्क्रीन टीवीज को जब प्रमोट किया जा रहा है, प्राइस रिड्यूस करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो फिर एडवांटेज उन कस्टमर्स को भी है जिन्होंने 55 या 50 इंच टीवी लेने हैं या 65 इंच टीवी लेने हैं। जरूर विजिट करें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। या हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी डील्स भी मिलेंगी, और फिर वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है वो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल, आप 98 इंच का बिग स्क्रीन टीवी अगर सेलेक्ट करेंगे $3500 वाला, सिर्फ $1999 में मिलेगा। $1500 आप 98 इंच सैमसंग टीवी पे सेव करेंगे, और ये $1999 भी 6 मंथ में आपने पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं जी, नो इंटरेस्ट, फ्री होम डिलीवरी। बोवेड एंड चिंकूजी पे है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। 9054502828, 9054502828 जी,
4: 9054502828 इनके रास्ते के नंबर है। अच्छा, अप्लायंसेस में बताइएगा कि उसमें भी कोई स्पेशल डील चल रही है?
5: बिल्कुल जी, और खास तौर पे भट्टी साहब, मैं उन कस्टमर्स को, उन लिसनर्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जिनको न्यू घर की क्लोजिंग जिनकी सर पे आ गई है, क्योंकि बहुत सारी क्लोजिंग्स हो रही हैं। अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो आज हमारी डिलीवरियां स्केड्यूल हो रही हैं फॉर टुमारो, जो के वेलन स्टोनी क्रीक एरिया में है।
4: ओके,
5: उसके बाद हमारी डिलीवरी स्केड्यूल हो रही है जी किचनर कैम्ब्रिज एरिया में। फिर हमारी डिलीवरी स्केड्यूल हो रही है इस वक्त मार्कम, एजेक्स एंड पिकरिंग में। तो जो भी कस्टमर इस वक्त ये बंडल पैकेजेस ले रहे हैं, जिनके घरों की क्लोजिंग्स आ गई हैं या हो रही हैं, वो जरूर इन बंडल पैकेजेस का फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें कोई 10, 20 या 30 नहीं, 40% का डिस्काउंट है जो इस वक्त एक्सक्लूसिव ऑफर किया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, अगर 3-पीस किचन बंडल की बात करें तो सिर्फ 3-पीस किचन बंडल ही $5000 वाला $2999 में लेके $2000 आप किचन में सेव कर लेंगे जी।
4: सही।
5: और उसके साथ साथ अगर आप लॉन्ड्री में स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर या साइड बाई साइड वॉशर एंड ड्रायर फ्रंट लोड लेना चाहते हैं $2200 वाला, $1499 में लेके $700 आप लॉन्ड्री पे सेव करेंगे और $2,000 किचन में सेव हुआ तो फाइव होम अप्लायंसेस पे $2,700 की सेविंग होगी। फ्री होम डिलीवरी है 9054502828 हमारा नंबर है जी। बिल्ट इन किचन लेना है अगर तो भी मिस नहीं करना, क्योंकि जब 40% का डिस्काउंट मिलेगा तो बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन बॉश कंपनी का जर्मन ब्रांड है, आपको $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में। और अगर आप 48 इंच या 42 इंच पैनल रेडी फ्रिज लेना चाहते हैं जो कि $13,000-14,000 के हैं, सिर्फ $9,900 में आपको 42 इंच पैनल रेडी फ्रिज। और अगर आप डिशवॉशर लेना चाहते हैं सिंगल पीस, कई दफा आपको डिशवॉशर की जरूरत पड़ती है स्टेनलेस स्टील की, तो वो आप

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, ए टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
7: कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेशन में कल्चर, कम्युनिटी और डाइवर्सिटी का जश्न मनाएं। हमारे साथ जुड़े संडे जून 21 को शाम 5 बजे से 11 बजे तक अल्बर्ट कैंबल स्क्वायर इन स्कारबोरो नियर स्कारबोरो टाउन सेंटर पर। लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस, डिलिशियस फूड, एंटरटेनमेंट और फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज का मजा लें, क्योंकि हम उन अनेक कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कनाडा को वाइब्रेंट और स्ट्रांग बनाते हैं। क्या आप एक स्पॉन्सर, वेंडर या परफॉर्मर बनने में इंटरेस्टेड हैं? CTC को कॉल करें एट 6473001973 पर। कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेशन, bringing communities together through culture, unity and inclusion. We look forward to seeing you there.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: आप सुन रहे हैं CMRF 9, Monday to Friday, 9 AM to 11 AM. Stay tuned.
4: जगाती है कयामत कोई।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेशन में कल्चर, कम्युनिटी और डाइवर्सिटी का जश्न मनाएं। हमारे साथ जुड़े संडे जून 21 को शाम 5 बजे से 11 बजे तक अल्बर्ट कैंबल स्क्वायर इन स्कारबोरो नियर स्कारबोरो टाउन सेंटर पर। लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस, डिलिशियस फूड, एंटरटेनमेंट और फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज का मजा लें, क्योंकि हम उन अनेक कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कनाडा को वाइब्रेंट और स्ट्रांग बनाते हैं। क्या आप एक स्पॉन्सर, वेंडर या परफॉर्मर बनने में इंटरेस्टेड हैं? सीटीसी को कॉल करें 6473001973 पर। कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेशन, bringing communities together through culture, unity and inclusion. We look forward to seeing you there.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Dux.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस, साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर It deserves.
5: आप सुन रहे हैं CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Dux.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट एशिया गोल्डिंग.com।

0: लेट डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विथ $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स It deserves.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Listen to us tours around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
2: कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेशन में कल्चर, कम्युनिटी और डाइवर्सिटी का जश्न मनाएं। हमारे साथ जुड़े संडे जून 21 को शाम 5 बजे से 11 बजे तक अल्बर्ट कैंबल स्क्वायर इन स्कारबोरो नियर स्कारबोरो टाउन सेंटर पर लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेज, डिलिशियस फूड, एंटरटेनमेंट और फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज का मजा लें, क्योंकि हम उन अनेक कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कनाडा को वाइब्रेंट और स्ट्रांग बनाते हैं। क्या आप एक स्पॉन्सर, वेंडर या परफॉर्मर बनने में इंटरेस्टेड हैं? सीटीसी को कॉल करें एट 6473001973 पर। कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेट, bringing communities together through culture, unity and inclusion. We look forward to seeing you there.
3: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sioux and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
5: गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
6: रनो रेडी।
7: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: ये है टोयोटा टकोमा की आवाज वीकेंड ट्रेल पर विद टू सुपर स्पीड स्नो मोबाइल्स इन टो और ये भी टकोमा की स्कूल जाते हुए दो फुल ऑन मस्ती वाले बच्चों के साथ दो वर्ल्ड्स एक टकोमा पावरफुल आईफोर्स इंजन के साथ आप भी एक्सपीरियंस कीजिए ये टाइम है टोयोटा का लीज 2026 टकोमा डबल कैब SR5 फ्रॉम $124 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 6.69% विद $4,900 डाउन विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे
1: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400 एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन प्राइवेट बीच इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही आज ही अपॉइंटमेंट लें कॉल रमेश एट 416-990-2462 एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वे योर कार गेट्स अ It deserves.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेशन में कल्चर, कम्युनिटी और डाइवर्सिटी का जश्न मनाएं। हमारे साथ जुड़े संडे जून 21 को शाम 5 बजे से 11 बजे तक अल्बर्ट कैंबल स्क्वायर इन स्कारबोरो नियर स्कारबोरो टाउन सेंटर पर। लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस, डिलिशियस फूड, एंटरटेनमेंट और फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज का मजा लें, क्योंकि हम उन अनेक कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कनाडा को वाइब्रेंट और स्ट्रांग बनाते हैं। क्या आप एक स्पॉन्सर, वेंडर या परफॉर्मर बनने में इंटरेस्टेड हैं? CTC को कॉल करें एट 6473001973 पर। कैनेडियन मल्टीकल्चरल डे सेलिब्रेशन, bringing communities together through culture, unity and inclusion. We look forward to seeing you there.
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपेटिव रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Gold खरीदना है तो यह perfect time, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटबीकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 416-746-3795, 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
6: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: Oh, Toronto, get ready! This is CMR.

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड। एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड। न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड।
3: यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा।
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक। पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम।
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई।
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम। स्टे ट्यून्ड।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहाँ न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड, और फीफा वर्ल्ड कप की खबरें भी अनलिमिटेड ही रहती हैं ऑन साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। ओ माय गॉड, व्हाट अ गेम दैट वाज यस्टरडे, माय गॉड, जितना कहा जाए उतना कम। सो प्राउड टू बी अ कैनेडियन एट दिस पॉइंट। कतर के साथ 6-0, मतलब ऐसी गेम जिसने नहीं देखी है, मैं कहता हूं कि भाई रीप्ले में पूरी गेम, 90 मिनट्स की गेम विद द ओवरटाइम एंड एवरीथिंग, यू शुड बी वॉचिंग द गेम बिकॉज दिस वॉज स्पेक्टैकुलर जो कल हमने देखा है। एंड ऑल द मैसेजेस हमारे लिसनर्स, कई हमारे लिसनर्स मेरे साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो के हमारे लिसनर्स हैं जो गेम के दौरान मेरे साथ, लाइक वी वर टॉकिंग टू ईच अदर बैक एंड फोर्थ, एंड दिस वॉज समथिंग दैट अनहर्ड ऑफ, अनसीन। And it, you know, the Canadian team deserves all the respect and love. More and monetarily be, they should be rewarded and awarded for what they did. So whether they reach further or kya hota hai, obviously they will reach the next stage for sure. Like in, you know, whatever they did last evening was unbelievable. 416-593-0055 studio ka number hai. 22 degree ka temperature hai. Feels like 23. और धन धनाधन गोल फिल्म से गीत हमने जिस गीत से शुरुआत की है, और प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने भी टीम को एड्रेस किया है आफ्टर द विन, एंड इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल कैनेडियंस, जो हम जहां जहां से हम आते हैं हम कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं। और 11 की सॉकर की टीम में सिक्स ऑफ आवर प्लेयर्स आर फ्रॉम ब्रैम्पटन, सो बीइंग अ ब्रैम्पटोनियन, और अक्सर हम ब्रैम्पटन की बैड ड्राइविंग और क्राइम एंड ऑल दैट स्टफ की बात करते हैं, बट यू नो व्हाट, टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट ब्रैम्पटन, टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट कनाडा, एंड यू नो कनाडा विंस इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच, और वो भी ऐसे नहीं 1-0 से, 6-0 से। सो यू नो आई थिंक आज सारे के सारे कैनेडियंस जो हैं रिजॉइस कर सकते हैं, एंड जो जो आपकी फेवरेट चीज़ है वो आज आप करें। अगर गुलाब जामुन खाना आपका फेवरेट शौक है तो आज 2-4 गुलाब जामुन खा लें। बियर पीने का शौक है तो एक बियर तो बिल्कुल कनाडा के नाम बनती है। डू व्हाटएवर यू वांट एंड यू नो जस्ट इन्जॉय दिस मोमेंट, बट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये पक्की बात है। एंड बाहर तापमान आज 23 डिग्री तक पहुंचेगा, टुमारो 24, संडे 24 एंड मंडे को 19 मैक्सिमम टेम्परेचर्स, कुछ इसी तरह से अगले 7 दिन के टेम्परेचर्स रहने वाले हैं। एंड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, एंड राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं। जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम इन GTA, बियॉन्ड GTA, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी आगे चलकर हमारे साथ होंगे विद सम मोस्ट अमेजिंग डील्स। एंड मैं आपके थोड़े सी पैसे की बचत यहां पे करना चाहता हूं, होम एंड ऑटो इंश्योरेंस में खासकर। आपकी अगर रिन्यूअल आ रही है, आपको तलाश है दो चीजों की, कवरेज बेहतरीन हो और रेट्स बेहतरीन हो, ऑल स्टेट की गुरविंदर बामरा से संपर्क अभी के अभी कर लीजिए। 647-303-3207 पर गुरविंदर बामरा, ऑल स्टेट इंश्योरेंस will give you the best rates and best coverages. I'm going to take a very short break. सवा बारह की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में, लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक। इस साल की जबरदस्त ऑफर, एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें donvalleynorthlexus.com या विजिट करें इन पर्सन। A proud member of Wayne's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: काव्य होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Cool down with Brampton Fire this summer at Beat the Heat. Enjoy karein fire trucks, stores, family activities and important safety tips at locations across Brampton from 7 July to 19 July. Visit karein BramptonFire.com for the full schedule.
3: Don Valley North Hyundai ab loyalty offers sabhi customers ke liye extend kar raha hai. Paye 1% lease rate reduction, 0.5% finance rate reduction or $500 cash purchase incentive. Plus, Kona EV per stackable cash up to $2,500 tak ka fayda. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit kare donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Avenue or Denison Street, Markham Park. A proud member of Wayne's Auto Group.
4: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.
5: Good afternoon. Shuru karte hain South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headlines.
2: Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Your Care, McVean Dental Care, Brampton TV and Appliances, Win Lifetime Trading. Shuru karte taza tareen headlines. Election se theek pehle, Sweden ke Prime Minister par fresh corruption allegations lage. Gaza health system collapse hua. Palestine ne India aur dunya se madad ki guhar lagai. Vice President J.D. Vance ne Israel ko phatkar lagai for criticizing the Iran deal. Dono allies ke beech rift ki khabre tez hui. J.D. Vance ne kaha, Israel is deeply isolated and its leaders fail to appreciate American diplomatic and military support. Swiss ceremony se pehle, US lifts Iran ports blockade. 194-year-old tortoise becomes world's oldest known land animal. G7 summit par French President Macron ka Prime Minister Modi ko goodbye. Bole, mujhe bahut khushi hui aap aaye. Mushtaba Khamenei ka kehna hai ki desperate Donald Trump ne Iran deal ke liye har tarah ke leverage ka istemal kiya. Trump ne Obama era Iran deal ko tear up kiya. US Iran ne Islamabad Memorandum of Understanding ko sign kiya. Largest Ukrainian attack ne oil refinery ko hit kiya. Moscow residents complain of black rain. Study ke anusar, bird flu kills more than 75% of baby seals on remote Australian island. Aur local samacharon mein, Canada's affordability crunch could help Zeller's revival in Canada. US consulate shooting ke 19-year-old suspect ke arrest ke baad new details emerge. And South African wildlife park mein hua accident, Canadian shot dead during picnic. Zellers is back in Toronto. Mississauga home mein elderly parents ki death mein 46-year-old is wanted. Aur Frank Strona ke sexual trial mein judge to deliver the ruling today. Dusri aur Bharatiya samacharon mein 22nd June ke Pushpa 2 stampede case mein Hyderabad ki adalat ne actor Allu Arjun ko summons bheje. China ne duniya ka largest dam banana shuru kiya. India plans counter in Arunachal Pradesh. India ke AI data centers ke plan ko heat aur direct climate change ka hoga bura asar. Climate related disruptions ka exposure agli generation ke data centers ko affect karega. Birthday celebrate karne shaks ne ki trekking phir Lonavala gorge mein gir kar hui maut due to the damp and slippery surface at the site. Delhi mein garmi ka kehar jari hai. Delhi ke Nizamuddin area ke park mein 40-year-old man shot and wounded. Congress ne Karnataka ke upper house polls mein extra seat jeeti. Cross voting ka shak hai. Fiscal deficit below 3% in 10 states. 13 states in ne 2024-25 mein revenue surplus dekha. CBI ne 2021 Bengal post poll violence murder case ke key accused ko kiya arrest. Isse pehle farar tha. और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने SIT फॉर्म की टू प्रोब अलेज्ड थेफ्ट ऑफ डोनेशंस टू राम टेंपल इन अयोध्या. और दिल्ली को फर्स्ट डेडिकेटेड वुमेन्स पुलिस स्टेशन हासिल हुआ, लोकेटेड इन सब्जी मंडी एरिया. टेररिस्ट को पनाह देने के मामले में जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉई को हिरासत में लिया गया. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से रिपोर्ट के अनुसार कराची येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट में ओवर 8 बिलियन रुपीज इरेगुलरिटीज आए सामने. चेक्स एंड बैलेंसेज हैव बीन इग्नोर्ड. फील्ड मार्शल मुनीर और घाना के CDF ने डिफेंस कोऑपरेशन पर की चर्चा. विजिटिंग डिग्निटरी ने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की एंड रोल इन रीजनल स्टेबिलिटी एज वेल. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार ने वार्न किया कि इंडिया के इंडस रिजर्वोयर एक्सपेंशन प्रॉब्लम आ सकती है. वाटर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्शन के रूप में नहीं देख सकते. इंडिया ने वाटर को इलीगली वेपनाइज यानी कि हथियार बनाया है. इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना लाजमी है. प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने कहा लैंडमार्क इस्लामाबाद MOU टू गो लॉन्ग वे इन रीबिल्डिंग ईरान. ईरान टू इंस्टेंटली रीओपन हॉर्मूज. USB ब्लॉकेड को फॉरन लिफ्ट करेगा. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बजट के लिए सेनेट सीक्स इंक्रीज ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड. रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स. राइजिंग टेंशन के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की. अफगानिस्तान का दावा है कि ऑल प्री आइडेंटिफाइड टारगेट्स वर सक्सेसफुली हिट, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान के क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स के दावे को सिरे से खारिज किया. और गोहर ने कहा कि KP बजट नॉट पास्ड एट सेंटर्स रिक्वेस्ट बट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी. स्पोर्ट्स जगत से फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में मेक्सिको ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया. कनाडा बीट्स कतर 6-0. स्विट्जरलैंड ने बॉस्निया को 4-1 से हराया. चेक रिपब्लिक ने साउथ अफ्रीका द गेम एंडेड एट 1-1 ड्रॉ. फीफा वर्ल्ड कप मैच में आज USA ऑस्ट्रेलिया है आमने सामने. स्कॉटलैंड प्लेज मोरक्को. ब्राजील वर्सेज हेती एंड टर्की और पराग्वे एज वेल. BCCI ने स्पष्ट किया ऑन लाइकली रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल टाइज विद बांग्लादेश. बॉलीवुड खबरों से लीगल नोटिस के बाद फिल्म काला हिरन के डायरेक्टर का कहना है कि सलमान खान कोई भगवान नहीं है. ही इज इन गॉड. ही कैंट स्टॉप मी फ्रॉम रिलीजिंग द फिल्म. फिल्म अल्फा के एक्शन डायरेक्टर ने आलिया भट्ट के ट्रोलिंग को बैक किया और कहा आलिया पुट्स इन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. एंड शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 ने आज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी. क्रिटिक्स ने दिए 4 स्टार्स. कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड स्टार्ट ली. और दूसरी ओर अक्षय कुमार और करण जौहर ने ऐलान किया 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट पूल फॉर पिच टू गेट रिच Season 2. राम गोपाल वर्मा टू डायरेक्ट दया नायक बायोपिक. टॉक्स आर ऑन. एंड करीना कपूर पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा लॉक्स September 18th, 2026 रिलीज डेट. और सलमान खान के काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा काला हिरन के मेकर्स हैव नो राइट टू मेक अ फिल्म ऑन सलमान खान लाइफ विदाउट हिज परमिशन. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और गीत संगीत का कारवां चलेगा. आपकी रिक्वेस्ट आई है वो प्ले करेंगे. एंड वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुडे द बिग विक्ट्री, द फर्स्ट वर्ल्ड कप विन 6-0 कैनेडा वर्सेस कतर. और जबरदस्त प्ले देखने को मिला, लेकिन ऑब्वियसली देर वॉज अ सैड मोमेंट, वेरी सैड हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑन द फील्ड जब सेकेंड हाफ में हमारे मिडफील्डर जो हैं ऑलमोस्ट ब्रोक हिज लेग. आज उनकी सर्जरी भी होगी. ही इज इन द हॉस्पिटल एंड इस्माइल कोने एंड जिसने जो कतर के प्लेयर थे द वे एंटायर एपिसोड हैपेंड एट दैट पॉइंट, उनकी भी गलती नहीं थी. कई बार गेम में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. 24-year-old मिडफील्डर फ्रॉम मॉन्ट्रियल विल गो थ्रू अ सर्जरी राइट नाउ. सो दैट वॉज वेरी सैड मोमेंट एंड आर प्रेयर्स आर विद हिम. ताकि वापसी तो नहीं हो पाएगी आफ्टर द सर्जरी फॉर द वर्ल्ड कप, बट वी होप ही कम्स बैक स्ट्रॉन्गर फॉर द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स. चलिए गीत संगीत रेडी है, इंजॉय करें. और फिर जनक छाबड़ा साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी होती है बातचीत.
3: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा. लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज कीजिए 2026 GV80 सिर्फ 3.9% से अप टू 39 मंथ्स तक. बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे. विजिट genesismarkham.ca लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट मार्कम. वी स्पीक योर लैंग्वेज. जेनेसिस मार्कम डूइंग लग्जरी अवे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स आरो ग्रुप.
6: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
7: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
6: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
8: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
9: किसी ने शिक्षक से पूछा, क्या करते हो आप? शिक्षक का सुंदर जवाब देखिए, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा हर कोई बनाना चाहता है, और हर इंडिविजुअल का बुर्ज खलीफा क्या होता है? दैट ड्रीम होम जो हमारा हमारे परिवार का होता है, हमारे लिए तो वही बुर्ज खलीफा है, हर एक के लिए मुझे लगता है ऐसा ही होता है। और आप अपनी ज़िंदगी का बुर्ज खलीफा बनाने की सोच रहे हैं, अगले साल अपने बुर्ज खलीफा में मूव होने की सोच रहे हैं, छोटा हो पर अपना हो, ये सबसे बड़ा सपना हम सबका होता है। एंड आई थिंक इस देश में आकर सबसे पहले हमें यही होता है कि जॉब मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान। और मकान जो है, जिस दिन मकान आ जाता है, वी थिंक कि भैया अकम्प्लिश हो गया। रियल्टर रियल एस्टेट में, जिन्हें मैं रिसर्च मैन कहता हूँ, ही रिसर्चेस थिंग्स एंड ब्रिंग्स इट फॉर द लिसनर्स। जनक छाबड़ा साहब हमारे साथ हैं, रिसर्च करके कैनेडन ईस्ट में ये बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बढ़िया हॉट हॉट प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड टाउन होम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 700,000, सेमीज फ्रॉम 800,000, एंड डिटैच प्रॉपर्टी स्टार्टिंग फ्रॉम 900,000। बाकी इनका नंबर मैं एक बार शेयर कर दूं जनक जी का, बाकी जानकारी जनक जी खुद देंगे, 6479990935। जनक जी आपका स्वागत है। ओके जनक जी, मुझे लगता है कि उनका नंबर कहीं उनका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। जनक जी को फिर से कॉल करते हैं 6479990935 पर, 6479990935। जनक जी होल्ड कर रहे थे और अचानक होल्ड करते करते जनक जी की लाइन ड्रॉप हो गई। जनक जी आपका स्वागत है।
10: बहुत बहुत मेहरबानी सर, कच्ची ईंटों से ताज बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप।
2: हाँ बिल्कुल, देखिए ईंटों से ताज बनाया जा रहा है, बुर्ज खलीफा का हम सपना रखते हैं, देखते हैं। और बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा हर इंडिविजुअल के लिए उसका वो प्यारा घर है, उसका वो ड्रीम होम है, जिसका ड्रीम हम रखते हैं जब इस देश में आते हैं। अब इस ड्रीम को पूरा करना आपका काम है, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, लिसनर्स आर वेटिंग।
10: मेरे इंटेलिजेंट दोस्त सनी भाई, सबसे पहले आपके प्यारे लिसनर्स को आदाब, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते
2: आपको,
10: और विशेषकर आपको और आपकी पूरी ब्रिलियंट टीम को।
2: थैंक यू ब्रदर।
10: सर ये ब्रैम्पटन में और कैलिडोन बॉर्डर पे बहुत उम्दा प्रोजेक्ट आया, मेफील्ड और गोर के इंटरसेक्शन पे
2: जी,
10: हाईवे 413 कनेक्टेड है, गोर स्टेशन कनेक्टेड है, मतलब 4-5 मिनट
2: जी,
10: सारी एमिनिटीज है, क्रिकेट का फील्ड ग्राउंड मिल रहा है आपको सर,
2: वाओ,
10: टेनिस का ग्राउंड मिल रहा है सर आपको,
2: क्या बात है,
10: बास्केटबॉल का ग्राउंड मिल रहा है सर आपको,
2: वाओ,
10: आपको गोल्फ कोर्स तो मिल ही रहे हैं। 2500 मकानों की मास्टर कम्युनिटी बना रहे हैं सोलर डेवलपर्स, जो पिछले 36 सालों से हजारों मकान बना के कई हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली
2: जी,
10: टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट बनाते हैं सर
2: जी।
10: टाउन्स फ्री होल्ड, कोई POTL नहीं, कोई मेंटेनेंस फी नहीं, फ्री होल्ड, एब्सोल्युटली फ्री होल्ड, बड़े साइज के 7 लाख के नंबरों में
2: जी,
10: सेमी 8 लाख के नंबरों में, डी टैच 9 लाख के नंबरों में
2: जी,
10: ये प्राइस अनहर्ड है, काफी साल हो गए इस प्राइस को सुने हुए, और 13% की जो रिबेट दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उस वजह से बिल्डर ये प्राइस दे पा रहे हैं
2: जी।
10: सर 17 तारीख को लॉन्च हुआ था, 200 लॉट उन्होंने अभी निकाले, कोई 500 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट थे वहां पे, लाइनअप था बहुत ज्यादा लंबा, आपने भी चीजें देखी होंगी, वीडियो बहुत वायरल।
2: बिल्कुल, वीडियोस में देखने को मिला किस तरीके से एक यू नो लोगों को पता हो जाता है, पीपल कैन स्मेल अ गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम माइल्स अवे, ये सच है, ये देखने को मिला वीडियो में मुझे।
10: सर लोगों के पास पैसे हैं, वो खर्च करना भी चाहते हैं, डरे हुए थे अंकल डोनाल्ड ट्रंप से और दूसरी जो चीजें हो रही थी
2: जी,
10: लेकिन वो अच्छे इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं सबसे बड़ी बात
2: जी जी।
10: तो जब अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे आपने कहा स्मेल आ जाती है उनको, तो तैयार ही बैठे होते हैं, खाली वो क्लिक आने वाली बात होती है कि भाई कहां चीज से ही मिल रही है
2: जी।
10: तो वेबसाइटों पे तो 1000 लोगों से ज्यादा का बताया जा रहा नंबर, पर 500 तक तो मैंने भी जिस टाइम मैं वहां था, और हमें सहूलियत यह है सर कि हम TFN ओरिजिनल TFN रियलिटी के साथ काम करते हैं,
2: ठीक है,
10: तो उनके पास एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हैं बिल्डर के
2: जी
10: सोल मार्केट, क्योंकि वो TFN ओरिजिनल जो है एम्पायर बिल्डर की मार्केटिंग विंग है
2: जी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे किसी लिस्टनर को यूनिट्स चाहिए तो गारंटीड है कि आप उन्हें यूनिट दिलवा देंगे, बिकॉज यू आर एक्सक्लूसिव।
10: नंबर एक तो ये बिल्कुल गारंटी है, नंबर दो अगर सनी भाई का नाम लिया जाएगा तो फिर डबल पावर से दिलाया जाएगा।
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
10: तो आप हमारा मान सम्मान रखते हैं तो हम आपके लिए सर पहाड़ों पर भी पहुंचेंगे।
2: थैंक यू, थैंक यू।
10: तो कोई लॉट पे आप हाथ रख दें, लिप सर्विस नहीं है, करके इस्तेमाल करके देखें
2: जी,
10: और मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए
2: जी,
10: बल्कि मैं तो सेवा भी करूंगा उसमें आपकी, मुझे सिर्फ आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ईमेल शीमेल ड्राइविंग लाइसेंस उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम लास्ट नेम एड्रेस क्या आपकी चॉइस है, इतना ही मुझे चाहिए, मैं आपके रिजल्ट रिजल्ट करा दूंगा बिना पैसे
2: जी। जी बिल्कुल,
10: तो इसमें मैं भी छोटी सी सेवा डाल रहा हूँ सर।
2: एक्सलेंट,
10: 10% का टोटल डिपॉजिट है, वो भी एक साल में देना है,
2: ठीक है,
10: क्लोजिंग भी इसकी नेक्स्ट ईयर सेप्टेम्बर अक्टूबर से शुरू है
2: जी,
10: तो जो टाउन है उसका पहला डिपॉजिट है 10,000,
2: ठीक है,
10: और डिटैच का पहला डिपॉजिट है 15,000
2: जी।
10: और एक सुविधा बताऊं सर इसमें, डिटैच में जैसे हम एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, इंडियंस पाकिस्तानी श्रीलंका जितने साउथ इंडियन हम आते हैं
2: जी,
10: मेरे साथ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसमें मेन फ्लोर पे एक बेडरूम लिविंग किचन डाइनिंग वॉशरूम फुल का भी प्रोविजन है
2: जी। जी
10: तो वो भी एक सुविधा है, ऊपर 4-5 बेडरूम वाले आपको मिलेंगे, हर चीज का एक्स्ट्रा प्राइस है
2: जी।
10: तो इसमें फर्स्ट डिपॉजिट में 25% मैं योगदान करूंगा,
2: ठीक है जी, ठीक है,
10: एज ए बिजनेस एप्रिसिएशन कह लें, टोकन ऑफ लव कह लें, जो भी आप मान लें इसको, बाद वाला कोई सीन नहीं कि क्लोजिंग के बाद, ना ना ना ना, ना पहले अभी।
2: इसका मतलब मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि 700,000 से शुरू होते फ्री होल्ड टाउन होम्स, पहले साल में 10% देना है, तो उसकी जो पहली पेमेंट 10,000 की जो किश्त होगी $10,000 की, उसके 25% यानी $2,500 जो है एक गिफ्ट दोस्तों आपको राइट अवे जनक छाबड़ा जी दे रहे हैं। एंड जनक जी का नंबर मैं एक बार फिर से दे दूं, 6479990935 जी। जनक जी,
10: डिटैच में 3,750 25%
2: जी,
10: रसीद आपको पूरे 15,000 की मिलेगी बिल्डर से, आपका डिपॉजिट वहां 15,000 ही होगा, लेकिन आपने 11,250 ही देने।
2: एक्सलेंट, एक्सलेंट,
10: मुझे इतना कॉन्फिडेंस है प्रोजेक्ट पे कि हर एक ने क्लोज करना है और मेरा कमीशन आ ही जाना है साल भर में।
2: बिल्कुल,
10: तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए करता हूँ मैं, मेरी आदत, तो इसका भी आप भरपूर फायदा उठाए, हर डॉलर काउंट करता है इस कंट्री में।
2: बिल्कुल सही बात है,
10: तो सर्विस के मामले में मेरी रेपुटेशन है, आप किसी भी वक्त मुझे फोन कर लें, 4 घंटे का टाइम देंगे, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं जहां भी होऊंगा आपके पास, अगर मैं ओंटारियो में हूं
2: जी। जी,
10: तो 6479990935, पहले दिन से आखिरी दिन तक आपके साथ हूं, कहीं कोई तरह की आपका क्वेश्चन हो मुझे किसी वक्त फोन कर लें, मैसेज कर लें, ईमेल शीमेल जो चाहे कर लें, मैं आपको जवाब दूंगा थोड़ी ही देर में। 6479990935। ये सर ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं, और आप जानते हैं कि बिल्डर बहुत स्मार्ट है
2: जी,
10: पहले लॉट निकालते हैं, फिर सेकंड फेज में पैसे बढ़ते हैं, फिर थर्ड में बढ़ाते चले जाते हैं।
2: बिल्कुल,
10: वो जो पहला फेज है जो लोग भी इन्वेस्टर में समझते हैं इस बात को और जो अपने लिए लेते हैं वो भी समझते हैं इस बात को.
2: बिल्कुल जी.
10: तो पहला फेज आप ले इसको, और क्योंकि हम ओरिजिनल टीएफएन रियलिटी के साथ हैं, हमारे को पूरा एक्सेस है
2: जी.
10: आपको जो लॉट चाहिए वो ले आप देंगे सर.
2: गॉट इट.
10: करा के नहीं आता काम
2: जी. सो कैनेडन ईस्ट है दोस्तों, एंड याद रखें कि फ्री होल्ड टाउन होम स्टार्टिंग फ्रॉम 700,000, सेमीज फ्रॉम 800,000, डिटैच होम्स फ्रॉम 900,000, और आपको 110% बेहतरीन सर्विस का वादा करते हैं और डिलीवर भी करते हैं जनक छाबड़ा. जनक जी को कॉल करें 6479990935. जनक जी बहुत बहुत शुक्रिया.
10: बहुत मेहरबानी सर.
2: थैंक यू सर. 6479990935. विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग कल यानी सैटरडे को 12:30 to 3 होता है इनका फ्री सेमिनार. सैटरडे आफ्टरनून आप अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए. 905-206-1008. एंड फादर्स डे है संडे को. जिस धूमधाम से मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है मई के महीने में, कई फादर्स की कंप्लेंट होती है कि यार जून के महीने में जब आता है फादर्स डे तो आता है और चले जाता है, हमें तो उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. कोई ना, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मिलती, बट कई बार ऐसा भी होता है कि फादर्स जो हैं वो अपने बच्चों को हग भी कम करते हैं कंपेयर टू द ममास. ये फैक्ट है. मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूँ. एज मच एज माय वाइफ डज यू नो हग्स माय किड्स, मैं शायद इतना नहीं करता हूँ कंपेरेटिवली. एंड लेकिन ऐसा नहीं होता है कि फादर्स का प्यार कोई कम होता है. सिमिलरली मुझे लगता है कि बच्चे भी रेसिप्रोकेट मदर्स के उस लव को, हग्स को ज़्यादा करते हैं. फादर्स को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ऐसा होता है. बट यू नो वॉट, ट्राई स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर चिल्ड्रेन. वही फादर्स डे है. हमने अपने पिता के साथ, जब तक मेरे पिताजी लाइफ थे, यू नो उनकी कही हुई चीज़ों को फॉलो किया. यही करना चाहिए. कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो माता पिता कहते हैं और हम अग्री नहीं करते. हमें ऐसा लगता है कि यार मे बी यू नो यार ये क्या कह रहे हैं, बट बाद में समझ में चीज़ें आती हैं. सो वाइल दे आर देयर, अप्रिशिएट देम, लव देम, हग देम एंड स्पेंड टाइम विद देम. स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन, यही यादें रह जाती हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो तो आनी जानी है. लेकिन ये जो वक्त हम बिताते हैं, चाहे आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी बच्चों के साथ करते हैं, विच आई यूजली टेन टू डू, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, बच्चों को सिखाया मैंने एंड नाउ दे प्ले बेटर देन आई डू, एंड सॉकर उनको सिखाया दे प्ले बेटर देन आई डू, टेनिस मैंने उनको सिखाया दे प्ले बेटर देन आई डू. बट यही फादर्स डे होता है, ऐसा ही होना चाहिए. चलिए एनीवेज, उदित नारायण पापा कहते हैं एंड द मूवी वॉज QSQT, कयामत से क्यामत तक फिल्माया उन आमिर खान. एंजॉय द सॉन्ग. हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन.

0: दोस्तों हमारे कई लिसनर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। अजय जी भी हैप्पी फादर्स डे कह रहे हैं, पॉल साइगल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन से भी मैसेज भेज रहे हैं, बेस्ट हेल्थ एंड बेस्ट पीस टू ऑल फादर्स ऑन फादर्स डे और रिमेंबरिंग ऑल द ब्यूटिफुल फादर्स आउट देयर। हैप्पी फादर्स डे एंड हैप्पी फादर्स डे टू यू एज वेल पॉल जी। मनीष जी का भी कहना है हैप्पी फादर्स डे, एंड जितने मैसेजेस आ रहे हैं टू ऑल द फादर्स, यू नो हैप्पी फादर्स डे, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और कई बार अप्रिशिएट आपको लगता है आप नहीं इतने किए जाते, बट डोंट थिंक अबाउट दैट, एवरीवन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, अपनी अपनी हिसाब से सब अच्छा कर रहे हैं। एंजॉय द सॉन्ग।
1: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
1: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
2: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% C. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
3: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
1: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज होम इक्विटी रिन्यूअल्स बैड क्रेडिट इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक बेस्ट रेट्स बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी 6478631940 6478631940

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Don Valley North Hyundai अब loyalty offers सभी customers के लिए extend कर रहा है। पाइए 1% lease rate reduction, 0.5% finance rate reduction और $500 cash purchase incentive. Plus, Kona EV पर stackable cash up to $2,500 तक का फायदा। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit करें donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Avenue और Denison Street, Markampur. A proud member of Wayne's Auto Group.
4: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
5: एक और कहानी मेरी जुबानी, सोचिए और समझिए। जंगल में दो शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन कुछ गलत फहमी सी हो गई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू किया। तब वहां वो जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहां से भाग गए और जवान शेर वहां से चले गया। यह सब देख रहे दूसरे एक शेर ने जवान शेर से पूछा कि तुम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, तो उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराजगी भले ही हो लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठा लें। स्टे ब्लेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन।
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड इंडस्ट्रियल लाइन से अमन मेहता जी, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे साथ है विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और हर हफ्ते अमन जी जब आते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं, समझते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। एंड ऑलमोस्ट एक मुझे, मैं तो ये कहता हूँ, बड़ा नॉलेजबल और एजुकेशनल ये सेगमेंट होता है। And believe me when I'm saying this, at the end of the segment, you'll yourself say that what I said was absolutely true. Aman ji ka office hai, 241 Clarence Street, Unit 26 in Brampton. And the number to call him is 416-707-9900. Aman ji, aapka swagat hai.
7: Sunny ji,

0: थैंक यू पहले तो वन ऑफ सबको अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून.
1: जी आपको भी गुड आफ्टरनून. और वी विल गेट डाउन टू सम रियली रियली सीरियस डिस्कशन हियर. अमन जी मैं कुछ पढ़ रहा था दैट्स रिसेंटली दैट सेड कि ज्यादातर जो कैनेडियंस हैं मोस्ट कैनेडियंस आर एक्चुअली लूजिंग ग्राउंड ऑन देयर सेविंग्स एवरी ईयर. मतलब वो वक्त ऐसा कुछ चल रहा है एंड हम रियलाइज भी नहीं कर रहे हमारी सेविंग्स कम हो रही हैं. इज दैट ट्रू एंड हाउ डज दैट हैपन? मतलब ये कैसे, इसको थोड़ा सा समझाइए हमें.
0: सुनिए बहुत ही प्यारा टॉपिक आपने आज हिट किया है. यू नो व्हाई? अ लॉट ऑफ पीपल थिंक हमारे अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं एंड वी आर रिच. अब लेट मी रीफ्रेज दिस कि यू आर ओनली रिच इफ दैट मनी इज वर्किंग एंड मेकिंग मनी. अदरवाइज अगर आपने आज $10,000 छोड़ दिए हैं सनी भाई और वो 10 साल बाद आपने को नहीं छेड़ा तो वो डिफ्लेशन के साथ इन्फ्लेशन के साथ इट विल बी अराउंड 7,000 वर्थ.
1: कहने का मतलब 3,000 उड़ गए और हमने नोटिस भी नहीं किया.
0: सनी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोस्टली होल्डिंग द मनी पीपल थिंक दे आर रिच बट यू नो व्हाट इफ द मनी इज नॉट ग्रोइंग. सनी जी कैनेडियन डॉलर 2003 में जब मैं आया था तब 32 रुपए का एक होता था, आपको याद होगा. आज वो कैनेडियन डॉलर बढ़कर 65 रुपीज 70 रुपीज के करीब पहुंच
1: गया.
0: या सो इमेजिन अगर आप वही $32 आके अभी 32 रुपए लेकर बैठे वेट कर रहे थे तो अब उस डॉलर के आपको सिर्फ आधा डॉलर मिलना था. तो डिफ्लेशन एंड ये जो इन्फ्लेशन है ये चीजें आपके पैसों को खाती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल होल्डिंग द मनी डोंट इवन रियलाइज टिल दे फाइंड आउट कि उसकी जो रियल वैल्यू है वो कुछ नहीं बची है.
1: शायद ये चीज के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं और आपकी बिल्कुल बात सही है. जब वो 5 या 10 साल निकल जाते हैं ना फिर एहसास होता है कि भैया किया तो कुछ भी नहीं किया, पैसे उतने ही पड़े हैं पर उसकी वैल्यू अब वो नहीं है जो पहले होती थी. 416-707-9900. अमन जी से हम वैल्यू समझने की ही कोशिश करते हैं और ग्रोथ समझने की, सेविंग्स किस तरह से बढ़ सकती हैं, हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, यही हम समझना ऑलवेज चाहते हैं. अमन जी सो व्हाट शुड पीपल बी डूइंग डिफरेंटली?
0: सनी भाई सबसे पहले तो ये कि उस पैसे पे भी अगर आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं और अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो गेस व्हाट, आप अपने पैसे को हर रोज लूज करते आ रहे हैं. सबसे पहला जो मेरा सजेशन होता है यूज रजिस्टर्ड अकाउंट्स. TFSA इज अ ब्लेसिंग. अगर आप 2009 से यहां पर हैं तो आपके पास 1,08,000 रूम डॉलर्स का रूम है विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है. विच मीन्स ऐसा नहीं कि पैसा कहीं चला गया. लोग सोचते हैं सेविंग करके हम फंस गए, हम निकलवा नहीं पाएंगे. वो भी एक ऐसा अकाउंट है जिसको आप कभी भी कैश इन कर सकते हैं. सनी आई हैड अ क्लाइंट फ्रेंड सन जिसने मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट किए एंड 7 डेज के बाद ही सॉ सम ग्रोथ. ही सेड अंकल कैन आई कैश आउट द ग्रोथ? आई सेड यू शुड बिकॉज प्रॉफिटिंग इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पार्ट वी मिस. सो सबसे पहले रजिस्टर्ड प्लान्स का यूज करें, चाहे वो TFSA है टू सेव टैक्सेस, RRSP है इनकम लो करने के लिए, FHSA है जिसमें आप अपने घर के लिए सेव करते हैं. ऐसे बहुत सारे टूल हैं और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर प्लानर जो भी आपके पास है उनसे पूछें मेरी नीड ये है, आप क्या रेकमेंड करते हैं. अदरवाइज आई प्रॉमिस यू, यू आर नॉट ओनली डिफ्लेटिंग योर मनी, यू लूजिंग द वैल्यू बिग टाइम ऑन योर ओन मनी.
1: एंड दोस्तों इसके डिटेल्ड चीजों को समझने के लिए अमन मेहता जी जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, प्लानर हैं फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, टॉक टू हिम, मीट हिम एंड It'll be an amazing thing to do that. क्योंकि आपको कई चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो हमें लगता है हमें पता होती हैं और हम totally ignorant होते हैं with what's going around. 416-707-9900. So, अमन जी, why is it not everyone's doing this? मतलब हर कोई क्यों नहीं ये चीज़ को कर पा रहा है या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा कुछ बताएं.
0: सनी जी मैं एग्जांपल देता हूं पहले, सबसे पहले कि क्यों नहीं लोग कर पाते, क्योंकि दिस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. आप ये समझिए बोरो करना, इन्वेस्ट करना या कहाँ लगाना है, स्ट्रेटेजाइज करना, ये हर बंदे का बस का बात नहीं है. सनी जी आपने एक कंपनी होती थी नॉटल के नाम से, बहुत बड़ी कंपनी थी कनाडा में अगर आपको याद हो. Exactly. एक टाइम पे उसका स्टॉक जो है वो $400 का होता था.
1: Wow.
0: अगर आपने नॉटल में आज से 25 साल पहले इन्वेस्ट किया था और आपने कुछ नहीं किया तो गेस व्हाट, आपके पास कितने पैसे हैं आज? जीरो. क्योंकि नॉटल बंद हो चुकी है. तो टाइमिंग इन्वेस्टमेंट एनुअल रिव्यूज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ पर मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छे एडवाइजर के साथ अगर आपके पास है तो वेरी गुड, उनसे पूछिए. देखिए सनी जी अगर आप डॉक्टर को जाकर अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो गेस व्हाट, वो कौन सी दवाई देगा आपको? कोई भी नहीं. तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, प्लानर है, उसके साथ बैठ के उसको समझाएं, दिस इज माय नीड, फिर उनको बोले मेरा फाइनेंशियल नीड एनालिसिस कीजिए और मुझे बताइए व्हाट शुड आई इन्वेस्ट एंड व्हाई शुड आई इन्वेस्ट. क्योंकि जब आप इस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं ना तो थिंग्स वर्क इन योर फेवर, यू नो व्हाट यू आर डूइंग. अब देखिए आप मॉल में गए हैं और आप दुकान के अंदर गए हैं, मैंने आपको कोई भी कपड़े पहना दिए, कोई भी जीन बना दी और आपको मैंने बिल दे दिया, वुड यू बी हैप्पी विद दैट? ऑब्वियसली नॉट. यू वॉन्ट टू पिक अप योर ओन चॉइसिस, कौन सा कलर है, कौन सा साइज है, आप पे सूट करता है कि नहीं करता. बट वेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग वी लीव इट टू द मर्सी ऑफ द अदर साइड. तो ऐसा नहीं करिए, प्लीज अपने राइट्स को यूज कीजिए रादर देन लर्निंग वॉट अ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेन यू आर इन ट्रबल. Learn it when you are in a happy stage.
1: Ji. So, who is the strategy for Amanji? And if someone is listening right now and thinking, is this me? Uspe thodi si roshni dale. I also have a caller. If they have a quick question, main chahunga ki if I can, if with your permission, take that person in.
0: Aap please caller le lijiye pehle, fir main aapko iska answer deta hu.
1: Theek hai ji. Aap on air hain, please poochiye apna sawal.
2: Ali Amanji, kaise hain aap? Theek hai?
1: Ji, first class.
0: Bilkul badhiya sir. Aap bataye kaise hain?
2: मैं बड़ा ठीक हूँ. अब मुझे ये सवाल आपसे था
0: जी,
2: अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ कितनी हो जाती है? 12% एनुअल होती है, 20% एनुअल होती है, या 50% एनुअल होती है?
0: वेरी गुड क्वेश्चन जी. देखिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ. इसका क्वेश्चन ये कि मैं मॉल में खरीदने जा रहा हूँ, बताइए मैं क्या खरीदूंगा, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है. मैं आपको छोटा सा एक आइडिया देता हूँ. आई हैव सीन रिटर्न्स एनीवेयर फ्रॉम 4% टू 67-70%, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पोर्टफोलियो. आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आप कितने कंफर्टेबल हैं. देखें अगर एक बंदा रिटायरमेंट स्टेज में है, 60s में बैठा है, आई एम नॉट गोना एम फॉर अराउंड 60%, आई एम गोना एम फॉर अराउंड 5-10%. बट इफ समबडी इज यंग, अभी 18-20 साल का है, रिस्क ले सकता है और पैसे नहीं चाहिए, कितने टाइम के लिए पैसे मेरे पास हैं, गेस वॉट, आई कैन शो यू दिस नंबर, आई हैव डन डबल and 3 digits returns too. But again, on air bol raha hu ji, everything is respective of how you want to take it.
1: Ek aur sawal aaya hai, hamare listener ne mujhe text kiya hai, keh rahe hain ki Aman ji, I'm a 56-year-old individual. If I gain 10% on jo aapne baat ki hai, mera taxable income kitni hogi? It's a very generic question. I think aap usko thoda sa apne tarike se answer kar sakte hain.
0: जी सनी, डिपेंडिंग अपॉन किस व्हीकल में आपने इन्वेस्ट किए हैं. अगर आप PFSA में इन्वेस्टेड हैं, नो टैक्सेस. अगर आप RRSP में इन्वेस्टेड हैं तो टैक्स डेफर्ड है, ओनली एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल पूरे पैसे पे टैक्स लगेगा. लेकिन अगर आप नॉन रजिस्टर्ड में भी हैं, विच मीन्स कोई आपने गवर्नमेंट बेनिफिट यूज नहीं किया है, तो उस केस में 50% गेन पर सिर्फ टैक्स लगता है. और यहां पर ब्यूटी ये है कि लोग कहते हैं जी टैक्स लगेगा, मैं कहता हूं जी आई शुड बी द बिगेस्ट टैक्स पेयर इन द वर्ल्ड, उतना पैसा तो कमाऊं कम से कम मैं.
1: एग्जैक्टली. वन मोर क्वेश्चन, आज तो झड़ी लग गई है अमन जी क्वेश्चनों की. एक और क्वेश्चन आ गया है, नंबर मैं अमन जी का यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ पूछ के हमें इन्फॉर्मेशन उतनी ही मिल सकती है एक सेगमेंट में. इट्स व्हेन यू एक्चुअली स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम सिट विद अमन जी एंड अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज, द बारीकियों को समझें और फिर एक्चुअल आप पैसे बनाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, ग्रोथ की तरफ कदम रखेंगे. 416-707-9900. Ask अमन जी अबाउट इफ ही न्यू anyone who bought SpaceX stock and how much they were able to gain. How do we watch out for these kind of stocks? Amanji, please explain. Okay. Interesting.
0: जी सनी, क्या होता है जब नई नई मूवी आती है ना, तो पहले वीक में बहुत ज्यादा नंबर सेट करती है, बट देन रियल पोटेंशियल तब पता चलता है कि एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद वो मूवी कहां पर है. SpaceX डेफिनेटली क्रिएटेड अ ट्रिलियनेयर एंड एलन मस्क हैज प्रूव्ड, बट इट वाज मोर ऑफ सो कॉल्ड अ पंप एंड डंप. अभी तक तो वो लग रहा है क्योंकि आफ्टर सच ए ग्रेजुअल हिट फ्रॉम 135 टू ऑलमोस्ट बहुत हाई रेंज से जाकर अब वो वापस सेटल डाउन हो रहा है. यहां पर मैं ये एडवाइस करूंगा, ये वही लोग करें जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता है, जिनको स्टॉप लॉसेस लगाने आते हैं. अदरवाइज जेनरिक person should only invest in Vanguard 500 VOO. ऐसा stock है जो over a period of 10 years, 15 years, 10-15% की return देता आ रहा है. तो सनी जी, वो रिस्क मत लें जो रिस्क आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ उतना ही अफोर्ड करें जितना आप बाइट कर सकते हैं.
1: जी बिल्कुल. और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए अमन जी ऑन एयर आते हैं, हर फ्राइडे आते हैं, एंड ही टीचर्स अस, एक्चुअली ही इज एक्चुअली हियर टू टीच अस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सो मच दैट आई डोंट नो अबाउट. और अक्सर ऐसा हो जाता है कि इस देश में 10-15-20-25-30 साल बिताने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो सब चीजों के बारे में सब कुछ पता है. सबसे बड़ी मिस्टेक ही वहां है जहां पर बार हमें ये लगने लग पड़ता है कि आई नो इट ऑल. महफिलों में बैठ के भी कई बार ऐसा ही होता है कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे होते हैं जैसे उनको उनसे बड़ा कोई प्रोफेसर पैदा ही नहीं हुआ. बिलीव मी दैट इज द वर्स्ट थिंग. अमन जी आई थिंक वी ऑल फॉलो. आई टेक योर कमिंग ऑन एयर एज अ फ्री का लेसन जिसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ रहा. मुझे 12 से 2 फ्राइडे के दिन मैं ऑन एयर आ जाता हूँ एंड आई गेट टू लर्न सो मच. जाने से पहले अमन जी क्या कहना चाहेंगे? नंबर मैं आपका फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 416-707-9900. जी अमन जी,
0: जाने से पहले क्विकली यही कहूंगा जी, अगर प्रोफेशनल चीज आप प्रोफेशनल बंदे से प्रोफेशनल एडवाइस देंगे तो इट इज बेसिकली ही इज अकाउंटेबल. अब मेरे चाचे के मामे के ताए के पड़ोसी के चौथे बेटे ने बोला था तो उसमें आप फंस गए हैं.
1: यप. हेलो हेलो, अमन जी की आवाज़ यहाँ पर थोड़ी सी जो है मुझे नहीं आ रही. मैं अमन जी का नंबर यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि 416-707-9900 अमन जी का नंबर है. 416-707-9900 इज़ द नंबर एंड ही इज़ बिन डूइंग दिस वेरी वेरी सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एंड फाइनेंशियल प्लानर हैं, एडवाइज़र हैं और आपको सही तरीके से सही एडवाइस देते हैं ताकि आपकी ग्रोथ हो सके. अमन जी लाइन थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है ड्रॉप हुई थी, अगर आप रैप अप करें प्लीज़.
0: थैंक यू जनी भाई, थैंक यू फॉर दैट. मैं बस यही कह रहा था कि डू टेक प्रोफेशनल एडवाइस सो दैट कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देयर शुड बी समबडी अकाउंटेबल फॉर दैट. दैट्स व्हाई दिस कंट्री बिलीव्स इन प्रोफेशनल्स एंड डिग्रीज एंड बैकअप्स. तो आप जरूर कॉल करें अगर आपके पास प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं है, फाइनेंशियल प्लानर नहीं है.
1: 416-707-9900. में भी नंबर वन थे और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी नंबर वन है. बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, हैव अ वंडरफुल वीकेंड.
0: थैंक यू सनी, थैंक यू, यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड टू.
1: थैंक यू ब्रदर. 416-707-9900. एंड अमन जी की तरफ से हमारे लिसनर की भी रिक्वेस्ट है, 2 रिक्वेस्टें इस गाने के लिए आई हुई हैं. सरताज खान सरवर खान की आवाज में हानिकारक बापू फ्रॉम द मूवी दंगल. हैप्पी फादर्स डे फॉर संडे इन एडवांस. और बाहर का तापमान 22 फील्स लाइक 24.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक। इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें donvalleynorthlexus.com या विजिट करें इन पर्सन। अ प्राउड मेंबर ऑफ विंस ऑटो ग्रुप।
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. Cool down with Brampton Fire this summer at Beat the Heat. Enjoy karein fire trucks, stores, family activities and important safety tips at locations across Brampton from 7 July to 19 July. Visit karein BramptonFire.com for the full schedule.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 locations ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca।

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज कीजिए 2026 GV80 सिर्फ 3.9% से अप टू 39 मंथ्स तक। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। वी स्पीक योर लैंग्वेज। Genesis Markham, doing luxury away. A proud member of Vane's Auto Group.
3: सदियां बीत जाती हैं ख्यालों से निकलने में, सदियां बीत जाती हैं ख्यालों से निकलने में, मगर जब याद आती है तो आंखें भीग जाती हैं, मगर जब याद आती है तो आंखें भीग जाती हैं, आंखें भीग जाती हैं तो सर्द से आह भरते हैं, आंखें भीग जाती हैं तो सर्द से आह भरते हैं। यूं ही हम रोज जीते हैं, यूं ही हम रोज मरते हैं, यूं ही हम रोज जीते हैं और यूं ही हम रोज मरते हैं।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और बहुत जल्द हमारे साथ अतीक खान साहब होंगे, लोकल डेवलपर एंड बिल्डर, छोले भटूरे .ca, चार लोकेशन से सर्व करते हैं, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा, एंड डाइन इन टेक आउट ऑप्शन अवेलेबल है सारी की सारी लोकेशंस पर। केसरी फिल्म का गीत वे माही, अरिजीत सिंह असीस कौर की आवाज में, आप ही की रिक्वेस्ट है। वी विल प्ले ऑल योर रिक्वेस्ट टिल 2 PM एंड एंजॉय द सॉन्ग। आते हैं बहुत ही जल्द वापस, आगे चलकर मॉर्गेज क्वीन नीलम सदोव भी हमारे साथ होंगी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी विल जॉइन अस एज वेल। Enjoy the song. I'll be right back.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें. Wayne'sAutoGroup.com.
0: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने 2000 से 6000 डॉलर US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum 2000 to 6000 डॉलर आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040. Apne kareebi ko khone se bada koi gham nahi. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center mein aap aur aapke parivar ko shanti se is avsar par afsos karne ka waqt milta hai. 8 saal ka lamba tajurba, har faith aur har dharm aur culture ke liye yahan complete range of cremation and memorial aapke choice ki exclusive facilities bhi uplabdh hai. Har kadam hum aapke saath. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcbc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.
2: Don Valley North Hyundai अब loyalty offers सभी customers के लिए extend कर रहा है. पाइए 1% lease rate reduction, 0.5% finance rate reduction और $500 cash purchase incentive. Plus, Kona EV पर stackable cash up to $2,500 तक का फायदा. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit करें donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Avenue और Denison Street, Markham पर. A proud member of Wayne's Auto Group.
3: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
0: किताबें तो सब पढ़ लेते हैं, कोरे कागज को पढ़ पाएं तो मैं जानूं. मोहब्बत तो सब करते हैं, जिंदगी भर साथ निभाए तो मैं जानूं. साथ हूं तेरे तो सब कहते हैं, कोई मेरी परछाई बन पाए तो मैं जानूं. किसी का प्यार पाना तो सब चाहते हैं, किसी पे अपना प्यार लुटाए तो मैं जानूं. खुश रहना तो सब चाहते हैं, किसी को दुख ना पहुंचाए तो मैं जानूं. मरने पर आंसू तो सब बहाते हैं, मरने पर आंसू तो सब बहाते हैं, कोई साथ दफन हो जाए तो मैं जानूं. कोई साथ दफन हो जाए तो मैं जानूं.
4: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. एंड लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ हैं. 416-666-2745 इज द नंबर. एंड देर इज अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, इफ यू हैवंट हर्ड ऑफ इट, हियर इट नाउ. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ यू नो गेटिंग इनटू लैंड बाइंग, डेवलपिंग यू नो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ प्रीटी स्टफ, इस सेगमेंट को ध्यान से सुनिए. 416-666-2745. अतीक भाई आपका स्वागत है.
5: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको, आपके लिसनर्स को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।
6: जी आपको भी आदाब, गुड आफ्टरनून। एंड अतीक भाई, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेल द लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं, व्हाट इज अबाउट यू नो इन अ वे ब्रीफली अबाउट द एंटायर थिंग, हाउ दिस होल थिंग वर्क्स, और किस तरह से पैसे की ग्रोथ देखने के को मिलेगी आंखों के सामने।
5: चलिए सर, तो जैसा आपका सवाल वैसा ये रिप्लाई, ग्रोथ की बात आपने करी तो लैंड से ज्यादा ग्रोथ या यूं कह लीजिए कि प्रॉफिट और मुनाफा आपको किसी और बिजनेस में नहीं मिलने वाला। जब बात ग्रोथ की आती है, सनी साहब थोड़ा सा इमेजिन करिए, अपने आई साइड में एक मैप को लेकर आ जाइए, किसी रीजन को लेकर आ जाइए। हम एग्जाम्पल दे देते हैं, चलिए मैं आपको ले लेता हूँ, पील रीजन की बात करता हूँ, ठीक है जी। तो बड़े बड़े सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो तीन मेजर सिटीज आ जाते हैं, जिसमें मिसिसागा, ब्रैम्पटन, कैलेडन आ जाता है। फिर उसी के अंदर उसके 10, 15, 20 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि ये सर्टन पॉकेट्स हैं। तो सिटी जब ग्रोथ कर रहा होता है या रीजन जब ग्रोथ प्लान बना रहा होता है, तो वो 20-20 साल आगे का सोच के रखता है कि जब सिटी एक्सपेंड करेगा या कम्युनिटीज एक्सपेंड करेंगी तो किस किस बाउंड्री को हमें सिटी में ऐड करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
6: बिल्कुल सही बात।
5: तो इस तरीके से उन्होंने तीन कैटेगरीज बना देते हैं, मेजर डेवलपमेंट एरिया, इंटरमीडिएट डेवलपमेंट एरिया और माइनर डेवलपमेंट एरिया। माइनर का मतलब यह है कि अगले 20-25 साल तक हम इन एरियाज को टच करने के मूड में नहीं है, आप देख लीजिए आपने जो भी करना है। तो वो लैंड्स आ जाती हैं फार्म लैंड कैटेगरी के अंदर, कि आपने फार्मर्स को दे दी और वो अगले 20-25-50 साल तक वहां फार्मिंग करेंगे क्योंकि वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इंटरमीडिएट वाले जो होते हैं वो 5-10 साल वाला एक टाइम फ्रेम आता है कि हम इन एरियाज या इन पॉकेट्स पे फोकस करेंगे और ये अगले 10-15 साल में यहाँ चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। जैसा आपने अभी कैलेडन में एक एग्जांपल देखी कि एक डेवलपर बिल्डर ने 2,500 घरों को लॉन्च किया है और वहां पे 500 एजेंट्स की लाइन लगी हुई थी
6: जी।
5: तो ये एरिया वो इंटरमीडिएट में आ गया। और जो मेजर एरिया होते हैं ये वो हैं कि जिसमें आपको पता होता है आने वाले 2-3 साल के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली है। क्लियर? तो मेरा और मेरी कॉरपोरेशन का काम ये है कि हम मेजर एरियाज के अंदर के जहां पे डेवलपमेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आती है, वहां पर एक सस्ती सी लैंड खरीदते हैं और उसका एक प्रोसेस है, वो आपको कोर्ट में जाके पैसे दे के मिलती है, कभी कभार ऑक्शन से मिल जाती है, कभी रिसीवरशिप से मिल जाती है, बट वो सस्ती लैंड ली, उसकी जोनिंग चेंज कराई और 18 महीने से 2 साल के अंदर अंदर 30-40% रफली मार्जिन का चेक मैं आपके इलाके हाथ पे रखूंगा और आपकी ब्लेसिंग्स और थैंक यू के साथ आपको आपका पैसा प्लस प्रॉफिट प्रोवाइड करूंगा। अगर ये स्टेज वन आपको समझ में आ जाती है और आप कहते हैं कि हाँ ठीक साहब, मेजर एरिया समझ में आ गया, लैंड डेवलपमेंट समझ में आ गया, आपका रिजल्ट देख लिया कि 30-40% आपने हमको 18 महीने से लेके 2 साल के अंदर तक कमा दिया, वी वॉन्ट टू कंटिन्यू फर्दर, तो फिर 6 महीने आप प्रोजेक्ट में और रुकेंगे, यूं समझ लीजिए अब 2.5 साल का टाइम लग गया और 2.5 साल के अंदर आपके पास सर्विसेज भी आ जाती हैं जिसमें गैस, पानी, बिजली, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, फिल्ट्रेशन प्लांट, ये सब आप लैंड पे लेके आते हैं और आखिरी स्टेज में आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या वो रेजिडेंशियल हो, क्या वो कमर्शियल हो, क्या वो इंस्टीट्यूशनल हो। मेरा फोकस आज की मार्केट में 3-plex, 4-plex, 5-plex टाइप के घरों का हो रहा है कि ऐसे घर बनाओ जिसमें 3-3, 4-4 टेनेंट आपके पास लीगल तरीके से रह सके, नंबर वन, या सीनियर होम, रिटायरमेंट होम्स, इस टाइप की उसमें लेकर आ जाओ क्योंकि इन सब में रिटर्न्स बड़े हाई होते हैं। तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, डिटेल्स के लिए एक कॉल मिलानी है या टेक्स्ट मैसेज करना है, मुझे बहुत कॉल्स आती हैं, आप समटाइम्स ड्राइव कर रहे होते हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं, जब मौका मिले रुकें, एक मैसेज छोड़ दें 416-666-2745, आप टेक्स्ट, व्हाट्सएप, इंस्टा सब चीजों पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, कॉल कीजिएगा, ये कॉल आपकी लाइफ चेंजिंग कॉल बनेगी, 416-666-2745।
6: एक्सलेंट, इट विल बी द लाइफ चेंजिंग कॉल, बट दोस्तों उसके लिए कॉल तो करना पड़ेगा। लाइफ चेंज तब होती है जब हम पहला कदम उठाते हैं और पहला कदम आपने उठाना है, डायल करना है 416-666-2745, 416-666-2745, 2745 अतीक खान साहब एंड द टीम का नंबर है 416-666-2745. अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ अमेजिंग वीकेंड.
5: Thank you so much, sir.
6: Thank you, sir. 416-666-2745. I'll take a very, very, very short break. आते हैं बहुत ही जल्द वापस. कुछ messages हैं आपके लिए और हम बहुत ही जल्द आते हैं वापस. Needham G Mortgage Queen भी इंतजार कर रही हैं.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें. Wayne'sAutoGroup.com.
0: As I turn another page in this chapter of life, I wonder, will this be the last of the chapters that I write? I may be living in the past, because I'm presently out of sight. Could this be the end of my path to never see another night? I've battled my share of demons, and my hair is turning gray. I've grown terribly out of season, but I have a thousand reasons to say. When I reached my final day, and I have nothing ripe to say, what's left of me, my legacy, but words upon a page. But words upon a page.
2: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक. यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है. विद अ 3% रेट ब्रेक इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर. कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन. अ प्राउड मेंबर ऑफ विंस ऑटो ग्रुप.
7: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
8: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
9: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
8: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
9: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
8: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
9: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
8: 647-739-8710. License number M200-3450.
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. मॉर्गेज क्वीन मॉर्गेज अलायंस से नीलम सुधोव जी हमारे साथ है विद द लेटेस्ट मॉर्गेज अपडेट. देखते हैं नीलम जी आज क्या लेकर आई हैं. ध्यान से सुनिएगा, जिनकी रिन्यूअल्स आ रही हैं, रीफाइनेंस की कोई डील है या फिर सारे दरवाजे रियल मॉर्गेज में आपके लिए बंद हो गए, अब आप घर देख रहे हैं, पता चल रहा है कि यहाँ पे मॉर्गेज नहीं मिलने वाली, नीलम जी से कॉल करें, बात करें. क्योंकि एक बार नीलम जी आपको कमिटमेंट दे देती हैं तो फिर तो भाई आपको पता होता है कि भाई ये डील डन है. शी ओनली टेक्स यू नो व्हाट 10 मिनट्स में बता देंगी काम हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा. 6477398710. नीलम जी थोड़ा स्वागत है.
10: थैंक यू सर जी, थानू ते अपने सारे लिसनर्स नु प्यार भरी सत श्री अकाल एंड अ वेरी हैप्पी फ्राइडे.
6: सत श्री अकाल, हैप्पी फ्राइडे. नीलम जी आज आपा केड़ी गल नु लेकर करनी है डिस्कशन?
10: बिल्कुल जी, आप देखो बहुत सारी कॉल्स आंदी है जिदे चे कहन नु मिलदा नीलम जी असी किते होर गए सीगे, साडा काम नहीं होया लास्ट मिनट दे उते, वी आर कमिंग बैक टू यू, दसो की करिए. तुहाडा एक ना फोकस होना लाइफ च बड़ा जरूरी चीज है.
6: बिल्कुल,
10: बी फोकस्ड. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਕ ਗਏ, ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਨੀਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਓਨ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਪੀ ਰਹਿਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ.
6: ਜੀ,
10: once you are at work and you are working on somebody's file, your focus should be totally there.
6: Exactly.
10: Main tonu ek choti ji example denni ha, jehda sher hai jungle ch baitha hunda, when he is like apna oda time hunda enjoy karda pe apne bachche naal, family de naal, ohnu na weather di parwah hundi hai, na bhukh di, na kise cheez di, he just calmly sits.
6: Exactly.
10: But when he is hungry, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਹਿਸ ਪ੍ਰੇ.
6: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ.
10: ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ ਫੜਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਫੋਕਸ.
6: ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ. Exactly.
10: So, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਭਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਭਰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 25,000 ਹੈ ਜਾਂ 35,000 ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਜੋੜਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ.
6: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ.
10: ਉਹ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ 10% ਨਾਲ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, 60-70,000 ਨਾਲ ਕਲੋਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੱਥੇ ਚੜਦੇ ਹੋ, people don't care, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ, ਏ ਤੋਂ ਬੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਫਾਈਲ, ਬਟ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ.
6: ਜੀ.
10: ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ, ਵਟ ਵੀ ਨੀਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਫ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਈਡ ਦ ਪਰਸਨ ਥੋਰਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਟ ਵੇਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ, ਪਹਿਲਾਂ 10% ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 20% ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਲੈਟਸ ਐਡ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, 70,000 ਤੋਂ 200-250 ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਹਿਜ਼ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 35-40,000 ਦਾ.
6: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ.
10: ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਥਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਯੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ.
6: ਜੀ ਜੀ.
10: ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਪਬਲਿਕ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਸੇ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਪਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਿਆਣੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਫੀਲ. ਹਾਊ ਐਵਰ, ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, 25-30 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2,000-2,500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 1400 ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਾ ਮਸਾ 2,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 1400 ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਲੈਂਡ ਸਮ ਮੋਰ ਮਨੀ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੈਲਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ 2,000 ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇਈਗੇ 24 ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 13 ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ. that's one. And dujje passe tusi amortization hai jehdi 30 de bajaye 25 la lo if you can afford it. Jehdi 30 years amortization hai na only for those people they cannot afford hand to mouth ne kuch ho nahi sakda paise hege nahi kithe, then that's different case. If you can afford it, tade kol paise hege aa, you should go for less amortization. Last which je tade kol ਮੰਨ ਲਓ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇਜ਼ $500 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ $100 ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ 22 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਾਲ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਮੋਰਗੇਜ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਰਗੇਜ ਕੁਈਨ ਮੋਰਗੇਜ ਅਲਾਇੰਸ ਨੀਲਮ ਸਰਾਵ 647-739-8710
6: बिल्कुल जी एंड दोस्तों कई बार जो नीलम जी बातें कहती हैं जैसे नीलम जी ने कहा कि भैया ट्रोल मत करना वो मजाक वाली बात है देखिए जो चीज़ आपको कड़वी होती है जो दवाई कड़वी होती है वो सबसे अच्छा असर करती है ऐसे ही कुछ लाइफ की चीज़ें हैं जो हमें कड़वाहट से समझाई जाएं तो हम ज़्यादा समझ लेते हैं मीठी मीठी बातें की जाएं तो हमें पल्ले भी नहीं पड़ता और हम कई बार जो है खुद भी कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं खुद की चाहे वो क्रेडिट आपकी ख़राब हो गया क्रेडिट हो गया या कुछ उस तरह और कई बार अनचाही चीज़ें भी लाइफ में हो जाती हैं द पॉइंट इज़ नीलम जी के साथ जब आप संपर्क करते हैं मॉर्गेज के लिए तो याद रखिए कि फ्रॉम पॉइंट ए टू जी ये हेडेक उनका होता है to get you the mortgage, to make things happen, and to shop around and get you what is best suited for you and your family. 647-739-8710. 647-739-8710. Mortgage Queen, Mortgage Alliance say, Neelam Sadov. Neelam ji, bahut bahut shukriya. Have a wonderful weekend.
10: Thank you, sir. You too.
6: Thank you, ji. 647-739-8710. सोनू निगम की आवाज में सुनिधि चौहान दे रही हैं साथ एंड फिल्माया ऑन सलमान खान एंड लारा दत्ता द फिल्म वाज पार्टनर मरिया मरिया एंजॉय करें आते वापस

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा. लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज कीजिए 2026 GV80 सिर्फ 3.9% से अप टू 39 मंथ्स तक. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue, End John Street, Markham. We speak your language. Genesis Markham, doing luxury away. A proud member of Vane's Auto Group.

0: Sensi. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located at 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: सागर सा विशाल दुख जब नन्हे आंसुओं में समाता है, आंखों से छलक कर कलम की स्याही बन बह जाता है। आम लफ्जों का ऐसा मेल, आम लफ्जों का ऐसा मेल खास शायरी फिर कहलाता है, खास शायरी फिर कहलाता है।
0: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज कीजिए 2026 GV80 सिर्फ 3.9% से अप टू 39 मंथ्स तक। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। वी स्पीक योर लैंग्वेज। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी। एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान, सुल्तान जी हमारे साथ है। ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM, एंड द नंबर टू कॉल इज 905-450-2828। कई घरों की दोस्तों क्लोजिंग्स चल रही हैं, और क्लोजिंग्स में सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए होती है अप्लायंस लॉन्ड्री। एंड मैं सोचता हूं कि वहीं से शुरू कर लेते हैं सुल्तान जी से। सुल्तानिक डील्स आपको आपकी क्लोजिंग से पहले दिलवा देते और आप जो है पहुंच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
6: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और जैसे आपने बताया जी, बहुत सारे घरों की क्लोजिंग हो रही हैं अभी। आप बिलीव करें कि हमें किचनर, कैम्ब्रिज, स्टोनी क्रीक, वेलेंड और नियाग्रा फॉल साइड की इतनी क्लोजिंग्स आ रही हैं और कस्टमर इतना फायदा उठा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर वो ले रहे हैं फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, थ्री पीस किचन बंडल, तो $5,000 वाला उन्हें मिल रहा है 2999 में। $2,000 कस्टमर सेव करेंगे। किचन स्टेनलेस स्टील किचन का बंडल है ये, और अगर लॉन्ड्री ऐड करते हैं जी तो टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ 1099 का है। और अगर स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, $2,200 वाला 1499 का है। $700 लॉन्ड्री सेक्शन में और $2,000 किचन सेक्शन में सेव करने के बाद टोटल सेविंग $2,700 बनती है। और कस्टमर फ्री डिलीवरी हम करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी के साथ। इसके लिए आपको विजिट करना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है, BramptonAppliances.com। हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि अप टू 40% तक का डिस्काउंट है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। 905-450-2828 हमारा नंबर है जी, 905-450-2828 जी।
5: 905-450-2828। यहाँ पर अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शन में मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि कुछ हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज भी लिसनर्स के पास होती हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी जब टेनेंट आता है, नया टेनेंट आता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड द एंटायर सेटअप टू बी चेंज्ड, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें
6: जी। बिल्कुल, डेफिनेटली जी, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग घरों के लिए या रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, सिंगल वॉशर चाहिए 649 में मिल जाएगा, सिंगल ड्रायर चाहिए 549 में मिल जाएगा, सिंगल डिशवॉशर चाहिए आपको किचन में $900,000 वाली $499 में मिल जाएगी। सिंगल स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1,200 वाला $799 का स्पेशल प्रमोशन पे आया है। 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज चाहिए आपको तो वो भी $1,400 वाला $899 में स्टेनलेस स्टील का मिलेगा। कुछ भी होम अप्लायंसेस में चाहिए आपको तो बिल्ट इन किचन के साथ भी हमारे पास 40% का डिस्काउंट है, जिसमें बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वॉल ओवन, बॉश का बिल्ट इन माइक्रोवेव, बॉश कंपनी का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में है। $6,100 आप बॉश के बिल्ट इन किचन पे भी सेव करेंगे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी। 905-450-2828 905-450-2828 जी।
5: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। दोस्तों मैं ये जरूर बता दूं कि जो डील्स हमारी कम्युनिटी को डेकेड्स हो गए, मतलब ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, डेकेड्स से जो डील्स हमें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से मिल रही हैं, सुल्तान जी से मिल रही हैं फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री, आर कम्युनिटी नोज दैट। और जिस तरह से एक हर हफ्ते हर महीने हर त्यौहार पर फेस्टिवल्स पर अमेजिंग डील्स मिलती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने उतना ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस को सपोर्ट करना है, बिकॉज ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस ने हमें ऑलवेज अमेजिंग डील्स दिए। सुल्तान जी, टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अमेजिंग डील्स है फॉर दिस वीकेंड?
6: सनी भाई, टीवी सेक्शन में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है जी सैमसंग। उसकी वजह से सैमसंग ने एक्सक्लूसिव डील्स दी हैं अपने हाई एंड डीलर्स को, जिसमें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है जी इस वक्त। इसीलिए 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी सैमसंग ब्रांड में आपको $2,000 वाला स्पेशल प्राइस पे सिर्फ $1,299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे, क्योंकि सैमसंग पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है जी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप को, तो इसको मिस ना करें, इसका जरूर फायदा उठाएं। इतनी प्राइसेस ड्रॉप कभी भी नहीं सैमसंग कंपनी में अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी पे की, जितनी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बिग स्क्रीन टीवी में ड्रॉप किया गया है, और वो भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इवन 55 इंच चाहिए सिर्फ $399 में मिल जाएगा, 65 इंच चाहिए सिर्फ $699 में मिल जाएगा, 79 इंच आपको मिलेगा, सॉरी 95 इंच ये हमारे पास स्पेशल पे आया है जी सैमसंग का। 98 इंच जो $3,500 वाला सिर्फ $1,999 में मिलेगा। सो 98 इंच द बिगेस्ट स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग आपको मिल रहा है सिर्फ $1,999 का बोवेड एंड चंकूजी पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जी, $3,000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना फिर 98 इंच बिग स्क्रीन टीवी वो भी $1,999 का अपने घर में लगवाएं। और फीफा वर्ल्ड कप पे स्पोर्ट्स के शौकीन जो हैं, इस स्पोर्ट्स इवेंट को बिग स्क्रीन टीवी पे एंजॉय करें। हमारे पास स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिलीवरी फ्री है, और स्पेशल ही आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 905-450-2828 जी।
5: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
6: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
5: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
7: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare sirf 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located at 3300 Steeles Avenue East, Markhamberg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी है।
2: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ, ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.69% $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
3: Welcome back, friends, and it's almost time to say goodbye. अब हमारी मुलाकात आपसे होगी मंडे, यानी नेक्स्ट वीक। मुझे दीजिए इजाजत। CMR 101.3 FM पर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। Till then, goodbye and God bless, ladies and gentlemen.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शुभानी आपके साथ और मेरे साथ हैं आमिर। और रेडियो टोरंटो कनाडा का ये जो सफ़र है ये बहुत सारे म्यूज़िक के साथ चलेगा, गानों के साथ चलेगा और साथ में आपके लिए हमारे स्पॉन्सर्स की बहुत सारे मैसेजेस होंगे। नमस्कार, आप सभी को वेलकम करेंगे। बहुत सारा यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी अवेयरनेस है और साथ में आपका साथ है। नंबर है 4163-03-3639।
3: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलामु अलैकुम और दिल की यथा गहराइयों से निकलता हुआ सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज Lovey Dovey Show and together we will kiss the airwaves of Toronto this fine afternoon.

0: साहब दिल तो लोग ले जाते हैं, कभी कभी यूं होता है कि वो लोग दिल ले जाना चाहते हैं जो सबसे पहले आपका घर देखते हैं, आपका रहना सहना देखते हैं, वो ओढ़ना बिछोड़ना देखते हैं, फिर ही कहीं दिल तक बात जाके पहुंचती है। और ये सौदा कराएंगे बेहतरीन घर का, कमाल का प्रोजेक्ट है, इजी डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, यहां ब्रैम्पटन का प्रोजेक्ट है, कामयाब शख्सियत है, जनक सिंह छाबड़ा जी, वेलकम करते हैं आपको।
1: क्या हाल है आमिर भाई
0: जी? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूं, थैंक यू वेरी मच। नवाजिश, तोहफा तो खास ही लाते हैं आप जब भी आते हैं, आज क्या है खास?
1: सर, सबसे पहले आपके प्यारे लिसनर्स को गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप और आपकी पूरी ब्रिलियंट टीम को विशेष करके सर, ये प्रोजेक्ट है मेफील्ड और गोर रोड पर, कैलिडन, ब्रैम्पटन के बिल्कुल बॉर्डर पे, कैलिडन और ब्रैम्पटन के बिल्कुल बॉर्डर पे, ईस्ट ऑफ ब्रैम्पटन, जहां से शुरू होता है ब्रैम्पटन और कैलिडन
0: जी,
1: वहां पर प्रोजेक्ट है जो 413 हाईवे बिल्कुल कनेक्ट होके निकलेगा।
0: बिल्कुल ठीक,
1: सारे हाईवे बिल्कुल कनेक्टेड होंगे, गो स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे। सर वहां पर क्रिकेट का ग्राउंड भी दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही,
1: टेनिस बास्केटबॉल के ग्राउंड दिए जा रहे हैं। आप जो एक्टिविटीज सोच सकते हैं, गोल्फ से लेके पोल से लेके जो भी, आप सब कुछ वहां मिलेगा।
0: अरे वाह, कमाल है।
1: 2500 मकानों की मास्टर प्लान कम्युनिटी बन रही है।
0: बिल्कुल ठीक,
1: और इसमें 200 लॉट अभी उन्होंने रिलीज करने, कोई 500 से ज्यादा लोग वहां थे 17 तारीख दो दिन पहले
0: जी।
1: वेबसाइटों पर तो ये भी आ रहा है कि 1000 से ज्यादा थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लोग थे
0: जी। बिल्कुल सही,
1: तो टाउन इसमें आए सर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होल्ड।
0: बिल्कुल सही,
1: नो पीओटीएल, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई स्टैक टाउन नहीं है, फ्री होल्ड टाउन विद बैकयार्ड।
0: बिल्कुल ठीक,
1: 7 लाख के नंबरों में सेमी, 8 लाख के नंबरों में डिटैच, 800 तक स्क्वायर फीट के, 9 लाख से शुरू
0: जी।
1: 13% की रिबेट का गवर्नमेंट का फायदा जो लोग ले पाएंगे उनके लिए प्राइस है, इसकी एक विंडो है, गवर्नमेंट उसी टाइम तक वो अलाउ करेगी। इसका डिपॉजिट है सर सिर्फ 10%, वो भी 365 दिन में।
0: वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त।
1: तो करीब 75 से 76 हजार आपका टाउन का है, अगर डिटैच लेंगे तो 90 से 95 हजार एक साल में। क्लोजिंग इसकी अगले साल है 27 सितंबर अक्टूबर में। और इसका जो पहला डिपॉजिट है
0: जी,
1: जैसे टाउन के लिए 10 हजार है और डिटैच के लिए 15 हजार है
0: जी,
1: तो आपने जो सिखाया उसमें मैं भी योगदान डालूंगा थोड़ा सा।
0: अरे अरे अरे अरे वाह,
1: तो 25% मैं मिला के डालूंगा आपके पैसों में। तो जो 10 हजार आपने जमा कर रहे हैं, आपको 10 हजार की रसीद मिलेगी बिल्डर को।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही,
1: पर आपको जमा सिर्फ 7.5 कर रहे हैं, बाकी का 2.5 हजार मैं आपको मिलाऊंगा।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही,
1: और डिटैच में 3750 मिला के डालूंगा।
0: जबरदस्त,
1: 11250 ही देने, ये छोटा सा सहयोग देख मैं भी दूंगा, यहाँ पे हर डॉलर काउंट करता है।
0: बिल्कुल ठीक,
1: कनाडा में काउंट करता है, थोड़ा उनको हेल्प मिलेगी।
0: सही,
1: मुझे इतना कॉन्फिडेंस इस प्रोजेक्ट है कि हर बंदा इसको क्लोज करेगा।
0: बिल्कुल ठीक,
1: कमीशन आ ही जाएगा साल भर में। तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ और इस भरोसे के साथ कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा उम्दा है। आप देखें सर, बिल्डर बहुत स्मार्ट है, उस पहले थोड़े लॉट निकालते हैं, प्राइस डालते हैं, फिर उसको बढ़ा के दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, सेकेंड फेज में 30-40 हजार बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे पैसे। तो जो फर्स्ट फेज में ले रहेगा वो बेनिफिट में रहेगा, और ये बहुत थोड़े लॉट अभी उन्होंने निकाले हैं, पर हम PFM रियलिटी के साथ काम करते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: PFM रियलिटी,
0: सही,
1: मार्केटिंग राइट PFM रियलिटी के पास है इस प्रोजेक्ट के। तो आपको जो लॉट चाहिए वो लिप सर्विस नहीं, ऐसा ही करेंगे।
0: बिल्कुल ठीक,
1: ये लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, नॉर्थ वेस्ट चाहिए, मिलेगा आपको। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, थोड़ी सी आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ताकि आपकी यूनिट रिजर्व करा लें
0: जी। बिल्कुल सही,
1: दिखाएंगे भी, ले चलेंगे, टाइम ना हो तो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन दें, क्या चॉइस है बताएं, और हम आपकी यूनिट रिजर्व करा देंगे। 6479990935 6947990935, बाकी मेरे छोटे भाई आमिर जी संभाल।
0: अगर आपको वाकई एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें पैसा भी बने, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं या रहने के लिए खरीदना चाहते हैं, ये कैलेडन का बे इंतहा खूबसूरत इलाका है। आप देखें, आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, इनमें चमक आ जाएगी। कमाल का प्रोजेक्ट, बेहतरीन लोकेशन, कैलेडन और ब्रैम्पटन के बिल्कुल बॉर्डर पे, और इजी डिपॉजिट स्ट्रक्चर है। जनक सिंह छाबड़ा जी से इसी वक्त बात करनी है और इस नंबर पर करनी है, 6479990935, 6479990935। बहुत शुक्रिया जनक सिंह जी आपके टाइम के लिए।
1: थैंक यू।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा का ये सफर 2 बजे से 3 रेडियो टोरंटो कनाडा का ये सफर 2 बजे से 3 बजे तक आमिर और शिवानी के साथ। और दोस्तों, फ्राइडे की बड़ी खूबसूरत सी ये शाम है, और फ्राइडे क्या, हर दिन खूबसूरत नज़र आता है अगर हम हेल्दी होते हैं, अगर हम स्वस्थ होते हैं, अगर अच्छी सेहत हमारे साथ होती है, और हम अपनों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छी सी जिंदगी बिताते हैं। और ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल लगता है आजकल के वक्त में, असंभव लगता है, ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जी के रहते तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मुमकिन है आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। और 9 जनरेशन से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं गुरुजी, और उनके पूर्वज, उनके बड़े राजा महाराजा के टाइम में वो राजवैद्य हुआ करते थे। उस वक्त तो देखिए कोई भी मेडिकल साइंस उस तरीके की नहीं थी जैसे कि आज है। नाड़ी देख के, नब्ज़ देख कर इलाज करते थे, नेचुरल तरीके से इलाज करते थे। और ऐसा ही जो हुनर है वो गुरुजी के पास भी है। रेयर रेयर जगह पे जाके जड़ी बूटियां लेकर आते हैं, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर, और उससे दवाइयां बनाते हैं। इसलिए आप हमेशा बड़ी से बड़ी बीमारियों का आराम से इलाज करके जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। उन तमाम लोगों में आप भी शामिल हुई है जो गुरुजी की सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं। 4 दिन गुरुजी ब्रैम्पटन में है, यानी कल से लेकर थर्सडे से लेकर संडे तक, और मंडे ट्यूजडे वेंसडे गुरुजी स्कारब्रो में होते हैं। नंबर एक ही है, 4374383399। नंबर एक बार फिर से, 4374383399। गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: नमस्ते नमस्ते बहन जी, मैं बहुत अच्छा है, आप कैसा है?
2: बिल्कुल ठीक है, और आमिर जी भी बिल्कुल ठीक है, और हम दोनों।
3: अमित भाई साहब, अमित जी नमस्ते जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, थैंक यू वेरी मच।
3: आपकी आवाज सुने तो मेरे को एनर्जी आता है।
2: एनर्जी आती है जी।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, थैंक यू।
3: लोगों को भी आमिर का, भाई का और शिवानी जी का वो बात सुने तो बहुत, कॉफी पिए तो कितना एनर्जी है।
2: कॉफी पिए तो
3: क्या भाई, देखो भाई भगवान किसी को कोई कोई शिफा देता है आशीर्वाद। आपके ये आरजी में, ये रेडियो में बताने के लिए आपको वो परमात्मा ने आपको दे दिया था ये पावर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: इसलिए आपको आवाज रेडियो में आए तो बहुत अच्छा, लोगों को सुनने को अच्छा मिलता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू।
3: आप सही बताया था, मैं ये काम ये बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है, सेवा तरफ कर रहा है
2: जी।
3: लोगों को ठीक करना है, दुख से वो हमारा लोग इधर कनाडा में दुख से बहुत फील होता है, जॉइंट पेन के लिए और कमरे में दर्द के और आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि ये कनाडा में हमारा बोन्स में ताकत कम हो जाता है, बोन्स को अंदर यूरिक एसिड बढ़ के बहुत वीकनेस आर्थराइटिस हो जाता है ज्यादा लोगों को। और हमारा भाई लोग, बहुत लोग टैक्सी में ड्राइव करता है, यूबर करता है और बहुत लॉन्ग ड्राइव करता है।
0: अच्छा।
3: और ट्रक से, इसलिए लोअर बैक पेन हो जाता है, बल्जिंग हो जाता है, L3, L4, L5 में नर्व्स नम हो के नमनेस हो जाता है, टिंगलिंग हो जाता है, वो सायाटिक का पेन हो जाता है। वैसा लोग हमारा पास बहुत लोग आ गया ऊपर वाला का आशीर्वाद से, सारा लोग में ठीक हो गया था। हमारा हमीर भाई को बात सुनके, शिवानी जी को बात सुनके, कितना लोग है, बहुत लोग आ गया, सारा को ठीक हो गया, स्किन डिसीज के लिए, जॉइंट के लिए, आर्थराइटिस के लिए, नर्व्स के लिए, शुगर के लिए, एसिडिटी के लिए, और भविष्य बोलता है फाइल्स के लिए, एंड यूरियन में बार बार आता है, स्टोन के लिए, लास्ट वीक आया था भाई एक आदमी स्टोन के लिए, उसको किडनी में पथरा तीन पथरा है, तीन पथरा आज सुबह मेरे को फोन करके बताया था, तीन पथरा बाहर आ गया यूरिन से।
0: वाह वाह। अगर आपके गुर्दे में पथरी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज का प्रॉब्लम रहता है, थके हुए रहते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, तो नंबर एक ही मिलाएंगे
2: 4374383399। और गुरुजी हमारे प्रमोशन के बाद आपके पास लोग आते हैं, अपनी जगह सही है, लेकिन लोग जब ठीक होते हैं वो आपकी दवाइयों से ठीक होते हैं, आपके नेचुरल ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं, इसलिए वो बार बार आते हैं। और आप आइए और आपसे हम कहेंगे ज़रूर ज़रूर आइए और अपनों के साथ जो भी बीमारियाँ हैं उसका इलाज कराइए। 4374383399 पहला गुरुजी का कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, ये मैं ज़रूर बताऊँगी। 4374383399 गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
0: और इसके साथ ही अगर आजकल के हालात के मुताबिक आपको फंडिंग चाहिए, ग्रांट चाहिए, और ग्रांट में आपको बता दूं वो रकम होती है जो लौटानी नहीं होती, आप खुद इस्तेमाल करें, बैक होम भेजें, इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी खरीदें, जो जी चाहता है वो कीजिए, इस रकम से ये ग्रांट है, वापिस नहीं करनी होती है। और ये ग्रांट दिलाने के लिए हमारे साथ शामिल है नागपाल जी, वेलकम करते हैं सर आपको।
4: थैंक यू जी, सभी को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल।
0: सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है कि मुझे ग्रांट चाहिए तो कितनी देर में ये ग्रांट उसको मिल जाएगी और तकरीबन कितनी मिल जाएगी ग्रांट, कितने हजार की?
4: हाँ जी, सो लाइक इसमें लाइक आप मान के चले 30,000 to 100,000 की फंडिंग है, 30 to 90 days में क्लाइंट के घर में ठा करके पैसे जाते हैं, क्लाइंट की समझ जाते हैं, मेरे पास नहीं आते।
0: अच्छा, बिल्कुल सही।
4: इसमें लाइक कोई एज लिमिट नहीं है, आप तालीम हासिल करें, हुकूमत आपको फंडिंग दे रही है घर का खर्चा चलाने के लिए, क्या पढ़ते पढ़ते सड़क पे ना आ जाए। खर्चा मिलता है जैसे भारत में, इंडिया में, पाकिस्तान में मिलता है ना पैसे, पेरेंट्स रहते थे चलो बेटा पढ़ो हम पैसे हम देंगे,
0: बिल्कुल सही।
4: इसमें गवर्नमेंट आपको असिस्ट कर रही है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जो 30 to 100,000 की फंडिंग है, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, हाफ पोर्शन इसका ग्रांट्स है, ग्रांट्स जो कि गवर्नमेंट,
0: वेरी नाइस,
4: एक महीने बाद अभी एनरोल करें, चक के अपना फायदा।
0: या बिल्कुल ठीक। और अगली बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर फैमिली ऑफ फोर है, फैमिली ऑफ फाइव है, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं उनके, तो उनके लिए ग्रांट क्या बढ़ जाती है या क्या सिचुएशन रहती है?
4: हाँ जी, इस सिचुएशन में ग्रांट फंडिंग बढ़ जाती है। पहले तो हम फंडिंग का जब नाम सुनते हैं हमें लगता है कुछ कैच होगा, कोई क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में कि भैया कहाँ से क्या होगा इसमें कैच। चलो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा एक मिनट दीजिए सामने से। उड़ती मार्केट में 3 साल पहले मैं, हमें मार्केट का नॉलेज नहीं है, राइट, हम काम करने वाले बंदे हैं
0: जी।
4: 3 साल पहले मुझे घर पे ला दिया एक, मैंने मीठी बातें करके एक रियल्टर साहब ने।
0: अच्छा,
4: पहले तो उनकी तो गरीबी दूर हो गई, हमारी स्टार्ट हो गई। इसे कहते हैं मीठा टीका लगाना।
0: बिल्कुल,
4: हम तो वो लगाते नहीं, हमने कुछ स्वाद चखाई थी
0: जी जी।
4: तो इसलिए कोई कैच नहीं है, आप हमें कॉल करें, ऑफिस आए, आप लाइक फैमिली अगर टू है, फैमिली साइज ऑफ टू है, अगर मान लो रिटायर्ड कपल है तो उनको लाइक 45,000 की फंडिंग आती है, जिसमें से $25,000 तो आज की डेट में ग्रांट्स है। अगर फैमिली ऑफ फाइव है, 3 बच्चे हैं आपके
0: जी,
4: और लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे थे, आर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन, घर के कंफर्ट से 2 to 3 घंटे मात्र आपने देने हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, $1,00,000 उनके अकाउंट फंडिंग आती है, जिसमें से $50,000 आज की डेट में नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है।
0: ग्रांट्स है, वाह वाह।
4: एंड लाइक नो एज लिमिट।
0: मुझे ये बताइएगा कि टाइम कौन सा बेहतरीन है ये ग्रांट अप्लाई करने के लिए, कब किया जाए अप्लाई, क्योंकि बहुत सी चेंजेस भी मैंने सुना है कि आने वाली हैं बहुत जल्द।
4: बिल्कुल जी, आप मान के चले 20 जुलाई आखिरी तारीख है, मतलब एक महीना रह गया है।
0: अच्छा,
4: आज की डेट में आपको ग्रांट आ रही है, मान के चले अगर फैमिली ऑफ फोर है, $80,000 में से $40,000 आज की डेट में ग्रांट है
0: जी,
4: और $40,000 लोग ना जो कि 1.5 साल बाद वापस देना स्टार्ट करना है, जो शुरू में 0% पे और बाद में जाके 1.5 साल बाद 5% ब्याज साल का सिर्फ,
0: कोलैटरल
4: फ्री, सिक्योरिटी फ्री लोन होता है, गवर्नमेंट देती है आपको। अब देखें आप, अब 30 दिन के बाद अगर कोई एनरोल करेगा आएगा 80,000 ही, लेकिन सारा लोन होगा, लोन तो पहले हमारे ऊपर बहुत चढ़े हैं, और कुछ चढ़ाओगे अभी, फायदा लो।
0: बिल्कुल सही, आपने फंडिंग लेनी है, ग्रांट लेनी है, और ग्रांट वो पैसा जो वापस नहीं करना, 30,000 से शुरू होगा, 70,000 और कुछ केसेस में $100,000 तक की ग्रांट मिल सकती है। ग्रांट ले लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और बहुत अहम मौका है। अगर ये मौका निकल गया दोबारा वापस लौट के आने वाला नहीं। ये नंबर मिलाएंगे नागपाल जी का, अभी बात कीजिए, आज इनरोल कराइए, ये 4-6 हफ्ते में पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये रहा नंबर 437-264-3175, इट्स 437-264-3175। आपकी क्या फीस होती है इसमें नागपाल जी?
4: फ्लैट फीस है, नो कमीशन नो परसेंटेज। फंडिंग मेरे अकाउंट में नहीं आती, आपके अकाउंट में आती है। आपने अपनी ईमानदारी से 30-90 days के बाद हमारी फीस देनी कितनी? $199 या $499 है।
0: कुछ भी
4: नहीं, कैच कोई परसेंटेज नहीं है, बीटी बात करते नहीं है। ऑफ एयर भी जो फीस है वही ऑन एयर है, कोई कैच नहीं है। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, नंबर नोट करें 437-264-3175, 437-264-3175।
0: इस नंबर पर कॉल कीजिए और ग्रांट के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।

0: भाई आपको नाचना आए चाहे नहीं आए, अगर कांडा ऑप्टिकल के ग्लासेस आपके चेहरे पर लगे हैं ना, तो आपके सारे मूव्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल डांस मूव जरूर बन जाएंगे, क्योंकि आपको देख के दूसरे जरूर डांस करेंगे और सीधे पहुंचेंगे कांडा ऑप्टिकल. अश्विनी जी बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं क्योंकि वेरी मच इन डिमांड है. किस कम्युनिटी के बीच में है ये कहना मुश्किल है. उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह से हम कॉल कर रहे हैं कि अश्विनी जी आइए, डील्स बताइए. फादर्स डे आ रहा है तो अश्विनी जी आपका वेलकम है रेडियो टोरंटो कनाडा पर. कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी वेरी मच. आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करते हो, मजा आ जाता है सुनने में, और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है.
2: शुक्रिया, बहुत बहुत. तीनों की जोड़ी कही, आपकी, मेरी और शिवानी की.
0: हाँ जी.
1: बिल्कुल, मैं तो सुनता हूँ बड़े ढंग ध्यान से, ताकि कोई कमी ना रह जाए, कोई ऐसी चीज निकल ना जाए कानों से.
0: कमी ना रह जाए, कुछ ग्लासेस इधर से उधर ना हो जाए, उसके लिए आपका रहना तो बड़ा जरूरी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एंड फादर्स डे की पहले तो एडवांस में सभी को बहुत बहुत मुबारक. देखिए फादर्स डे तो रोज ही होता है, पर एक दिन ऐसा होता है कि चलो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए उनके लिए हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होता है.
2: जी बिल्कुल.
1: तो वो गुड फीलिंग है, नो मैटर हाउ ओल्ड वी गेट, वी ऑलवेज हैव टू सेलिब्रेट आवर फादर्स. देखिए यू नो वी आर लकी, हूएवर हैज फादर दे आर वेरी लकी, दे हैव इट एंड दे एंजॉयिंग देम. मैं तो, मेरे तो देखिए अनफॉर्चुनेटली डैड पास अवे हो गए थे
0: जी.
1: कुछ साल पहले. And I miss him a lot, definitely. And this is how it is. So, unki celebration ke liye ye bhi hai ki chalo yaadein unki hamare saath hai.
0: Bilkul, bilkul.
1: So, sabhi se binti karunga ki if you're looking for anything special for your father, aur jo bhi father hai, khas kar humne Kanda Optical pe. सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ही करना है
0: जी.
2: वेरी नाइस.
1: डिस्काउंट देने हैं लेंसेज के ऊपर, फ्रेम्स के ऊपर. उससे जो सबसे बढ़िया चीज है कि वी वांट टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड द मटेरियल. देखिए जो जो फ्रेम्स हैं हमारे पास ऐसे फ्रेम हैं जो कि वेरी इजीली आपको मार्केट में फाइंड करना हो तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. We carry best of the best in the world.
0: जी,
1: चाहे आपको कार्टिये चाहिए, शनेल, बुल्गेरी, प्राडा, डीटा, क्रोम हार्ट. देखिए ऐसा ऐसा सामान है मेरे पास जो कि आप नॉट ओनली बी एबल टू बाय फ्रॉम अस, ऑल्सो यू गोने सेव लॉस ऑफ मनी बिकॉज वी गोने गिव यू ह्यूज डील्स. तो सभी से विनती है प्लीज डू कम टू कांडा ऑप्टिकल. किसी भी लोकेशन पे आइए, हमारी लोकेशन सभी जगह पे है. GTA में मैनी लोकेशंस हैं, फॉर बर्लिंगटन में है, मिल्टन में है, किचनर में भी अब नई खुली है, क्लाइनबर्ग में भी अभी अभी नई खुली है. सो देर आर मैनी मैनी लोकेशन, मिसिसागा, टोरंटो, ब्रैम्पटन में काफी लोकेशंस हैं. सो आपने आना है, ये सारी सेविंग करनी है एंड वेरी इजी टू फाइंड कांडा ऑप्टिकल.
2: बिल्कुल,
1: यू कैन जस्ट कॉल 416-922-5263. व्हेन यू डायल दैट नंबर फ्रॉम देयर यू हैव ए चॉइस टू कनेक्ट विद एनी ऑफ अवर कांडा ऑप्टिकल स्टोर.
0: क्या बात.
1: चाहे आप किचनर जाना है, बर्लिंगटन जाना है, हैमिल्टन जाना है, बिल्टन जाना है, मिसिसागा, टोरंटो, इटोबिको, तो आपको बड़ा ही इजीली कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको वहाँ चॉइस मिलती है.
2: बिल्कुल सही.
1: विच लोकेशन यू वांट टू कनेक्ट टू एंड दिस वे यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द स्टोर. यू कैन आस्क देम वेरी स्पेशल्स व्हाट वी हैव एंड लोकेशन, डायरेक्शंस, टाइमिंग्स. डेफिनेटली ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन अवर कांडा ऑप्टिकल .com वेबसाइट के ऊपर.
0: अमेजिंग.
1: वहाँ आपको डायरेक्शन भी मिलेंगी, फोन नंबर भी मिलेंगे हर लोकेशन का, टाइमिंग भी सब कुछ आपको वहां से भी पता कर सकते हैं.
0: जी
2: बिल्कुल सही.
1: यू कैन बुक योर आई एग्जाम इवन फ्रॉम अवर वेबसाइट. देर इज अ कॉलम, देर इज अ बटन देयर, यू कैन जस्ट प्रेस इट फॉर आई एग्जाम एंड देन यू कैन लीव योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फोन नंबर एंड नेम. वी विल कॉन्टेक्ट यू एंड वी विल बुक द अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स डे टाइम चाहिए कौन सा टाइम चाहिए
0: कितने सारे जरिए अश्विनी जी आप तक पहुंचने के
1: कोशिश की है कि सबके लिए हम कुछ ऐसी कंफर्टेबल फीलिंग देनी चाहिए हर चीज को क्योंकि व्हेन दे वांट अ शॉप आई वांट माय क्लाइंट्स टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल व्हेन दे वॉक इन दे शुड हैव अ फुल कॉन्फिडेंस वेयर वी आर गोइंग We know we gonna get the best product with best prices.
2: बिल्कुल सही नंबर एक बार फिर से शेयर कीजिएगा जो मेन नंबर है आपका जहां से डिफरेंट स्टोर्स पे ट्रांसफर किया जा सकता है
1: जी 416-882-3399 दिस इज वन नंबर जो कि मैं हमेशा अपना नंबर भी देता हूँ ये मेरा डायरेक्ट नंबर भी है उसके बाद हमारा है 416-922-5263 इस नंबर से भी आप कहीं भी कनेक्ट किए जा सकते हैं kandaoptical.com हमारी वेबसाइट है वहां भी आप जाके सारी जानकारी ले सकते हैं
2: बिल्कुल सही
1: उसके साथ साथ हमारा सोशल मीडिया है कांडा ऑप्टिकल का टिकटॉक भी है
0: जी
1: हमारा इंस्टाग्राम भी है वो कांडा ऑप्टिकल के ऊपर है एंड देन आई हैव अनदर वन ऑन माय नेम अंडर माय नेम कांडा ऑप्टिकल
0: मैं वही कह रही थी आपका ये वाला नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रोनाउंस करना 416-922 कांडा
1: तो मेरा एक है अश्विनी कांडा के अंडर भी जो कि इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक है वहां भी मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ मैं सभी से अर्ज करूंगा कि आप हमारी ये लास्ट पोस्ट जरूर चेक करें वहां पे आपको शिवानी जी मिलेंगे एंड अमीर साहब तो होंगे ही होंगे वहां पे ग्लासेस लगा के खड़े हैं
0: सीएम टावर से उतर के
1: सीएम टावर से इनको नीचे लाना बड़ा मुश्किल था पर ले आए
2: नंबर एक ही मिलाना है सबको मिलाना है और अभी मिलाना है और यहाँ जाना है ग्लासेस साहब अब नहीं खरीदेंगे इस मौसम में नहीं खरीदेंगे तो फिर कब खरीदेंगे आंखें बड़ा अनमोल तोहफा है बहुत प्यारा तोहफा इनकी हिफाजत कीजिए ग्लासेस कांडा ऑप्टिक कल से ही लीजिए 416-922 कांडा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच
0: थैंक यू सो मच अश्विनी जी थैंक यू जी और चलिए जी ये तो आपको ग्लासेस दिला दिए अब आपको डॉक्टर बनाया जाए और मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर आपकी अच्छी अच्छी तरीके से आपकी जो अच्छी अच्छी तरीके से आपकी जो सैलरी है अगर मसाज थेरेपिस्ट की बात करें आमिर तो एक ऐसा करियर है अब आप देखिए आप एक अपॉइंटमेंट बनाएंगे आपको 2-3 महीने बाद मिलेगा इतनी डिमांड है यानी कि अच्छे मसाज थेरेपिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई कम है लिहाजा उनकी जो पे स्केल है वो बहुत अपफ्रंट है और बहुत अपस्केल है उनका और रूहानी कॉलेज में यही चीज़ होती है तो चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं चाहे मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तारीफ इनकी इस बात की है कि कम से कम वक्त में आपको ये करियर देकर देते हैं तो क्या है ये करियर्स कैसे आप इनका हिस्सा बन सकते हैं कैसे आपके बच्चे अपने सपने पूरे कर सकते हैं रूहानी कॉलेज इज द प्लेस और एड्रेस और फोन नंबर तो हम जरूर बताएंगे लेकिन पहले वेलकम करेंगे रूहानी कॉलेज के डायरेक्टर सीईओ ओम जी का ओम जी कैसे हैं आप
3: थैंक यू सोनी जी आमिर जी रियली गुड एंड काफी आज वेदर भी अच्छा है
2: जी बिल्कुल
3: तो, जी जी जी
0: बिल्कुल वेदर बहुत अच्छा है और ऐसे मौसम में लोगों को लगता है ना कि अच्छा सा मौसम है हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और हर चीज़ अच्छी लगती है अगर हम खुद अंदर से खुश होते हैं सबसे खुशी पेरेंट्स को तब होती है जब बच्चा जब इतनी मेहनत करता है तो ऐसा लगता है कि सपने पूरे हो गए उसके मसाज थेरेपिस्ट की बात करें तो हमने खुद देखा है आमिर हम और आप गए थे कि उनको आपको चेक काटते हुए भी दिखा है एंड आई वॉज अमेज्ड कि फर्स्ट जो पे चेक था वो इतना हैवी अमाउंट का था तो ज़रा बताइए इसके बारे में
3: जी बिल्कुल जैसे आपने पेचेक की बात की तो वाकई में जो भी आप आरएनटी जो हैं कहीं भी ओंटारियो में या पूरे कनाडा में कहीं भी देखें तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा अच्छा पूरे कनाडा की बात अगर मैं बताऊं कि यहाँ से किसी ने अगर किया हुआ है तो दूसरे प्रोविंस में भी चेक कर सकते हैं
0: लाइक
3: बीसी में किसी जाना वैंकूवर जाना है अल्बर्टा जाना है कहीं भी जाना है तो कहीं भी जाके कर सकते हैं यहाँ का जो सर्टिफिकेट है जो डिग्री है उसकी वैल्यू हर जगह पे है और वहाँ की बॉडी से अपना रजिस्टर करना पड़ता है जैसे बाकी सबको करना पड़ता है तो रही बात की अमाउंट काफ़ी अच्छी है काफ़ी आपने पेचेक दिखाई था तो कम से कम अगर जो मान लो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि चलो जी हमारी कोई अच्छी जॉब है, हम थोड़ा पार्ट टाइम कर लें या कुछ बिजनेस का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है कि वो एक इस डायरेक्शन में जैसे 4 कर ली तो 5 कर ली, या फिर तो भी उस कंडीशन में भी कम से कम पार्ट टाइम भी जो करते हैं, मैंने देखा कि 7-8 हज़ार उनका भी बन जाते हैं, जो फुल टाइम करते हैं उनका तो डबल हो जाता है।
0: अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर इसी के साथ अगर हम डॉक्टर की बनने की बात करें तो देखिए यहाँ तो कितनी कम सीट्स हैं और बच्चे पूरी लाइक ग्रेजुएशन में 4 साल बिताने के बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी कोई भरोसा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे में बच्चे हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपके पास तो ऐसे केसेस भी बहुत आए हैं डिप्रेशन के, आप हमसे मेंशन कर रहे थे उस दिन। तो आसान सा तरीका आपने इसलिए निकाला है एक सेवा भावना के साथ कि डॉक्टर ज़रूर शर्तिया बनेगा का बच्चा, तो कैसे ये पॉसिबल है?
3: जी देखिए सुमानी जी, ये ना हमारा कॉलेज एक बिजनेस के लिए तो चलो है, बट हमारा मेन सेवा के ही भावना है
0: जी।
3: और मैं जो भी पेरेंट्स आते हैं, जो भी हमारे से बच्चे मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो बच्चे कि आपके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी तरीके कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग यहाँ पे हैं। जो भी हमने कॉलेज ली है सारे कम से कम 20 कंट्रीज में जाके, हर मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पे जाके उनके फैसिलिटी को देखा, उनका जो बच्चे बच्चे कैसे रहते हैं, क्या एजुकेशन है, उनकी सक्सेस रेट क्या है, सारा कुछ हमने देखा और खुद एक एक्सपीरियंस किया हमने, और उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी जहाँ पे बच्चे डॉक्टर फाइनली बन जाते हैं वो भी हमने अटेंड किया। तो ए टू जेड हमें एक नॉलेज है, वो हम पूरी की पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने को तैयार हैं। और इतना ही नहीं सुनिए, देखो हमारा है कि सुनने में लगता है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव कि मेडिकल का जो MBBS की पढ़ाई है, MD की पढ़ाई है, इट्स रियली एक्सपेंसिव, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में बजट नहीं भी है तो कुछ न कुछ ऐसा फाइनेंस का हो जाता है कि आप बहुत इजी कर सकते हैं। मैं आपको जी यहाँ तक बता दूँ कि कई सारे कॉलेज हैं जो काफी चार्ज करते हैं, लेकिन कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि एक्रेडिटेड हैं और हमें पता है कि इनके बच्चे कितने सक्सेस रेट है इनकी, तो बहुत कम पैसे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो आप यूनिवर्सिटी की फी पे करते हैं 4 साल के BSc के लिए, सेम पैसे अराउंड उसी के लगभग आपका पूरा का पूरा बच्चा डॉक्टर बन जाता है और उसके बाद उसकी अर्निंग भी चालू हो जाती है।
2: तो बिल्कुल सही, आप मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, $12,000-$15,000 और कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं, मसाज थेरेपिस्ट बन सकते हैं और एक ही साल का कोर्स है, रूहानी कॉलेज जाना है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, सिर्फ इंटरमीडिएट यानी 12वीं जमात पास है, तो वो डॉक्टर बनने का अपना ख्वाब पूरा कर सकता है। इनके पास शॉर्टकट्स मौजूद हैं, कैसे बनना है ये सब बताएंगे रूहानी कॉलेज के ओम जी। ये नंबर मिलाएंगे आप, अभी मिलाइए, बात कीजिए, नया करियर अपनाइए, महीने का 15,000 बनाइए। 9057312555 नंबर दोबारा दे रहे हैं, 9057312555। ओम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच,
0: प्लेजर हैविंग यू विद अस, थैंक यू सो मच।
2: और साहब बात आपके साथ ये करनी है कि अगर आप रोड पर मौजूद हैं तो प्रोबेबिलिटी, चाहे आप सेफेस्ट ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड हैं, दुनिया के महफूज तरीन ड्राइवर हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी फिर भी रहती है कि आपका हादसा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप सेफ चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोड पे जो दूसरे लोग हैं वो भी सेफ तरीके से गाड़ी चलाएंगे, रूल सारे फॉलो करेंगे। एक बात याद रखिए, बहुत से लोग इस वजह से कंपनसेशन से महरूम रह जाते हैं कि वो बात ही नहीं करते, कांटेक्ट ही नहीं करते, उनके पास नंबर ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है, किससे बात करनी है, नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपको बेस्ट कंपनसेशन दिलाते हैं। एक ही क्लाइंट को $1,000,000 से ज्यादा का कंपनसेशन दिला चुके मास्टर ब्लास्टर, मोर देन फुल टाइम इनटू पर्सनल इंजरी, कमाल के बैरिस्टर, बैरिस्टर सैयद एम रजा, वेलकम करते हैं सर आपको।
4: और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिसनर से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं और हम उन्हें ऐसी टिप्स दें जो उनके काम आए।
5: بہت بہت شکریہ.
4: تو طفیل بھائی سید لا آفیس ایک ایکسکلوسیو پرسنل انجری لا فرم ہے جس کا ایریا آف پریکٹس ہے کار ایکسیڈنٹ، سلپ اینڈ فال، ٹرپ اینڈ فال، ڈاگ بائٹ، کاسمیٹک انجری، ایروپلین انجری ہے، یعنی جہاں بھی انجری ہے اور کسی تھرڈ پارٹی کی نیگلیجنس انوالو ہے، آپ چاہے پیسنجر ہوں، آپ پیڈسٹرین ہوں، آپ بائی سائیکلسٹ ہوں، آپ ای اسکوٹر چلا رہے ہوں، کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے گا کہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو تو آپ سید لا کو کانٹیکٹ کریں. ای اسکوٹر کے بارے میں جو ہو، کیونکہ سمر ہے، بہت سے لوگ ای اسکوٹر چلا رہے ہیں گے، تو ایک دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ ای اسکوٹر کی کوئی انشورنس نہیں ہے.
5: اچھا اچھا.
4: جی ہاں جی، کیونکہ وہ موٹر وہیکل میں نہیں آتی ہے، وہ ایک ای اسکوٹر ہے، لہذا وہ جو ہے اس کی کوئی انشورنس جو ہے وہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی جو ہے ای اسکوٹر چلاتے ہوئے جو ہے انجرڈ ہوتا ہے تو اس کا کلیم جو ہوتا ہے، اگر اس کے پاس اپنی پالیسی ہے تو اس کے تھرو پالیسی کلیم، اس کے ایکسیڈنٹ بینیفٹس کا کلیم ہوگا، اور اگر اس کے پاس اپنی انشورنس نہیں آئے گی تو جس نے ہٹ کیا ہے اس کی انشورنس پہ کلیم جائے گا.
5: رائٹ، بالکل صحیح.
4: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بینیفٹس نہیں ملیں گے، لیکن کیونکہ ای اسکوٹر کی اپنی کوئی انشورنس نہیں ہے تو وہ جو ہوگا، جو اس کی موٹر وہیکل پالیسی ہے اس کے تھرو وہ انڈیویجول جو ہے وہ کورڈ ہوگا.
5: بالکل ٹھیک.
4: دوسری بات یہ ہے کہ ای اسکوٹر میں اگر آپ جو ہے اگر ادر ڈرائیور کا فالٹ ہے اور آپ ادر ڈرائیور کو سو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو کہ جو ای اسکوٹر ہے وہ ود ان لیگل اسپیڈ لمٹ ہونی چاہیے، جو کہ ابھی تک کوئی اس پہ اتنا بڑا کیس لا ڈیولپ نہیں ہوا ہے گا. مگر آپ کو ای اسکوٹر کو اگر ہائی اسپیڈ والی آپ لے لیتے ہیں جو 25-30 کلو میٹر سے زیادہ کی اور آپ ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کا کلیم ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جو ہوگا وہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ انلیگیلٹی مانی جائے سکتی ہے. تو اس لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ای اسکوٹر جو ہے وہ ود ان دس اسپیڈ لمٹ ہو، یعنی 25-20 کلو میٹر. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر ای اسکوٹرس ہیں گی ان پہ اسپیڈ لمٹ لکھی ہوئی ہے 20-25-30 ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اگر آپ زیادہ ہائی اسپیڈ لیں گے تو اس کے میں جو ہے آپ کے ساتھ پرابلم ہے. وہ ویسے بھی جو ہے وہ سٹی میں چلانے کے لیے نہیں ہے، وہ یہ کوئی آپ کی بڑی پراپرٹی ہے، آپ کہیں وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ انٹرنلی آپ نے گھومنا پھرنا ہے، آپ وہاں پہ تیز چلا کے جہاں رسک فری ہے آپ گھوم سکتے ہیں گے. لیکن جو ہے جہاں تک بات ہے کہ اپنا آپ نے کسی سٹی میں ود ان چلانا ہے تو آپ کی ود ان جو ہے وہ یہ لمٹ میں ہونی چاہیے.
5: بالکل ٹھیک.
4: ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ انشورنس ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوتے ہیں اور انشورنس کمپنی کو جو ہے وہ اپنی گاڑی ریپیئر کرا لیتے ہیں گے اور انشورنس کمپنی سے اپنا انجری کلیم جو ہے وہ فائل نہیں کرتے ہیں گے اور نہ ہی انشورنس کو بتاتے ہیں گے کہ جی میں جو ہوں وہ آئی ایم انجرڈ اینڈ آئی نیڈ دس ٹریٹمنٹ. میں بھی وہ انیشیلی ان کو انجری فیل نہ ہوتی ہو، یہ بھی بات ہے اس کی، لیکن بعد میں جو فیل ہوتا ہے گا تو پھر وہ جو ہے وہ انشورنس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں گے. بٹ بائی دیٹ ٹائم انشورنس ٹیک دا پوزیشن دیٹ یور ایکسیڈنٹ واز دس ڈے، یور پراپرٹی ڈیمیج کلیم واز پیڈ اینڈ وائی یو ڈیڈ ناٹ ایڈوائز اس بیفور. تو انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ آپ کا کلیم جو ہے وہ ڈینائی کر سکتی ہیں، ایکسیڈنٹ بینیفٹس کا کلیم. اس لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے گا، ایک جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ نے 7 ڈیز کے اندر نوٹیفائی کرنا ہے گا،
5: رائٹ،
4: 30 ڈیز کے اندر آپ نے اپلیکیشن فار ایکسیڈنٹ بینیفٹ جو ہے وہ فائل کرنی ہے.
5: بالکل ٹھیک.
4: تو یہ جو ہے یہ لیگل لمٹس ہیں گے، اس میں آپ نے کام کرنا ہے گا. اگر فرض کیا انلیس یہ کہ آپ کے پاس کوئی بہت ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ فورسفل آپ کے پاس یا بہت ہی پرسویسیو ریزن ہو آپ کے پاس کہ اس وجہ سے آپ یہ نہ کر سکے ہیں
5: جی،
4: لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا کلیم بہت ہی ٹائملی فائل ہو.

0: अंदर बेनिफिट मिलेगा।
1: जी बिल्कुल,
0: आप अगर ज्यादा एज के हैं तो आप डेथ बेनिफिट भी जरूर बाय करें, ताकि अगर जो है डेथ की सूरत में आपको जो है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिल जाए और आपके इमीडिएट डिपेंडेंट का $25,000 का क्लेम है वो भी प्रोसीड हो सके।
1: बिल्कुल ठीक,
0: बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैंगे। रिस्क को कवर करके कनाडा में रहें, लॉयर के साथ जो है वो आप जिंदगी गुजारें, कोई भी लीगल इश्यू हो लॉयर से आप कंसल्ट करें, वरना आपके लिए जो है बहुत पीछे रह जाएंगे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कनाडा की।
1: बिल्कुल,
0: कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट हो तो फैल भाई नंबर आप बताएंगे, और एक ही एक कम्युनिटी की लॉ फर्म सिंगल सेटलमेंट $2 million एग्रीगेट क्रॉस करता है ना। कॉल करें सैयद लॉ को, वी आर हेयर
1: बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नंबर है, यही नंबर मिलाना है पर्सनल इंजरी के हवाले से, 416-937-5046, 416-937-5046। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अमरजा बैरिस्टर, थैंक यू।
2: और अब सुनिए वीकेंड स्पेशल लवी डवी सॉन्ग ब्रॉट टू यू बाय राइट विंडो फोर्ड्स, हाई क्वालिटी कैनेडियन मेड विद जर्मन लॉक्स एंड अमेरिकन थर्मल ग्लास, एनर्जी स्टार विंडोज एंड डोर्स। विंडोज बदलो, बिल घटाओ, बचत करके खुशियां बढ़ाओ, यानी कॉल घुमाओ 6474705909, 6474705909।
1: और ये खूबसूरत सा गीत है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम जो मेरी ज़िंदगी का हासिल हो, तुम्हारे लिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: भाई इश्क एक ऐसी चीज है जिस पे मर मिटना भी किसी को बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। मतलब बाकी तो इंसान अगर $5 भी देने को कहा जाए तो मुश्किल से देता है, जान ऐसे दे देंगे कि बस। इस प्यार का ये जादू है और ऐसे मौसम में प्यार और भी उमड़ता है। और प्यार जो होता है सबसे पहले हमारे घर में होता है। जब आप शाम के टाइम सोचिए, पूरे दिन के बाद जब आप अपने घर में आते हैं ना और आपको लगता है कि घर आपका वेलकम कर रहा है नई विंडोज के साथ, डोर्स के साथ, और पॉकेट पे भी डेंट बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, तो बस एक ही नाम याद आता है, राइट विंडो फोर्स का। राइट नंबर, राइट पर्सन और राइट काम के लिए राइट ही नंबर घुमाना पड़ेगा। और वो सुभानु जी का नंबर है 416-206-3200। सुभानु, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून आमिर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सुभानु। और आप जब आते हैं ना तो चमकती दमकती खिड़कियां, दरवाजे, पता नहीं कैसे अपने साथ लेकर आते हैं, तो जरा हमारे लिसनर्स को भी खुश कर दीजिए। फ्राइडे है, बोनस दे दीजिए थोड़ा सा।
1: जी, सो विंडोज और डोर्स जो भी चेंज कराने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमें याद करें 416-206-3200 पे। हम लोग डिफरेंट कैफे में, आज आपको ये बताता हूँ। नॉर्मली जो विंडोज लगती हैं वो बहुत तरीके की विंडोज आती है मार्केट में, लेकिन जो अगर वो विंडोज एनर्जी

0: नहीं है तो पहली चीज ये है कि वो पहला रेड फ्लैग होता है कि आपने वो विंडोज को बिल्कुल ही यू नो मना कर देना है, मतलब यू डोंट इवन आस्क फॉर अ कोड. क्योंकि जो एनर्जी स्टार विंडो नहीं है वो सर्टिफाइड नहीं है गवर्नमेंट से. सो एनर्जी स्टार का मकसद क्या होता है? एनर्जी स्टार का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट इसको अपनी लैब में टेस्टिंग करती है, प्रेशर टेस्टिंग होती है, इवन जो जाली होती है उस तक की भी प्रेशर टेस्टिंग होती है. जी, सो इस लेवल पे जब टेस्टिंग होती है तो वो विंडोज तैयार होती है अप टू -45, -40 तक ठंड को लेने के लिए. प्लस 40 भी अब हम बोलना शुरू कर देना चाहिए जो हाल हो रहा है गर्मी का, तो प्लस 40 पे भी वो टेस्टेड होती हैं. और आपकी बिजली के बिलों में बहुत फर्क आता है.
1: तो प्लस एंड माइनस अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से लगा लीजिए, लेकिन गर्मी सर्दी के एक्सट्रीम केस को हैंडल करती हैं, राइट?
0: जी जी, एब्सोल्युटली
1: जी. और नंबर एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं आपका, 416-206-3200. एनर्जी स्टार विंडोज और नॉन एनर्जी स्टार विंडोज, ये तो आपने एक टेम्परेचर का बताया, साथ में अगर खुशी तो सही मायने में तब होती है जब हमारी बचत होती है. ये सारी चीजें मनी से आती हैं क्योंकि वी वर्क रियली हार्ड और उसके बाद पैसे बचते हैं तो खुशी होती है. तो सेविंग भी होती है बिजली के बिल की, आप जिक्र कर रहे थे सुबह.
0: जी डेफिनेटली. सो जो एनर्जी स्टार सर्टिफाइड बिल्स होते हैं, जो विंडोज होती हैं, तो गवर्नमेंट खुद क्लेम करती है नेचुरल रिसोर्स कनाडा की आपकी 30% तक बिल कम आता है जब आप एनर्जी स्टार विंडोज लगाते हैं. 30% मीन्स अगर आपका $400 का बिल आ रहा है गैस का, एनब्रिज का, तो यू आर ऑलमोस्ट सेविंग अबाउट $100-$120 पर मंथ. सो जी, दैट इज द काइंड ऑफ ड्रॉप दैट यू सी. तो आप देखिए. अच्छा, अब मैं इसका एक आपको और बेनिफिट बताता हूँ कि $100-$120 तो आपके जो बचेंगे सर्दियों में बचेंगे.
1: जी.
0: अगर फर्ज करिए आप कहते हैं कि भाई वो तो बचेंगे लेकिन हम 8-10 हज़ार, 15 हज़ार लाएंगे कहाँ से?
1: एग्जैक्टली, अपफ्रंट कैसे पे करेंगे, राइट?
0: जी. सो जो आपकी बचत हो रही है वो $100-$125 की विंटर के अंदर. अच्छा. आप उसको अपनी फाइनेंस की तरफ कर सकते हैं. हम एक स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर टाउन हाउसेस जो हैं, अगर आप सारी विंडोज कराना चाहते हैं अराउंड एक मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ $75-$80 पर मंथ के बीच में.
1: ओ वाओ.
0: जी, क्योंकि आजकल मोबाइल के प्लान जो है वही $60-$70 के होते हैं. तो यहाँ मैं आपको घर की सारी विंडोज एनर्जी स्टार रिप्लेसमेंट विद इंस्टॉलेशन के साथ $70 पर मंथ के हिसाब से आप चेंज करा सकते हैं.
1: क्या बात है, क्या बात है.
0: सो आई थिंक, जी, सो आई थिंक कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपकी विंडोज वाकई आपको तंग कर रही थी. क्योंकि ये जो विंटर गई है ना शिवानी जी, इसमें यू वोंट बिलीव कि जो कस्टमर पिछले 12-18 महीने से कोट लेके बैठे थे वो सारे दौड़ के आए हैं.
1: बिल्कुल, बहुत हार्श विंटर्स थे और समर का भी आलम यही है, वही 40+ माइनस वाला जो आप बता रहे थे.
0: जी जी जी जी जी. सो इट इज राइट टाइम. और जैसा अभी वेदर के पैटर्न्स आ रहे हैं और जो हमें दिख रहा है आगे, डेफिनेटली इट विल नॉट बी एबल टू, योर विंडोज अगर ओल्ड है, 17 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, तो सस्टेन नहीं कर पाएंगी उस वेदर को.
2: जी बिल्कुल सही. आपने बिल्स बचाने हैं, आपने एनर्जी सेव करनी है, घर का टेम्परेचर ठीक रखना है और सस्ती विंडोज लगवानी है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट के साथ लगवानी है. $70-$75 महीने के लगेंगे, सारे घर के लुक, टेम्परेचर, एनर्जी सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा. 416-206-3200, 416-206-3200. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम.
1: थैंक यू सुबानु.
0: थैंक यू
1: हैविंग यू विद अस.
0: थैंक यू अमर.
2: और साहब, कारोबार करने की ख्वाहिश सबकी होती है. आज ऐसी शख्सियत से आपकी बात करवाएंगे जिनका ये कहना है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, कारोबार करना है, एक कॉल कीजिए, आपको कारोबार कराएंगे, बढ़िया शानदार कराएंगे और पैसा भी बनाएंगे. हसीब शेख, वेलकम करते हैं आपको.
3: थैंक यू वेरी मच जी. सो नाइस ऑफ यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन एंड काइंड वर्ड्स. जब से वो क्या नाम है आपका, ये शाम का टाइम हुआ ना, तो आपका जो स्पीड है वो 407 वाली हो गई है.
2: बात ये है हसीब शेख साहब के T20 के जमाने में आज भी कुछ लोग टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं, बहुत पीछे रह गए.
3: लेकिन जो लिसनर्स होते हैं ना, वो गाड़ी में बैठे होते हैं, वो 407 वाले नहीं होते. उन्होंने सुनना भी होता है, लिखना भी होता है, नोट भी करना होता है. पहले आपकी जो स्पीड थी ना वो अकोमोडेटिव थी फॉर द स्पॉन्सर्स एंड फॉर द लिसनर्स.
2: बहुत शुक्रिया हसीब शेख साहब, आपसे फिर बात होगी. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल लेंगे हम. बहुत बहुत शुक्रिया हसीब शेख.
1: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।

0: और साहब, अगर आपको ग्रांट लेनी है तो $70,000 तक की ग्रांट आपको मिल सकती है, और कुछ केसेस में $1,00,000 तक की ग्रांट है। इट इज ग्रांट, नॉट लोन। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रांट, जो आपको लौटानी नहीं है, वापस नहीं करनी है। वो आपका पैसा है, आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और शामिल है हमारे साथ नागपाल
1: जी। सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।
0: कैसे मिलती है ये 70,000 की ग्रांट नागपाल?
1: हाँ जी, इसमें लाइक अगर आप पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, लो इनकम फैमिली में आप हैं, मिडिल इनकम फैमिली में आप हैं, लाइक आपकी इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, तो आपके लिए से आप एलिजिबल हैं 30,000 to 100,000 की फंडिंग हासिल करें, जिसका हाफ पोर्शन आज की डेट में क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स। वो पैसा जो वापस ही नहीं करना। आप तालीम हासिल करें, आपकी उम्र की कोई सीमा नहीं है जी, 50 साल के हैं, 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, तालीम हासिल करें, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें। हमारे इतने अंकल आंटी पढ़ रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं। अभी अंकल का फोन आया, कहते अब हम पहले में ताश खेलने जाता था पत्ते, अब हमारा यहीं से टाइम पास आता है ऑनलाइन क्लास लगा के। तो इसलिए आप फंडिंग हासिल करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आएं। कोई कैच नहीं है जी, 7 ईयर्स से बिजनेस में हजारों को हेल्प कर चुके हैं।
0: बिल्कुल ठीक। अगली बात मैं पूछना चाहता हूँ, किस उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
1: उम्र की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे क्लाइंट्स जो हैं वो 30 ईयर्स के भी हैं और 75 ईयर्स के भी हैं, और आप आज अप्लाई करते विद इन 30 to 90 डेज में आपके खाते में फंडिंग आती, मेरे खाते में नहीं आती। कोई कैच नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट्स के लगते हैं नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट। कोई कैच ही नहीं है, जितनी कम इनकम है उतनी ज्यादा फंडिंग है। तो कौन सी सेटिंग आ गई, कौन सी अप्रोच आ गई, कौन सी कमीशन आ गई, बताओ। जितनी कम इनकम है, मैं तो कहता हूँ अमीर बंदे को फायदा ही नहीं है, मत करें कॉल। आप हमें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, आपकी इनकम $70,000 से कम है तो ही कॉल करें। यहाँ पे कुछ सेटिंग है ही नहीं, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, तो नो क्रेडिट चेक। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। एक महीने में रूल चेंज होने वाले, ग्रांट्स कट कर रही है गवर्नमेंट। कॉल करें, असेसमेंट करें, रिटायर्ड है, पेंशन आ रही तो भी आप एलिजिबल हैं।
0: बिल्कुल सही। अगली बात मैं जानना चाहता हूं कि ये उबर ड्राइवर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या फिर कुछ लोग हैं हाई स्कूल के बाद ऑफ एयर हो गए, ऑफ हो गए, कुछ किया नहीं उन्होंने, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो भी एलिजिबल हैं क्या इसके?
1: बिल्कुल एलिजिबल है, पीआर है, सिटीजन है, चाहे ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं। अभी अभी लाइक हमारे पास आपका शो सुन के स्कारब्रो से आए थे, वो भी रिटेन हो गए। हमने दिखाया जी, आपने कितने केस देखने, कहते 10 दिखा दिए, उनकी उम्र के सारे।
0: बिल्कुल
1: यार, आपके कौन फंडिंग आती, गवर्नमेंट एजुकेशन फंड कर रही है। हम सिर्फ एजुकेशन फंडिंग में डील करते हैं, कोई सेटिंग वाला काम ही नहीं करते जो 2 नंबर में 1% 2% पे होता है। नो एजुकेशन कंसल्टिंग कर रहे हैं, कोई कैच नहीं है। हमारी फ्लैट फीस $199 या $499 है, वन टाइम फीस है। काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से हमें इंटरेक्ट करनी है, बाद में, अभी कुछ नहीं।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है नागपाल जी का, ये नंबर मिलाएंगे 437-264-3175, नंबर अगेन 437-264-3175 ग्रांट के लिए यही नंबर मिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: थैंक यू।
2: और इसी के साथ लवी डवी शो पर आमिर और शिवानी को आप इजाजत दीजिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड और हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस। 416-303-3639 अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
0: एंड हे यू, आई लव यू।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masniki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masniki Rail Gari, aayi Sean Express, Masniki Rail Gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean मीडिया.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी के फ्राइडे के स्पेशल आज के शो में. और शो की शुरुआत में देते हैं बहुत ही प्यारा सा विचार जो कहता है कि उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़ना, मुस्कुराने का मौका कभी मत खोना. कल कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज खुश रहना कभी भूलना मत. इस मोमेंट को किस तरह से हमें अच्छा बनाना है ये हमें पता होना चाहिए. तो आगे वाले आने वाले कुछ मोमेंट्स हमें दे दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम देने जा रहे हैं आपको भरपूर एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का पिटारा मस्ती की रेलगाड़ी पर. 4 बजे तक चलेंगे साथ साथ. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812. और आप सभी का स्वागत है. शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ. स्टे ट्यून्ड.
5: Sean Express न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय Sean मीडिया.
8: नमस्कार, Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन. पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें. ईरान की मशहूर सिंगर परस्तु अहमदी और उनके साथ काम करने वाले 8 लोगों को ऑनलाइन कॉन्सर्ट के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई. उन पर 2 साल तक देश छोड़ने और 2 साल तक किसी भी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई है. ईरान अमेरिका समझौते के बाद इस हफ्ते हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल गया. हालांकि दुनिया अभी भी तेल संकट से पूरी तरह बाहर नहीं निकली है. एनालिटिक्स फर्म केपलर की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के करीब 4 महीनों में वैश्विक बाजार से 115 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई गायब हो चुकी है. इसका असर आने वाले महीनों तक बना रह सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है. रॉयटर्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सीज फायर शुक्रवार शाम 4 बजे स्थानीय समय से लागू हो गया है. और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें. भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है इस बार बारिश के बादल का. और मानसून 11 दिन से दक्षिण के तेलंगाना में अटके हुए हैं, मैदानी इलाकों में इंतजार है. देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हुआ है. बंगाल के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई. कोलकाता एयरपोर्ट पर अगरतला जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट पर बिजली गिर गई. लेकिन अब भी भारत का बड़ा हिस्सा है जो इंतजार कर रहा है बारिश के बादलों का, मॉनसून का. कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी से सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट्स के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है. दिपके ने शुक्रवार को पीएम को पत्र भी लिखा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं. हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी. वो प्रियंका गांधी के साथ आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंचे. यहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में केक काटकर जन्मदिन मनाया। पीके, किल दिल और शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस मानवी गागरू ने कास्टिंग काउच पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत में उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 1,00,000 रुपए का ऑफर मिला था। अपनी एक्टिंग, कॉमेडी और मिमिक्री से लोगों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर उत्तराखंड स्थित संत नगरी ऋषिकेश में गंगा किनारे घाट पर सोए दिखे। सुनील ग्रोवर ने वीडियो को शेयर कर लिखा, तारे जमीन पर। सुनील ग्रोवर की नेटवर्थ करोड़ों में है। सुनील ग्रोवर ने ऋषिकेश में घाट पर सोने वाले घुमक्कड़ साधुओं और विरक्त श्रद्धालुओं के साथ रात गुजारी। जिस जगह ग्रोवर चादर बिछाकर सोते दिखे वो त्रिवेणी घाट का इलाका है। ऋषिकेश को मोक्ष का स्थान माना जाता है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
5: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों, आपका स्वागत करती है शालिनी CMRFM 101.3 पर विन लाइफ टाइम के इस सेगमेंट में. और आज फ्राइडे का फैंटास्टिक दिन है. आज बड़ा हैपनिंग सा दिन है. और इस दिन अगर आपने एक बात सुन ली और उस बात पर अमल कर लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी सुधर सकती है. यानी आप जिंदगी भर जीत सकते हैं. कैसे जीत सकते हैं जानने के लिए आपको लिए चलते हैं विन लाइफ टाइम की तरफ. और हमारे साथ जुड़ेंगे रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी. Raffi ji, good afternoon and welcome to the show.
2: Thank you very much. Good evening, good afternoon to you and your listeners.
1: वेरी गुड आफ्टरनून. थैंक यू सो मच वंस अगेन राफी जी. तो चलिए, फ्राइडे आ चुका है और फ्राइडे सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि ये एक वर्किंग वीक का लास्ट डे होता है और इसके बाद लोगों को प्लानिंग करनी होती है सैटरडे की. और हमारे कई सारे लिसनर्स ने आपकी सैटरडे का जो फ्री सेमिनार है उसके लिए अपनी सीट्स बुक की हैं. पर जो लोग नहीं कर सके उनको बताएं कि कल ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से हम सभी लोग अपनी लाइफ को एक बड़ा पॉजिटिव सा टर्न दे सकते हैं.
2: देखिए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी हर मौके पे आती है. 2008 से हम सेमिनार करते आ रहे हैं, हजारों लोगों ने सेमिनार सुना है, कुछ पहली दफा सुन रहे हैं. मैं यही कहता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसा स्किल लाइफ में लेके आना है कि आपको कल आने वाले पैसों की स्ट्रेस ना हो, आपको अपनी जॉब का खतरा ना हो, एम्प्लॉयर का खतरा ना हो, बिजनेस का खतरा ना हो, तो कोई ऐसी स्किल सीख लें जो रिसेशन प्रूफ है. ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये हम सिखाते हैं, पिछले 18 साल से सिखाते आए हैं. ऑफ कोर्स जब आप भी हमारा ऐड लेती रही हैं तो हम यही कहते थे पहले इसको ज्वाइन करें फिर आपकी कन्वर्जन खुद ही आ जाएगी.
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है. तो कल आपका सेमिनार है राफी जी, तो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, क्या प्री रिक्विजिट चाहिए इस ट्रेडिंग बिजनेस को सीखने के लिए और इससे पैसे कमाने के लिए.
2: ट्रेडिंग की प्री रिक्विजिट यही है, आप गुड फॉलोअर है, वो आपको इंस्ट्रक्शन हम जो दे हैं वो फॉलो कर सके. ना आपको कोई अकाउंटिंग चाहिए, ना सॉफ्टवेयर की कोई स्किल चाहिए. बेसिक सी चीजें हैं, सिर्फ हमें फॉलो करें और फिर एक्सपर्ट सुपरविजन के नीचे हम आपको बिठा देते हैं और एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज टू 2 मंथ्स आप सीख जाते हैं.
1: 14 दिनों से 2 महीने तक का टाइम देना है दोस्तों आपको. आपने जैसे सुना तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो यू नो 14 दिन थोड़े से कम स्मार्ट हैं, या मैं ये कहूं कि थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं अगर, तो शायद 2 महीने आपको लग जाएं, राइट, अगर आप किसी और काम में हैं. तो क्या इस काम को अपनी रेगुलर जॉब के साथ किया जा सकता है राफी जी, एंड इफ यस तो इसमें कितनी फंडिंग डालनी होती है?
2: आसान क्वेश्चन पहले करता हूँ, कोई फंडिंग नहीं डालनी, क्योंकि मैथ्स के भी पेपर में पहले लोग स्टूडेंट्स आसान कर लेते हैं ना. तो आपके 2 क्वेश्चन है. सबसे पहला है कि आपने अपने पैसे इस इंडस्ट्री में नहीं डालने. ये हमारी, मैं आपसे बेग करता हूँ कि ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो अपने पैसे ना लेके आए. हमारे पास ऐसी फर्म्स हैं जो कैपिटल दे देती हैं, सारे का सारा रिस्क वो लेती हैं. नंबर 2, कौन कर सकता है? कोई भी करे, पार्ट टाइम जरूर शुरू करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता लें. लो स्टार्ट करते हैं $50 to $100 a डे और आज हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं. आज के वी के पीपल हैव टेकन $15,000-$20,000 होम टुडे विदाउट इन्वेस्ट.
1: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. तो वेल दोस्तों, कल बिल्कुल फ्री सेमिनार है और दोपहर के 1 बजे मिसेस आगा की 2 लोकेशन पर होने जा रहा है. फ्री सीट है, आप जल्द से जल्द बुक कराएं. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी. winlifetime.com 10 नंबर के फासलों पर खड़ी है आपकी अपॉर्चुनिटी. गो एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स टू लेट. 905-206-1008. That's 905-206-1008. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए राफी जी. हैव अ ग्रेट वीकेंड, फिर आपसे जुड़ेंगे.
2: थैंक यू.
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
1: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग. स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ. और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600. दैट्स 416-732-3600.

0: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
1: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
0: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 months एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
6: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका स्वागत है ऑन CMR FM 101.3. मैं हूं शालिनी और कहते हैं दोस्तों कि अब फादर्स डे वीकेंड है और पापा के बारे में कहते हैं कि मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है. तो भाई अब जो है ये फादर्स डे वीकेंड है, फादर्स को तो स्पेशल फील कराना ही है. उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं परफेक्ट एग्जांपल पवन मिड्डा जी, लेटेस्ट डील्स के साथ 5 लोकेशंस टू सर्व यू, मिड्डा फर्नीचर गैलरी. पवन जी आपका वेलकम है.
7: थैंक यू वेरी मच जी, और आपका जो सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार आप देते हैं. और रही बात फादर्स डे है, और हमारी तरफ से सबसे पहले मेरी तरफ से वो जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, या जो बुजुर्ग हैं मेरे, जो पिता समान है, जैसे हम तो उस कल्चर में हमारा जन्म और हमारी पालन पोषण हुआ है, जब ताया चाचा मामा मासड़ और फूफा जो बड़े हैं होते हैं आपके, उनको सभी आप पिता समान रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े भाइयों को भी, क्योंकि बड़े भाई का, बड़ा भाई पिता का रोल भी आपके लिए निभाता है जिंदगी में, बड़े भाई को भी आप वही सम्मान देते हैं. तो पिता तो हमेशा दुआएं ही देता रहता है, प्यार ही देता रहता है, हम बच्चे पिता को क्या दे सकते हैं. तो पिता तो स्माइल से भी खुश हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फादर्स डे है, हमें उन्हें स्पेशल फील कराना चाहिए. जो भी आपको पसंद है, तो जो भी पिता को पसंद है, आपके पिता को पसंद है, आप उनको जरूर वो करें, उनको खुशी खुशी मिले. और रही बात जैसे मैं कहता हूँ, आप मेरे बहन भाई हैं और फर्नीचर की कोई आइटम लेके दे रहे होंगे, अगर आप डैड को लेके दे रहे होंगे, तो हम भी वो कहते हैं ना, जैसे आप 3 या 4 बहन भाई होते हैं तो मिल के कुछ डैड के लिए गिफ्ट दे रहे होते हैं. तो जब मैं आपको कहता हूँ आप मेरे भाई बहन है, तो मेरा भी हिस्सा बनता है उसमें कि मैं भी डालू. तो मैं, मेरी तरफ से यही है कि ईमान से जो भी आइटम आप डैड के लिए लेना चाहेंगे, तो अपना मार्जिन छोड़ देंगे, अपना मार्जिन हम भी छोड़ देंगे. 3-4 आइटम मैंने कल कहा था कि रिक्लाइनर चेयर 399 की लगाई थी, नेक्टर की मैट्रेस है वो आपको जो बाजार से 15-20 मिनट सस्ती दे देंगे, और 365 गारंटी भी दे देंगे. फर्नीचर की कोई भी आइटम जो आपने डैड के लिए लेना चाहेंगे, इसके अलावा जो सेल तो वही है, रिस्पेक्ट तो वही है, जो दिल से की जाए. ऐसे तो भी बोला जाए इतने वाला इतना, इतने वाला इतना, तो बिल्कुल डीलें होती हैं हमारे पास, होती हैं, सदा लगाते हैं, हर वीकेंड लगाते हैं. और फिर मैं ये भी कहते हैं कि आप अजमाएं हमें पहले, एज ए कस्टमर आप जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं, आप तो एप्पल ढूंढ रहे हैं, कि जैसे शालिनी जी सोफा कनेडियन मेड 599, और कनेडियन सोफा 1599 का भी हो सकता है. तो ना तो 1599 वाला 599 में मिल रहा है, ना 499 में मिल रहा है. तो आप कंपेयर जरूर किया करें. हाँ, 500% ऊपर नीचे हो सकता है, कि अगर किसी ने 599 का, कोई 550 का भी दे सकता है, और कोई 700 भी मांग सकता है उसका ना, क्योंकि एवरीबॉडी इज अवेयर एंड स्केयर ऑफ कंपटीशन. हम सस्ते के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बाइंग हम करते हैं. जैसे मैंने कल कहा था कि एशले का पावर रिक्लाइनर हमने बाय करा है, और अच्छा लगता है, मैं नाम बताऊं, लेकिन गूगल पे कई बार तो इशारे ही आप समझ जाते हैं, 2499 का लगा हुआ है, हम 1699 का देंगे, क्योंकि वो हमने कंटेनर में बाय करा है. कंटेनर में वो 30-40 रन की जो बचत हो रही है, इसी वजह से सस्ता है, और कोई मेरा नहीं हो रहा. तो हमें आशा है कि आप कंटेनर ले लेंगे, हमने बुक कराया. तो जो आप लेना चाहते हैं, हमने बहुत सारे स्पेशल हैं, चाहे वो 499 का सोफा है, 1199 का सेक्शनल है, 699 का सेक्शनल है, अगर आप प्राइस पॉइंट सुनना चाहते हैं तो 799 का बेडरूम सेट भी है। लेकिन जिस आपके एशले का एक बेड है 1199 का, $700 अकेले बेड के पीछे मेरी प्राइस कम है जब आप मेरी मॉडल टू मॉडल कंपेयर करते हैं। तो आप आए, आजमाएं और हमें अपना बनाएं। एशले फर्नीचर के सबसे बड़े डीलर हैं, मार्बल टेबल्स, सिरेमिक टेबल्स, पैनल वाले बेड। वैसे जाते जाते डील वो अगले लिंक में के लिए रखी थी, वैसे आज अगर कोई हमें लेकर वाले बेड लेने आएंगे किसी भी स्टोर पे तो 2000 के तो हर जगह लगे हुए हैं, पर बेटा फर्नीचर पे 1699 के अंदर 6 पीस आपको 1, 2, 3, 4 मॉडल की प्राइस भी आपको देने जा रहा हूँ। ये है
6: Beautiful.
7: आपका प्यार, हम आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। फादर्स डे पे आए, आजमाएं, अपना बनाए। बेटा फर्नीचर 4169012810, 4169012810। थैंक यू वेरी मच जी।
6: थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे, कुछ और डील्स लेते हैं। तो भाई जी, फादर्स डे लॉन्ग वीकेंड है और हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं। लॉन्ग अपने आप ही कह दिया, क्योंकि जब प्यार होता है, विश्वास होता है, अपनों के साथ समय गुजारते हैं तो लंबा समय होना चाहिए। अपनों के लिए वक्त भी रखिए दोस्तों, हमेशा डोंट ट्राई टू बी बिजी ऑल द टाइम। तो पेरेंट्स को सिर्फ हमारा वक्त चाहिए दोस्तों, पेरेंट्स को पैसे नहीं चाहिए। गिफ्ट तो चलिए अच्छी बात है, गिफ्ट्स भी लेके देने चाहिए, उनको स्पेशल भी फील कराना चाहिए, लेकिन वक्त सबसे ज्यादा चाहिए। तो बच्चों को भी पेरेंट्स को वक्त देना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को वक्त दें। तो जब हम सब साथ होते हैं तो हम अपने घर पर होते हैं, घर पर जब हम एक साथ मिलकर वक्त बिताते हैं ना, तो वो वक्त जो है बहुत ही ज्यादा एब्सोल्युटली प्रेशियस हो जाता है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि आपके घरों में 4 चांद लग जाएं, या अगर कोई ऑफिस है आपका वो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड लगने लगे। जब आप बात करते हैं विंडोज एंड डोर्स की तो सिर्फ एक नाम याद आता है, यश विंडोज एंड डोर्स। और इस कंपनी का यश इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की हार्डवर्क, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और एक पर्सन है जो हमेशा सबको मोटिवेट करता है, वो है धर्म जी। हमारे साथ जुड़ेंगे धर्म जी लेटेस्ट अपडेट के साथ। धर्म जी वेलकम, हाउ आर यू? से हम कनेक्ट नहीं कर सके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी सो स्पेशल टुडे। और ये जो आज का दिन है स्पॉन्सर कर रहे हैं देओल ट्रैवल, और देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं। टोरंटो से बैंगलोर अगस्त टू सितंबर एंड या अक्टूबर एंड तक आप जा सकते हैं, राउंड ट्रिप लगा है 1365 में। टोरंटो से दिल्ली जुलाई के महीने में वन वे 1049 में, 2 बैग्स के साथ। नाउ टोरंटो से बैंगलोर 849 में विद 2 बैग, सितंबर में वन वे। फिर टोरंटो से दिल्ली अक्टूबर में वन वे 970 में विद 2 बैग्स। टोरंटो से पेरिस डायरेक्ट फ्लाइट लगी है अगस्त एंड सितंबर तक, रिटर्न फेयर है 920। दो लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200। आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर CMR FM 101.3 मेरे यानी शालिनी के साथ। इट्स 3:23 राइट नाउ। बहुत जल्दी हम चलते हैं यश विंडोज एंड डोर्स की तरफ और करेंगे मुलाकात धर्म जी के साथ। अब धर्म जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्म जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? वेलकम।
8: मैं एकदम पहुंच रही है आपको और सारे श्रोताओं को स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं।
6: थैंक यू सो मच, नमस्कार, हमसे जुड़ने का शुक्रिया धर्म जी। और जैसे मैं भी बता ही रही थी अपने लिसनर्स को कि ये जो यश विंडोज एंड डोर्स में बहुत सारे लोगों की मेहनत है इस नाम को इतना बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे, और आपका मोटिवेशन हमेशा रहता है पूरी टीम को, और आप जो है हमेशा एवरी सिंगल डे यू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, और एक एक चीज, एक एक प्रोजेक्ट ओवरलुक करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लगाई जा रही हैं। तो हमारे लिसनर्स को बताएं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यश विंडोज एंड डोर्स को दूसरों से अलग बनाती हैं।
8: पहले तो ये फैमिली ओन कंपनी है
6: जी,
8: अकेली कंपनी ऐसी है कि जो 95% रिटेल करती है, घर घर जाके विंडो बेचती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे हर रोज 4 से 5 या 6 प्रोजेक्ट एवरी डे जो होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पर, अच्छा पैसे लेने जो उनके जो पैसे लेने उनके फाइनल अमाउंट लेने भी हम लोग ही जाते हैं टू मेक श्योर करें कि एवरीथिंग इज परफेक्ट।
6: ठीक है,
8: ये सारी डिटेलिंग जैसे जॉब शुरू होगी हमारा आदमी वहाँ के खड़ा रह जाएगा ऑफिस से, मेक श्योर करेगा, चेक करेगा, फिर दोपहर में कोई और जाएगा, शाम को और जाएगा।
6: अच्छा,
8: तो ये इतनी डिटेलिंग चेक करने कोई कंपनी मेरे ख्याल से हमारे सिवा कोई जाती होगी मुझे याद नहीं है, और जाता होगा, जाते होंगे तो बहुत अच्छा है।
6: वेरी नाइस, इतनी पर्सनलाइज्ड अप्रोच है आपकी कंपनी में सब लोगों की धर्म जी, जो भी यहाँ से इंस्टॉल कराता है विंडोज एंड डोर्स, दीज आर द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम द कम्युनिटी। अब अगर मैं बात करूँ विंडोज एंड डोर्स की क्वालिटी के बारे में, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स?
8: पहले तो यस, विंडोज की प्रोफाइल इसकी खुद की है, डाई हमारी खुद की है, विंडो फ्रेम हम प्योर वर्जिन मटेरियल से बनाते हैं, 30 साल की, यानी विंडो क्रैक हो गई तो 30 साल की वारंटी है, नंबर वन। नंबर टू, अकेली यश विंडोज ऐसी कंपनी है कि जो लोई 366 बाय डिफॉल्ट दे रही है, बाकी ये ऑप्शन आपको दूसरी कंपनी में अपग्रेड ऑप्शन में लेना पड़ता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है।
6: क्या बात है,
8: पूरी 30 साल की वारंटी है। थर्ड थिंग, मल्टीपल लॉक सिस्टम जो हमारे पास है ओंटारियो में किसी कंपनी के पास नहीं है, छोटा बच्चा या सीनियर इजीली खोल पाते हैं, बंद कर पाते हैं, उसकी भी एक या दो साल की वारंटी नहीं है, पूरी 30 साल की वारंटी है। मेरे ख्याल से ये वारंटी वी आर द हाईएस्ट इन ओंटारियो।
6: अरे वाह, अमेजिंग।
8: ये कंपनी हमसे सबसे अलग बनाती है। तो लास्ट थिंग एक मैं और बोलना चाहता हूँ, हमारे 34 प्रोफेशनल इंस्टॉलर्स हैं।
6: ओह वाओ,
8: इसमें से ज्यादातर इंस्टॉलर टर्किश हैं, टर्किश कम्युनिटी जानी जाती है, पर्शियन एंड टर्किश वो जानी जाती है परफेक्शन के लिए।
6: दैट्स राइट,
8: हमारे सारे इंस्टॉलर, मोस्ट ऑफ द इंस्टॉलर, दे आर टर्किश एंड पर्शियन। तो ये सारी चीज इतनी बारीकाई से देखी है हमने। ये आपकी विंडो डोर लगने के बाद 5 किलोमीटर के एरिया में आपको ऐसी विंडो डोर नहीं मिलेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ।
6: वाओ, दैट इज सो अमेजिंग धर्म जी। और नंबर यहाँ पर बता दूं दोस्तों, यश विंडोज एंड डोर्स, 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। अब आपकी ग्रोथ में अगर हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, वो हिस्सा बनना चाहें धर्म जी, जो बिजनेस करना चाहते हैं आपके लफ्जों में, जैसे कोई सही मायने में व्यापारी है और ग्रोइंग टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी है?
8: सिंपल से कॉल करो 416-732-3600, हमारे सामने आके बैठ जाइए, हम एक दूसरे को परखते हैं, और बहुत सारे टाउन अभी खाली हैं जिसमें आपको आपका शोरूम ही खोलना है। विंडो की मेजरमेंट हम करेंगे, इंस्टॉलेशन हम करेंगे, सारा गार्बेज डिस्पोजेबल हम ही करेंगे, और सारी सर्विसेज हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको। सेल्स एंड सेल्स वो भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट है छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर से भी कम इन्वेस्टमेंट पे आपको ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
6: वाओ, तो दोस्तों देर किस बात की है, 416-732-3600 डायल करें, 416-732-3600, यश विंडोज एंड डोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म जी हमसे जुड़ने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।
8: थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू,
6: यू टू। और वेल दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि आज के दिन में क्या खास है, आज है नेशनल मार्टिनी डे। अगर आप मार्टिनी का सेवन करना चाहते हैं, देन रिलैक्स, चिल और क्लासी वाइब्स एंजॉय करें। इंटरनेशनल बॉक्स डे है, एक सिंपल से कार्डबोर्ड बॉक्स में भी फन क्रिएट हो सकता है, स्पेशली फॉर किड्स, तो Try and do something this weekend. Find a leak day भी है आज, water बचाना बड़ा जरूरी है, कहते हैं unauspicious भी होता है पानी अगर leak होती है तो, यानी आपके पैसे भी leak होते रहते हैं जिंदगी से। फ्लिप फ्लॉप पहनने का वक्त है, तो आज है नेशनल फ्लिप फ्लॉप डे। कंफर्ट, चिल एंड वेकेशन फील, नेशनल वॉच डे है। टाइम की वैल्यू को समझिए दोस्तों, क्योंकि एक बार वक्त जाता है तो वक्त लौट कर नहीं आता। हम लौट कर आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक प्यारे से गीत के साथ, स्टे ट्यून्ड।
9: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
10: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
11: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
10: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 days एंड क्लोजिंग लेटर 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
12: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
13: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
12: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
13: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
12: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
14: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
15: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
16: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।

0: पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंगशुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश।

0: वेल दोस्तों, प्यार को हो जाने दो. और प्यार तो अभी आपको डैड से करना है, क्योंकि अब फादर्स डे लॉन्ग वीकेंड है. कहते हैं कि जो कभी अपने दर्द का हिसाब नहीं रखते, बच्चों की खुशी के लिए हर जवाब नहीं रखते, वो पिता ही होते हैं जनाब, जो अपने लिए कोई ख्वाब नहीं रखते. तो अगर डैड्स का कोई ख्वाब नहीं है अच्छे अच्छे ग्लासेस पहनने का, तो आपका तो ख्वाब है ना कि उनके चेहरे पर अच्छे स्टाइलिश ग्लासेस दिखें. तो क्यों ना स्पेक्स एक्सप्रेस की तरफ आपको ले चलें, जहां पर राजन जी तैयार हैं इस हफ्ते की लेटेस्ट डील्स लेकर. राजन जी, वेलकम, हाउ आर यू?
1: गुड जी, थैंक यू सो मच स्वाति जी और सॉरी शालिन जी, और हमारे सभी
0: जी
1: लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून. शालिनी जी,
0: गुड
1: बहुत
0: आफ्टरनून
1: सारी कल से कॉल्स आ रही हैं कि जो अपने
0: जी.
1: नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो मैं एक
0: हाँ
1: बार
0: हाँ
1: फिर से कहूंगा अपने लिसनर्स को कि दोस्तों, अगर आप फादर्स डे के ऊपर अपने फादर को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पहुंचे स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर. $500 की परचेज के साथ आपको हम फॉसिल के ब्रांडेड सनग्लासेस एज अ
0: अच्छा.
1: गिफ्ट बिल्कुल फ्री दे रहे हैं. और बहुत सारे कॉल्स हैं जो कह रहे हैं जी कि हम बिजी हैं क्योंकि वीकेंड होता है, पहले प्लान बने होते हैं, तो अगर आप
0: जी.
1: आज या कल नहीं आ सकते तो आप कॉल कर कर अपना नाम लिखवा दें. जो भी
0: अच्छा.
1: लिस्टर्स हमें कॉल कर कर अपना नाम लिखवाते हैं ना शालिनी जी, हम उनको ये गिफ्ट नेक्स्ट वीक भी देंगे उनकी परचेज के
0: वेरी
1: साथ.
0: नाइस,
1: बस उनको
0: ब्यूटीफुल.
1: कॉल करके अपना नाम लिखवाना है कि हमें जी फादर्स डे वाली डील चाहिए. तो कॉल
0: अच्छा.
1: करवाने के लिए नंबर है जी 905-460-8888, 905-460-8888. और यहाँ पर जो आपने परचेज करनी है उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया बढ़िया डील चल रही हैं. सबसे
0: अच्छा.
1: पहले तो बताता चलूं कि जिन्होंने हाई एंड ब्रांडेड फ्रेम्स लेने हैं या फिर ब्रांडेड सनग्लासेस, तो गुची
0: ठीक है.
1: के, प्राडा के, टिफनी के, टॉम फोर्ड के, ब्लेंसियागा के, वर्साची के, या फिर बर्बरी के, या आप कोई
0: ठीक
1: भी
0: है.
1: ब्रांडेड फ्रेम ले लें या ब्रांडेड सनग्लासेस, सबके
0: अच्छा.
1: ऊपर फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है. और मैं
0: ओ
1: बताता
0: वाओ.
1: चलूं कि शालिनी जी, ये 2026 के समर कलेक्शन के लेटेस्ट मॉडल हमारे पास आ चुके हुए हैं, ये सब उनके ऊपर
0: ब्यूटीफुल.
1: डिस्काउंट चल रहा है. और अगर किसी को चाहिए कि अगर उन्होंने रेवन के फ्रेम लेने हैं या फिर अरमानी के, कोच के, माइकल
0: ठीक
1: कोच
0: है.
1: के, टॉरी
0: हाँ
1: बर्च
0: हाँ
1: के, या फिर ह्यूगो बॉस के, वो के, पोलो के, रॉस लॉरेन के, इन सब के ऊपर आपको दोस्तों फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं. तो
0: ओह माय
1: फ्लैट
0: गॉड
1: है, कोई अप टू नहीं है. जब हमारे स्टोर के अंदर शाल जी लिसन
0: जी.
1: आएंगे, देखें लेफ्ट हैंड
0: यस.
1: साइड के ऊपर तकरीबन 400 से 500 ब्रांडेड फ्रेम लगा है. आप कोई भी फ्रेम चूज कर लें, जो भी प्राइस आएगा है, उसको हाफ कर लें, हाफ प्राइस के ऊपर ये आपको बढ़िया ब्रांडेड फ्रेम मिल रहे हैं. और
0: ब्यूटीफुल.
1: उसके अलावा एक हमने और स्पेशल रखा हुआ है जी सेक्शन, जिसमें हम आपको टॉमी हिल फिगर के फ्रेम, कैल्विन क्लाइन के फ्रेम, फैंडी के फ्रेम एंड वैलेंटिनो के फ्रेम, ये फ्लैट 75% ऑफ दे रहे हैं जी. तो ये
0: अमेजिंग
1: अमेजिंग अमेजिंग डील्स है. अब जिन्होंने ये ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बनवाने हैं, उन्होंने आई एग्जाम भी करवाना है, तो आई
0: जी.
1: एग्जाम के लिए डॉक्टर हमारे पास आज शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अवेलेबल हैं. आप वॉकिंग भी कर सकते हो, लेकिन कॉल कर कर अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हो तो आपका टाइम सेव होता है. अगेन, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए भी नंबर 905-460-8888. अब जो हमारे यहाँ पर आई एग्जाम होता है, इसमें शालिनी जी आजकल सारा कुछ डिजिटल है, सो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ये सारा एग्जाम होता है. एडवांस टेक्नोलॉजी के हमारे पास इक्विपमेंट है. जो भी कस्टमर आते हैं उनका हम ओसीटी करते हैं, ये एक मशीन है जो पीछे
0: अच्छा.
1: आंख का जो रेटिना है उसको स्कैन कर लेती है, और फिर हमारे पास रेटनोग्राफी है जो रेटना की इमेजेस लेती है और एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपके और डॉक्टर के सामने वो सारी इमेज बैक ऑफ द आई आ जाती है, जिसको डॉक्टर आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर आंख में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या सोल्यूशन है. सो ऐसा डिटेल एग्जाम दोस्तों, अगर आप अपना करवाना चाहते हैं आज शाम भी आ सकते हैं. अगर आज आप आज शाम को बिजी हैं तो कल भी हमारे पास डॉक्टर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अवेलेबल है. कल के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो एक ही नंबर 905-460-8888. और जाते जाते हमारा वैल्यू पैकेज, कमाल का ये वैल्यू पैकेज है, जिसमें शालिनी जी 700 से 800 ब्रांडेड फ्रेम हमने डिस्प्ले के ऊपर लगाए हुए हैं. नाइन वेस्ट के, लंडन फॉग के, लिवाइस के, रैंगलर के, वैन ह्यूसन के, एडी बावर के, कोई भी फ्रेम ले लें, $300 की कीमत का फ्रेम है जी, एंड $100 की कीमत के लेंजेस में है. 400 का पैकेज सिर्फ $129 में, सिर्फ 129. और अगर किसी को प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए तो एसएलआर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं और साथ में सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम, जैसे बताया 300 का फ्रेम है जी, और 300 के लेंसेज, 600 का पैकेज सिर्फ $258 में दोस्तों आप लेके जा सकते हैं।
0: आउटस्टैंडिंग
1: डील्स लेनी है तो पहुंचे स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, और जैसे मैंने बताया कि 129 का पैकेज हो, 258 वाला हो, या आपके ब्रांडेड फ्रेम 50% ऑफ है या 30%, कोई भी आप परचेज कर रहे हो, और अगर आपकी फैमिली की परचेज $500 की या उससे ऊपर की है तो साथ में आपको फॉसिल के ब्रांडेड सनग्लासेस एज अ गिफ्ट फॉर फादर्स डे बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आप अपने फादर को साथ में लाएं, आपने सिर्फ हमें बताना कि जी हमने परचेज कर लिया और ये गिफ्ट हम अपने फादर के लिए ले रहे हैं, आपके फादर चाहे यहाँ पर हो चाहे इंडिया में बैठे हैं, आप हमारे पास से ये गिफ्ट लेकर जा सकते हैं।
0: वेरी नाइस, क्या बात है।
1: पहुंचना स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410

0: 88 88 पर दोस्तों राइट अवे कॉल कर लें और ये ग्रेट ग्रेट डील का फायदा उठाएं, अपने डैड के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएं स्पेक्स एक्सप्रेस से। थैंक यू सो मच राजन जी, फिर जुड़ेंगे आपसे। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैप्पी फादर्स डे टू यू एज वेल। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: जी कहते हैं दोस्तों फादर्स के बारे में कि खुद जलकर जो रोशनी देता है, खुद जलकर जो रोशनी देता है वो चिराग होता है, और खुद की खुशियां भूलकर बच्चों के सपने जो पूरे करता है वो पिता होता है। तो डैड्स को आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं, उनके लिए डील्स बता रहे हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, ही इज़ अ वंडरफुल डैड, और उनके बच्चे भी इस तरह की बातें करते हैं। उनके बारे में आपके लिए लेकर आए हैं और आपके डैड्स के लिए लेकर आए हैं, वन ऑफ अ काइंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्वाइनिंग अस नाउ। बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट की दुनिया का, जनक छाबरा जी इज जॉइनिंग अस। जनक जी, हाउ आर यू? हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस टू यू।
2: आपको भी और आपके सारे परिवार को भी हैप्पी फादर्स डे।
0: थैंक यू सो मच।
2: देखिए शालिनी जी, जितना अच्छी तरीके से आप संदेश देते हैं लोगों को, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू
0: यू। थैंक यू जनक जी, अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स।
2: हां जी, सो नाइस, सो नाइस। आपने हमेशा साथ दिया है तो हमारा धन्यवाद बनता है आपके लिए। सबसे पहले आपके प्यारे लिसनर्स को गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, और आपकी ब्रिलियंट विशेष टीम, आपको और आपकी पूरी टीम को। काफी सालों के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद ये भीड़ देखने को मिली है। क्राउड जो 17 तारीख को था 2 दिन पहले, सोलमार डेवलपर जो पिछले 36 सालों से हजारों मकान और कम्युनिटीज बना के डिलीवर कर चुके हैं टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट
0: जी,
2: उनके प्रेजेंटेशन सेंटर पे शालिनी जी आपने भी सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत रश था, 500 से ज्यादा का तो मुझे अंदाजा था, लेकिन वेबसाइटों पे आ रहा है 1000 से ज्यादा लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम था।
0: बिल्कुल,
2: ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि डिटैच आपको 9 लाख के नंबरों में नए बड़े डिटैच मिल रहे हैं।
0: अरे वाह, वाह।
2: और सिर्फ 10% डिपॉजिट है, वो भी 365 दिन में, 1 साल में दे, छोटी छोटी किस्त।
0: क्या बात है।
2: उसमें जैसे आप और हम सब जानते हैं, समझते हैं कि हम लोगों के पेरेंट्स भी ज्यादातर हमारे साथ होते हैं, जिनके साथ में ब्लेस्ड है वो, पर उनको थोड़ा सीनियर होने के नाते ऊपर चढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, पैरों में कुछ तकलीफ होती है, तो वो भी प्रोविजन है कि मेन यूनिट में उनके लिए एक बेडरूम, लिविंग किचन, डाइनिंग और पूरा वॉशरूम बना के दिया जा
0: रहा है।
2: ऑफ कोर्स इन हर चीजों के पैसे लगेंगे। तो अभी 13% का जो रीबेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उससे आपकी प्रॉपर्टी जो 11-30 की आती थी अब 1 मिलियन की आ रही
0: है। अच्छा, क्या बात।
2: बहुत बड़ा अमाउंट है, 1,30,000 तक का आपको बेनिफिट हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन सा ले रहे हैं। तो टाउन हाउस इसमें आए जी, एकदम एब्सोल्युटली फ्री होल्ड,
0: वेरी नाइस।
2: कोई होटल नहीं, कोई स्टैक टाउन नहीं, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, विद बैकयार्ड आपको बड़े टाउन हाउस मिल रहे हैं 7 लाख के नंबर में।
0: वेरी नाइस।
2: सेमी डिटैच जो बिल्डर आजकल बनाते नहीं है क्योंकि उनको प्रॉफिट उसमें कम होता है, वो भी बना रहे हैं, वो 8 लाख के नंबरों में। पर लोकेशन लोकेशन लोकेशन जो हम जिक्र कर रहे हैं, मेफील्ड और गोर रोड,
0: वेरी नाइस,
2: जिसको छूते हुए, जिसको किस करते हुए 413 निकलेगा,
0: बिल्कुल,
2: और गो स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे, सारे ट्रांजिट करीब, शेरिडन कैंपस ब्रैम्पटन 12-13 मिनट का वहां से ड्राइव है।
0: अमेजिंग, वेरी नाइस।
2: आपने शालिनी जी, मेरे को नहीं लगता, मैंने तो नहीं सुना कभी, क्रिकेट का मैदान दिया जा रहा है उसमें।
0: क्या बात।
2: बास्केटबॉल का मैदान
0: जी,
2: टेनिस का मैदान, राइट। तो आप किसी भी तरह का गेम जो सोच सकते हैं, हर चीज में अवेलेबल है। बहुत चीजों को ध्यान में रख के कम्युनिटी बनाई जा रही है, 2500 मकानों की मास्टर प्लान कम्युनिटी आ रही है, और ये 200 लॉट अभी उन्होंने निकाले। आप और हम सब जानते हैं कि बिल्डर बहुत स्मार्ट है, वो थोड़े लॉट पहले निकालते हैं,
0: सही बात है,
2: फिर सेकेंड फेज में उसके प्राइस बढ़ा के देते हैं, फिर थर्ड में ज्यादा होते हैं पैसे।
0: बिल्कुल,
2: तो जो पहले मारे वो भी पहले फेज में जिसने ले लिया वो 30-40 हजार फायदे में रहेगा,
0: बिल्कुल
2: जाएगा फिर भी।
0: That's
2: तो
0: right.
2: इसका डिपॉजिट देना है 10%, छोटी छोटी किस्तों में। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा सहयोग कर रहा हूँ।
0: क्या बात।
2: जो पहला डिपॉजिट है उसमें टाउन में 10,000 है, डीटैच में 15,000 में 25% अपना

0: योगदान उसमें डालूंगा।
1: अरे वाह, ब्यूटीफुल।
0: तो जो डीटैच में आपने 11,250 देने, 3,750 मैं मिलाऊंगा, रसीद आपको डिपॉजिट की 15,000 की ही मिलेगी बिल्डर से।
1: अमेजिंग।
0: तो आपको पता हर डॉलर यहाँ काउंट करता है कनाडा में, हर बंदे के लिए एक डॉलर यहाँ कीमती है।
1: सही बात।
0: तो थोड़ा बेनिफिट उनको भी मिलेगा, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट पर इतना कॉन्फिडेंस है।
1: वेरी नाइस।
0: तो मुझे इसमें कमीशन आ ही जाएगा, क्योंकि सारे क्लोज करेंगे ही करेंगे।
1: सही बात, बिल्कुल।
0: तो फोन रखते ही कॉल करें, मैं कोई प्रेशर सेलिंग नहीं करता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं लेना, मैं आपको ले भी चलूंगा और जी, जी। पे अपने हाथ रखा वो लेके भी दूंगा, क्योंकि TFN जो ओरिजिनल TFN रियलिटी है उनके पास मार्केटिंग राइट्स हैं इसके।
1: वेरी नाइस।
0: TFN ध्यान रखिएगा, उनके पास इसके मार्केटिंग राइट्स हैं। तो हमारे पास एलोकेशन हर तरह का है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ वेस्ट। आप हमें सिर्फ बताएं कुछ इन्फॉर्मेशन में हो जाएगी। तो कॉल करें 6479990935। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कुछ पैसे में मिला रहा हूँ तो कोई सर्विस में कमजोरी होगी, वो सर्विस से भी बेहतर ही है।
1: दिनों
0: रात आप कभी भी कॉल करें, सर्विस के मामले में मेरी रेपुटेशन है। 6479990935। जनक सिंह छाबड़ा, सेवा का मौका दें, निराश नहीं होंगे, पहले दिन से आखिरी दिन तक आपके साथ हैं। बाकी मेरी छोटी बहन संभालने चाहिए।
1: जनक जी, जो भी आप कहते हैं बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और इतनी मेहनत आपकी दिखती है, सामने नजर आती है और फील भी होती है सब लोगों को। तो मैं कहूंगी लिसनर्स आपसे मिलें जाकर, और ये सही ऑनेस्टली इस प्रोजेक्ट को जाकर एक बार जरूर देख कर आए। 6479990935। जनक जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर। और एक बहुत प्यारा सा गाना आपकी नजर करते हैं। इस गाने में अमिताभ बच्चन का डांस बहुत ही खूब था। फिल्म का नाम है मेजर साहब, सोना सोना दिल मेरा सोना। और क्योंकि आज एक बर्थडे है, एक विलेन के नाम से जाने जाते हैं बॉलीवुड में, लेकिन पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं, आशीष विद्यार्थी, जिनका नाम सुनते ही बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी सामने आती है। हर रोल में इंटेंसिटी और रियलिज्म का नया लेवल वो सेट करते हैं। पावर हाउस परफॉर्मर आशीष विद्यार्थी भी थे इसी फिल्म में, एक बड़े स्ट्रांग रोल में। प्यारा सा गीत आपकी नजर।

0: और ये गाना आप तक पहुंचाया है यश विंडोज एंड डोर्स ने। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स आप तक पहुंचाते हैं बड़े रीजनेबल प्राइस में। ऑल ओवर ऑन्टेरियो सर्विसेज देते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है और खुद ही इंस्टॉलेशन इनकी तरफ से होता है। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर। प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है और फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यश विंडोज एंड डोर्स में जरूर बात करें धर्म जी से। 416-732-3600, 416-732-3600। और ये है फादर्स डे वीकेंड, और फादर्स डे के बारे में कहते हैं कि पिता की मौजूदगी सूरज जैसी होती है, पिता की मौजूदगी सूरज जैसी होती है। गर्मी ज़रूर लगती है, कभी कभी डांट भी पड़ती है पिता से, लेकिन अगर ना हो पिता तो ज़िंदगी अंधेरे में डूब जाती है। पापा की डांट में भी प्यार छिपा होता है, हर चिंता के पीछे उनका दुलार छिपा होता है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और कुछ और डील्स लेकर हमारे साथ जुड़े हैं, पवन मिडाजी, हु इज अ ग्रेट डैड हिमसेल्फ। तो पवन जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। आपको भी फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस।
1: हाँ, थैंक यू जी। और बिल्कुल, मैं भी जो आप कह रहे हैं कि सूरज के समान तो पिता होता है, गर्मी तो कई बार डैड, लेकिन पिता पिता वृक्ष भी होता है जो सारी धूप खुद सह के अपने बच्चों को छाया देता है। और पिता कुम्हार की तरह भी होता है कि आपको एक दिशा ऐसी दे के, जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंद के उसका एक बहुत अच्छा जो सुराही बना लेता है ना आपको बहुत अच्छा, तो पिता आपको ऐसे ही अपनी अपब्रिंगिंग आपको अच्छी दे दे के आपको वो बना देता है कि जो आप जिंदगी में बनना चाह रहे थे, जो आप अचीव करते हैं। वो हो सकता है पिता पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन पिता आपको सीईओ भी बना सकता है, मतलब आपको वो अपनी करके वो करके। तो तभी है पिता का या माता का हम देना दे ही नहीं सकते। तो बिल्कुल वही है कि हमें, आई रिस्पेक्ट यू, सारे भाइयों का, बड़े भाइयों का और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और मेरे छोटे बहन भाइयों का। तो हम चाहते हैं कि आप आए फादर्स डे पे, जब आप अपने डैड को लेके बाहर निकलें तो हमारे भी किसी दोस्त के आसपास से अगर आप गुजर रहे हो तो हमारे को आके मिल लें, हमें भी उनका प्यार मिल जाएगा। और फर्नीचर की कोई आइटम अगर आप अपने डैड के लिए लेना चाह रहे होंगे, तो मैंने पिछले लिंक में भी कहा था कि जैसे सारे बहन भाई मिलके, अगर जो मुझे वो पता नहीं क्या कहते हैं, ये सारे जो डालते हैं आप पर थोड़ा थोड़ा सारे
0: पिन करते हैं
1: जी, तो वो हमारी तरफ से भी ये वो शेयर जो होगा, हम अपना मार्जिन कम कर देंगे, अपना मार्जिन कम।
0: वेरी नाइस।
1: जैसे हमने रिक्लाइनर चेयर वैसे बाजार में भी मिल रही होगी 499 की, हमने उसका जो मेरे ख्याल हमें बचते हैं $90, लेकिन मैंने 399 कर दी है। मैट्रेस नेक्टर कंपनी की हमने शुरू करी थी और बहुत सारी एडवर्टीज यूएस उसमें यूट्यूब पे हो रही है, तो आपको
0: बिल्कुल
1: कम करके उसका मार्जिन कम करके डैड को 365 डेज की स्लीप वारंटी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको मतलब हमारा मोटिव आपसे रिश्ता मजबूत करना है, हमारा मोटिव जो फादर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है एक दिन के लिए। तो हम एक दिन के लिए नहीं, हम सारे जिंदगी करते हैं उनकी, लेकिन इस दिन जो एक दिन बना हुआ है उस दिन को हमें उन्हें और स्पेशल फील कराना चाहते हैं। तो हम भी कराना चाहते हैं कि जब आप हमारे, हमारा आपसे रिश्ता ही बहन भाई वाला है, हमें आप प्यार देते आ रहे हैं, हमें आप अपना वैल्यूएबल बिजनेस देते आ रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आपका।
0: क्या बात है।
1: और आगे भी देते रहेंगे। रही बात डीलों की, जब परिवार की तरह आते हैं तो कभी कई बार कमा लेते हैं थोड़ा रीजनेबल, कई बार कॉस्ट पे दे देते हैं, कई बार प्रॉफिट कम कर देते हैं। तो जहाँ पे हो सकता है रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, रिश्ते को नए सिरे से बनाने के लिए और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा ही वो रहता है बजाय प्राइस। हाँ, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप हमें आए, अजमाएं, रिश्ता और मजबूत होगा उससे, और मजबूत हुआ है कि जब आपकी अजमाइश में पास हो गए। तो बहुत सारी, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता क्योंकि इंडस्ट्री है, फर्नीचर की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे स्टोर हैं, और सारे बुरे भी नहीं है, सारे अच्छे भी नहीं है। तो आप कंपेयर जरूर किया कर लें। हम गिमिक्स में, जब मैं आपको बहन भाई कह के तो गिमिक्स नहीं कर सकता मैं, 90% अप टू 90% ऑफ वाली बातें या वो वाली बातें, या जो 6,000 वाले को 600 में करना, वो शोर मचाना, फ्लोर मॉडल लिख के डेमे, मतलब ये कहीं ना कहीं जो थोड़ा मार्केट को थोड़ा अभी आजकल शालिनी जी एक और काम चल पड़ा है कि साल डेढ़ साल से हर बहन भाई आता है, गारंटी कितनी दे रहे हो, तो वो पूछ रहे हैं सोफा 390, वो तो स्टोर से आए हैं 11 साल की 10 साल की से ज्यादा। और यही पूछ रहा हूँ कि आपने स्टोर कब खोला था सर, आप कनाडा में कब आए थे, राइट? मतलब अपने ब्रिक है, लियोन है, एशले है और बड़े हाई एंड स्टोर है, वो 10 साल की क्यों नहीं देते? ओंटेरियो गवर्नमेंट लाइन की गाइडलाइन के मुताबिक आपको 1 साल की ही होती है।
0: हाँ,
1: सोफा आप मेरी बहन है या जितने बहन भाई हमारे सुन रहे हैं, पिछले 15 सालों में किसका फ्रेम क्या टूटा? मतलब आज तक नहीं टूटा, मतलब 20 साल में भी नहीं टूटता फ्रेम। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम गद्दा बैठ गया तो आप जब आएंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं फिर हमने फ्रेम की दी थी। मैं उसे गिमिक मैं गिमिक मानता हूँ। हम बताएं फ्रेम तो टूटेगा नहीं, आपका नहीं टूटेगा, मतलब अपने हम चाहते हैं कि जो प्यार से हमारा आपका रिश्ता बना हुआ है वो और मजबूत हो और आप आए। मिड्डा फर्नीचर आपका स्वागत में, 5 लोकेशन है। दोबारा से आपको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: क्या बात है,
1: प्यार है, आज भी रहेगा, कल भी है और परसों फादर्स डे वाले दिन तो आप अपने डैड को लेके अगर बाहर आते हैं तो जरूर हमारे को एक साथ हमारा मुंह मीठा आप करा जाए या हम आपका मुंह मीठा कराएं, तो बिल्कुल रिस्पेक्टफुली दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होगी। तो आए और अपना बनाए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810। थैंक यू वेरी मच जी।
0: थैंक यू सो मच पवन जी हमसे जुड़ने के लिए। हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन। दोस्तों middafurniture.com विजिट करें, 4169012810, दैट्स 4169012810। ऑल द बेस्ट पवन जी, टेक केयर।
1: थैंक यू जी।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMRFM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.fm.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मेरे भाइयों जी, वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम बंदर भाइयों। इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, कुदरत के इस हुस्न पर मर मिटने का दिल करता है। यूं तो गुजरी है जिंदगी कई शहरों में, मगर यूं तो गुजरी है जिंदगी कई शहरों में, मगर अब उम्र भर यहीं पे ठहर जाने को दिल करता है, इन हसीन वादियों में। आइए लिए चलता हूं एक हसीन नगमे की ओर। ये वॉइस हम है आपकी दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।
2: घर कहे

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here. Go
3: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
4: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
1: Radio Voice, आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
5: गुड आफ्टरनून, वेलकम, सत श्री अकाल एंड आदाब एंड वेलकम टू रेडियो वॉइस एफएम 101.3. टुडे वी आर डिलाइटेड टू हैव विद अस धर्मेंद्र जी फ्रॉम यश डोर्स एंड विंडोज, वन ऑफ जीटीए'स मोस्ट ट्रस्टेड नेम्स इन हाई क्वालिटी एंड एनर्जी एफिशिएंट विंडोज एंड डोर्स. एज डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड इंस्टॉलर्स, Yes Doors and Windows has been helping Ontario homeowners enhance their homes with stylish, durable and energy efficient solutions backed by dependable customer service. Today, Mr. Dharmendra from Yes Doors and Windows joins us to share his expertise on choosing the right doors and windows, improving the efficiency of your home and making smart renovation investments. Welcome to the show, Dharmendra ji. प्लीज हमारे लिसनर्स को यश डोर्स एंड विंडोज की कुछ खास चीजों के बारे में जानकारी दे.
6: यश विंडोज एंड डोर्स, पहले तो सबको, आपको और सारे श्रोताओं का स्वागत करता हूँ. फादर्स डे की बधाइयां देता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ. यश विंडोज एंड डोर्स 2012 से विंडो डोर की मैन्युफैक्चरिंग करती है. हमारी दो फैक्ट्री है जिसमें विंडो डोर हमारी बनती है. अक्रॉस ऑन्टारियो में हमारे ही इंस्टॉलर 34 प्रोफेशनल इंस्टॉलर्स हमारी जो विंडो एंड डोर बनती है इसको इंस्टॉल करते हैं. तो एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ. यश विंडोज एंड डोर्स बेहतर क्यों, ये आपको क्वेश्चन आएगा. यश विंडोज एंड डोर्स जो विंडो प्रोवाइड करती हैं, इसकी वारंटी ऑन्टारियो में हाईएस्ट वारंटी है. विंडो की फ्रेम की वारंटी 30 साल है. ग्लास अकेली यश विंडोज है जो लोई 366 बाय डिफॉल्ट दे रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी कंपनी अपग्रेड ऑप्शन में देती है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है. लोई 366 की वारंटी भी पूरी 30 साल है. ग्लास की वारंटी के साथ साथ मल्टी पॉइंट लॉक सिस्टम, हमारी मल्टी पॉइंट लॉक सिस्टम एक्सक्लूसिवली हमारे लिए ही है, आपको इसके सिवा कहीं नहीं मिलेगी. इसकी भी वारंटी पूरी 30 साल है. छोटा बच्चा सीनियर इजी खोल पाते हैं, बंद कर पाते हैं, उसकी वारंटी भी 30 साल. ये हमारी स्पेशलिटी है. प्रोफेशनल इंस्टॉलर्स हमारी विंडो डोर इंस्टॉल करते हैं. ब्यूटी ऑफ दिस अवर कंपनी कि आपको डीलर के पास जाने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है. सीधी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास आ जाइए, हमारे पास आ जाइए. अक्रॉस ऑन्टारियो हम आपको सर्व करते हैं. विंडो डोर की जैसे जरूरत हो जस्ट कॉल अस 416-732-3600, 416-732-3600. आप हमारे पास आ जाइए. अक्रॉस ऑन्टारियो में हम दूसरे या तीसरे दिन आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं और आपको फ्री एस्टीमेट प्रोवाइड करते हैं.
5: बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपसे मुलाकात होगी फिर से अगले फ्राइडे को. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो देवी और सज्जन, अगर आप लोग भी अपने घरों में हाई क्वालिटी डोर्स एंड विंडोज लगाने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बस एक ही नाम आपको जानना है जरूरी, वो है यश डोर्स एंड विंडोज. और यश डोर्स एंड विंडोज पे आपको कॉन्टैक्ट करना है धर्मेंद्र जी को. उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 416-732-3600. आई विल रिपीट, 416-732-3600, यश डोर्स एंड विंडोज. चलिए चलते हैं एक ब्रेक की ओर.

0: one at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: इसके पीने पे तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
3: वाह मॉम, डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे, व्हाट इज द रीजन?
4: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे।
3: आई नो दिस प्लेस, दे आर आल्सो फेमस फॉर डिलीशियस स्नैक्स लाइक आलू पेटीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल।
5: नेविगेटर्स कैफे लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट ईस्ट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। दे आर कन्वीनियंटली ओपन 24/7।
6: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
9: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
10: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा के रियल एस्टेट मार्केट की एक जानी मानी हस्ती, श्री जनक सिंह छाबड़ा जी, डिविजनल डायरेक्टर TFN रियल्टी ब्रोकरेज। जनक जी रिसेंटली लेकर आए हैं कैलेडन और गोर और मेटफील्ड के पास एक शानदार नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है वाइल्ड फील्ड प्रोजेक्ट। टाउन होम स्टार्टिंग फ्रॉम सिर्फ $749,900, सेमीज फ्रॉम $849,900 और डिटैच्ड होम फ्रॉम $949,900। तो अगर आप अपने ड्रीम होम या अपने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं तो आज की गुफ्तगू जरूर सुनिएगा। ज्यादा मालूमात के लिए संपर्क करना है आपको जनक सिंह छाबड़ा जी से ऑन 6479990935। एक बार फिर जनक सिंह छाबड़ा जी से आपको कांटेक्ट करना है ऑन सेल ऑन 9990935। चलिए बिना वक्त गवाए अब सीधे मुखातिब होते हैं जनक सिंह छाबड़ा जी से। जनक सिंह छाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस पर। प्लीज हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास जानकारियां दे।
11: अमिताभ सर, इसको बूढ़ा भी पिए तो जवान हो जाए। इस प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो लाखों डॉलर की बचत हो जाए। सबसे पहले आपके प्यारे लिसनर्स को गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, और आपकी ब्रिलियंट विशेष टीम को। आज जतिन जी कहाँ हैं? आज
10: जतिन जी और मैं आज थोड़ा टैग कर रहे हैं कि मैंने कहा जतिन जी को, मेरे को पता चला कि आज जनक सिंह छाबड़ा जी आ रहे हैं तो मैंने कहा कि भाई इतनी जानी मानी हस्ती आ रही है तो क्यों ना ये मौका मैं भी ले लूं कि उनसे बातचीत करूं। और
11: जाने माने तो आप हैं, अमिताभ जी आप हैं, हम तो बहुत छोटी बात है। तो सर ये प्रोजेक्ट जो आया मेफील्ड और गोर रोड पर आया
10: जी,
11: जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो लोकेशन लोकेशन लोकेशन कहा करते हैं, तो लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, हाईवे 413 और गो स्टेशन बिल्कुल करीब 4 और 5 मिनट के। प्राइस सुनेंगे तो आप ये प्राइस कोई 3, 4, 5, 6 साल पहले आपने सुनी होगी
10: जी।
11: टाउन फ्री होल्ड, कोई POTL नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई स्टैक टाउन नहीं, फ्री होल्ड विद बैकयार्ड 7 लाख के नंबरों में। सेमी जो आजकल बिल्डरों ने बनाना बंद किया हुआ है क्योंकि उसमें प्रॉफिट उनको ज्यादा नहीं होता, तो पर ये सेमी भी बना रहा है वो 8 लाख के नंबरों में है। डिटैच बड़े वाले 9 लाख के नंबरों में है। आपको पता है अमिताभ सर, 13% की रिबेट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी
10: जी,
11: उस वजह से प्रॉपर्टियां तकरीबन 1,30,000 तक का डिस्काउंट पे मिल रही है इस वक्त
10: जी,
11: क्योंकि ना उनको गवर्नमेंट को वो 13% देने, ना वो हमसे कलेक्ट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो फायदा दिया जा रहा है वो एक विंडो है, उनका एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम तक मिलेगी, तो इसका जरूर भरपूर फायदा उठाएं। काफी सालों के बाद इतना रश हमने देखा है 17 तारीख को जब इनका लॉन्च हुआ है, कुछ 15 से 20 मिनट दूर तक पार्किंग खड़ी करके गाड़ियां लोग आ रहे थे, बहुत लंबी लाइनें थी। हमारा सौभाग्य है कि हम TFN रियलिटी, ओरिजिनल TFN रियलिटी के साथ काम करते हैं
10: जी।
11: तो मार्केटिंग राइट्स TFN ओरिजिनल TFN रियलिटी को मिले, इसके एम्पायर बिल्डर की मार्केटिंग विंग है TFN रियलिटी, और सोलोमार बिल्डर और वो आपस में उनका कोई लेना देना है, तो वो उन्होंने मार्केटिंग राइट सारे हमारे ब्रोकरेज को दिए, मैं भी उसमें एक हिस्सा हूं। तो जिसको भी जो भी लॉट चाहिए, कोई लिप सर्विस नहीं है, वो लेके दिया जाएगा। अभी उन्होंने 200 लॉट निकाले हैं, आपको पता है बिल्डर शुरू में थोड़े लॉट निकालते हैं, फिर सेकेंड फेज में प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर थर्ड में ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे पहले किसी जमाने में गोरो ने चाय फ्री बांटी, फिर उन्होंने पैसे इतने लगा लिए, अब चाय भी महंगी हो गई है
10: जी।
11: तो सेम सिस्टम है सर, इन्होंने अभी पैसे कम लगा रखे हैं, आगे डेढ़ दो महीने में इन्होंने पैसे 30-40 हजार बढ़ा देने, 2500 मकानों की बड़ी कम्युनिटी बन रही है। अमिताभ सर आपने सुना नहीं होगा किसी बिल्डर ने क्रिकेट ग्राउंड कम्युनिटी के अंदर दिया हो,
10: कैनेडा में तो नहीं सुना मैंने जनक साहब।
11: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्रिकेट फील्ड दिया जा रहा है, बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ कोर्स, सारा कुछ वहीं पे है, सारे ट्रांजिट बिल्कुल नजदीक हैं, आपके शेरडन कैंपस 3-4, ब्रैम्पटन, सब कुछ बहुत नजदीक है। इस लोकेशन को आप बहुत उम्दा लोकेशन समझे, गोर रोड और मेफील्ड, ईस्ट ब्रैम्पटन कह लें, कैलिडन और ब्रैम्पटन के बिल्कुल बॉर्डर पे। इसमें डिपॉजिट देना है सर 10% एक साल में, 365 डेज में, छोटी छोटी किस्तों में। तो पहला डिपॉजिट है टाउन का 10,000 और डीटैच का है 15,000 पहला डिपॉजिट
10: जी।
11: आपका छोटा भाई जनक सिंह छाबड़ा उसमें थोड़ा योगदान करेगा, आपको डिपॉजिट की पूरी रसीद मिलेगी, टाउन की 10,000 की, डीटैच की 15,000 की, लेकिन 25% का हिस्सा मैं डालूंगा उसमें। तो $2,500 मैं टाउन के लिए दूंगा, तो आपको 7,500 देने, बाकी 2,500 मैं दूंगा। आपका डिपॉजिट 10,000 ही होगा, 10,000 की ही रसीद बिल्डर से मिलेगी आपको। डिटैच में 3,750 मेरी तरफ से दिए जाएंगे, 11,250 आपने डालने। क्लोजिंग इसकी है एक साल की, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये क्लोज होंगे नेक्स्ट ईयर, तो आपका जो पैसा है वो भी अच्छी तरह ग्रो हो चुका होगा, काफी टाइम है उसके लिए, इसे मिस ना करें। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं चल के दिखाऊंगा अभी, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आपकी यूनिट रिजर्व करा लें
10: जी। जी
11: आपको एलोकेशन हर हाल में मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल TFN रियलिटी के पास इसके मार्केटिंग राइट्स हैं। तो जरूर सेवा का मौका दें, 6479990935, 647-999-0935। ये सर इस प्राइस में वापस ये चीजें नहीं आएंगी, तो जो भाई बहन तैयार बैठे हैं लेने के लिए जरूर इसका बेनिफिट लें। अगेन नंबर इज 6479990935। बाकी मेरे भाई बिग बी संभाल लें इनको, बिग बी अमिताभ जी।
10: बिल्कुल बिल्कुल जनक साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर तो सुनने वालों से विनती है कि अगर आप लोग भी वाइल्ड फील्ड विलेज के बारे में और मालूमात, VIP एक्सेस या बुकिंग डिटेल्स चाहते हैं, तो आज ही कॉल कीजिए जनक सिंह छाबड़ा जी को। उनका सर नंबर है 6479990935। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जनक सिंह छाबड़ा जी का डायरेक्ट नंबर 6479990935। जनक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आई एम श्योर दिस प्रोजेक्ट विल बी अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस।
11: सफलता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैसेज बहुत अच्छी तरह डिलीवर करते हैं लोगों तक, बहुत प्यारा संदेश जाता है, मैं बहुत कॉल्स आती हैं, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सर।
10: बहुत शुक्रिया जनक जी, चलिए अब चलते हैं सीधे एक ब्रेक की ओर।
12: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है, तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बंदर भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564 2021 905 564 2021. डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट.
13: Another Don Clean with the Don Ducks.
14: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
15: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
14: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
15: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
14: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
15: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
14: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
13: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: हाँ जी मित्र भाइयों, ये डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट के आज के विनर है खतेरा रहमानी जी. बहुत बहुत बधाई. आपका सेल नंबर है उसके लास्ट फोर डिजिट्स है 7899. बंदर भाइयों, फैमिली पास जीत रहे हैं रहमानी जी. चलिए इंतजार कीजिए मंडे तक एक नया सवाल और नया कॉन्टेस्ट. ये ही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन.
9: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
12: वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन. रिट्ज द फर्नीचर प्लेनेट, रोहित जी और उनकी टीम हर फादर को करते हैं सलाम. और बेनर भाइयों, एप्रिसिएशन के तौर पर रिट्ज द फर्नीचर प्लेनेट पर फादर्स डे की जबरदस्त सील लगाई गई है. आप जरूर पहुंचिए, क्वालिटी फर्नीचर किफायत दाम. आइए सीधे पहुंचते हैं हम रिट्ज द फर्नीचर प्लेनेट और बात करते हैं चरणजीत जी से. बेनर भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, फिर गाड़ी मोड़ दीजिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट की ओर. चरणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में. प्लीज हमारे श्रोताओं को फादर्स डे के प्रमोशंस के बारे में बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर बताएं. ओवर टू यू चरणजीत जी.

0: सो मच सुकुमार जी, रिट्स फर्नीचर स्पेस फादर्स डे की सेल लग चुकी है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा जी, बहुत बढ़िया सेल जो चल रही है स्पेशल स्पेशल सोफों पे, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सेक्शनल सोफा जो हमारे पास आए हुए हैं, बिल्कुल न्यू कंटेनर्स आए हैं, लेदर चाहे फैब्रिक चाहे बहुत बढ़िया है। फैब्रिक के अंदर हमारे पास सेक्शनल स्पेशल स्पेशल कप होल्डर के साथ विथ स्टोरेज जो है रेगुलर प्राइस $900 वाला आपको सिर्फ 598 का मिलेगा। अगर किसी ने लेदर के अंदर लेना है सेक्शनल, वो भी हमारे पास 598 का, उसमें स्टोरेज ऑटोमेन भी है। साथ में अगर सोफे में कोई कस्टम मेड कराना चाहे वो भी हम बना के देते हैं, सेक्शनल चाहिए रेगुलर चाहिए सब अवेलेबल है। इसके साथ अगर किसी ने बेडरूम सेट्स लेने हैं, बेडरूम सेट्स के अंदर हमारे पास स्पेशल स्पेशल प्राइस लगे हुए हैं। अगर किसी ने सॉलिड वुड का बेड लेना है जो आपको सिर्फ 498 का पड़ेगा, अगर किसी ने उसके अंदर इंडिया स्टाइल के पेटी बेड बनवाने हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें आपको बेड विद स्टोरेज ड्रेसर मिरर नाइट स्टैंड जो है सिर्फ 698 का पड़ेगा जी। अगर आप इसमें थोड़ा सॉलिड वुड का लेना चाहें वो भी अवेलेबल है, उसमें भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो हमारे स्टोर पे आके देख सकते हैं, डिस्प्ले लगे हुए हैं। अगर आप डाइनिंग सेट देख रहे हैं, डाइनिंग सेट के ऊपर हमारे पास सॉलिड वुड का डाइनिंग सेट एशली का जो हमारे पास लगा हुआ है ब्राउन एंड व्हाइट कलर के अंदर है, स्पेशल प्राइस जो उसका $1000 का है, आपको $698 का 6 चेयर के साथ आपको अब डाइनिंग टेबल मिल जाएगा। अगर उसमें कोई आपको 4 चेयर चाहिए तो वो भी हमारे पास 498 का भी है। इवन 6 चेयर का डाइनिंग सेट भी सॉलिड वुड का हमारे पास 498 का मिलेगा। मैट्रेसेस हैं हमारे पास एक से एक बढ़िया, हार्ड चाहिए सॉफ्ट चाहिए बहुत बढ़िया मैट्रेस है। उसमें आप अगर कॉयल का लेना चाहें कॉयल का मिल जाएगा, मेमोरी फोम का चाहिए मेमोरी फोम का मिल जाएगा, एक से एक बढ़िया मैट्रेसेस हैं। इस फादर डे सेल के लिए अगर आप रिट्स फर्नीचर पे आएंगे तो आपको हम सबसे बेस्ट डील, अगर किसी ने फाइनेंस कराना है तो वो भी हम करके देते हैं, जिसमें 0% इंटरेस्ट मिलेगा। सो प्लीज रिट्स फर्नीचर पे आइए, फैमिली के साथ आइए, हमारी पूरी सेल टीम आपको एक अच्छी डील बना के देगी। फाइनेंस कराना चाहते हैं जिसमें 0% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, आप प्लीज आइए, फादर डे में वेलकम करेंगे सर जितने भी रिट्स फर्नीचर्स पे आएंगे। और हमारे पास स्पेशल स्पेशल आप कोई भी सामान लेते हैं तो हम आपको एक फ्री गिफ्ट भी देंगे, वो आपको स्पेशल फादर डे का हमारे लिए तोहफा होगा। सो रिट्स फर्नीचर का जो मैं एड्रेस है वो सबको मालूम ही है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, पर आपको बता दूं 5200 डिक्सी रोड है, हमारा मेन इंटरसेक्शन है मैथिसन एंड डिक्सी, और फोन नंबर आपका है 6477657657। थैंक यू जी, थैंक यू।
1: चरणजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों जरूर पहुंचिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट, ritzfurniturplanet.ca वेबसाइट विजिट कीजिएगा, उनके लेटेस्ट फ्लायर पर भी एक नजर जरूर कीजिएगा। यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
2: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स, पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी।
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
6: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
7: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: क्या आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं? तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंद्र भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कुपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
8: रेड्स फर्नीचर दा मैसेज जरा

डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299, या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: pujahut.com। इंडिया सजावट एंड पूजा भट्ट।
0: जय श्री राम।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।

0: हाँ जी मित्र भाइयों, जो वॉइस और हम मैं आपके दोस्त जतीन टीम अरोरा के कप्तान परवीन अरोरा जी से बात करने का वक्त हो चुका है। मित्र भाइयों, एवरी वीक हमें रियल एस्टेट के करंट ट्रेंड के बारे में अपडेट देते हैं और साथ में उनके प्रोजेक्ट्स, लिस्टिंग्स और बेहतरीन इंफॉर्मेशन देते हैं रियल एस्टेट के बारे में 20 ईयर्स प्लस इन द बिजनेस। बेनर भाइयों, आइए सीधे चलते हैं परवीन जी के पास और उसके बाद एक बार बात और मुलाकात तो उनसे बनती ही है। जरूर कॉल कीजिएगा 416-910-8923 teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट और एजुकेट करें। ओवर टू यू सर।
1: जतन जी, मेरी तरफ से वॉइस के सभी लिसनर को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जैसे कि जतन जी, एवरी फ्राइडे हम पहले तो मार्केट का अपडेट देते हैं अपने लिसनर्स को, फिर हम उनको जो हमारे पास नई प्रॉपर्टी हम लेकर आते हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो जतन जी, जो मतलब मे के स्टैट्स हैं और अभी जो आजकल भी हम देख रहे हैं मार्केट में जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो बेटर हो रही हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स मार्केट में बढ़ रही हैं, कहने का मतलब जो मार्केट में एक्टिविटी है वो बेटर हो रही है। बट एट द सेम टाइम जो प्राइस है, प्राइस के ऊपर जतन जी कोई भी चेंज नहीं आ रही। प्राइस उसका मतलब सेम, जैसे कह सकते हैं कि पिछले साल के मुताबिक ही है और थोड़ा बहुत हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सॉफ्ट ही हुआ है। इस साल प्राइस में कोई चेंज नहीं आई। बट गुड पार्ट इज दिस के जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बेटर हुई है और जैसे नंबर ऑफ सेल्स बेटर हुई है तो जो हम प्रॉपर्टी जतन जी इस वीक मार्केट में लेकर आए हैं तो मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो जतिन जी ये है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए हम एक टाउन हाउस लेकर आए हैं फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में, फाइनेंशियल ड्राइव एंड मिसिसागा रोड के पास। और ये जो टाउन हाउस है जतिन जी, ये 4 बेडरूम का टाउन हाउस है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है और इसकी जो स्क्वेयर फीट है वो भी 2250 स्क्वेयर फीट के करीब ये टाउन हाउस है। और इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस रखेंगे अगर हमारे कोई भी लिसनर ओपन हाउस पे आना चाहे। इसी के साथ हम एक और प्रॉपर्टी मार्केट में लेकर आए हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी रेनोवेशन के लिए है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी की रेनोवेशन करना चाहता है और रेनोवेट करके उसको मतलब अपने इंडिविजुअल के लिए यूज करना चाहता है या उसको एज ए इन्वेस्टर भी यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी है 3 डनविच प्लेस। इसमें क्या है कि कुछ थोड़ा रेनोवेशन का काम होने वाला है और काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हमने लगाई है। एक प्रॉपर्टी जतन जी हम वेम्पटन डाउनटाउन में लेकर आए हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है, ब्रांड न्यू सेमी डिटैच अंडर कंस्ट्रक्शन। ये इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। अगर हमारे कोई भी ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर है, कोई लिसनर जो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं और प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना चाहे ब्रांड न्यू हाउस को, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है 73 पार्क स्ट्रीट के ऊपर। इसी के साथ एक और हम प्रॉपर्टी लेकर आए हैं 117 सीडर लेक क्रेसेंट पे। ये प्रॉपर्टी है, ये भी टाउन हाउस है, मेविस एंड रेल ऑसन के पास। ये प्रॉपर्टी भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है सिर्फ और सिर्फ 699 की ही। और इसी के साथ जतिन जी एक हमने प्रॉपर्टी मिल्टन में लगाई है और ये भी प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए है 583 लेकिंग टेरेस के ऊपर। ये प्रॉपर्टी, ये भी 3 स्टोरी टाउन हाउस है मिल्टन में, जो कि हमने डेरी एंड थॉमसन

0: अगर आ जाए ये, और इसकी जो बेसमेंट है वो फिनिश्ड है, और अगर हमारे कोई लिसनर ये प्रॉपर्टी भी देखना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जतिन जी, हमारे पास फर्स्ट टाइम बायर्स, सेकंड टाइम बायर्स, और अगर कोई अपना कस्टम बिल्ट घर बनाना चाहते हैं, हमारे पास हर तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार हमें कॉल करें, नंबर है हमारा 416-910-8923, या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं teamarora.com। थैंक यू जतिन जी।
1: परवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैनर भाइयों, जरूर कॉल कीजिएगा 416-910-8923, 416-910-8923, teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद, लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299, या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।
2: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन, रिज द फर्नीचर प्लेनेट, फादर्स डे सेल, फ्री गिफ्ट विथ ईच परचेज। बहनर भाइयों, यही तो है करिश्मा, जरूर पहुंचिएगा। रिज फर्नीचर प्लेनेट .ca वेबसाइट भी जरूर विजिट कीजिएगा। वी डोंट मैच द प्राइस, वी बीट इट। रोहित जी और उनकी टीम यही कहती है। तो आइए सीधे चलते हैं चरणजीत जी के पास, लेते हैं ज्यादा जानकारी। चरणजीत जी, प्लीज हमारे श्रोताओं को फादर्स डे सेल के बारे में बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर कहे। ओवर टू यू सर।
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा आपने, फादर्स डे बड़ा इम्पोर्टेंट डे है और हम सबसे पहले यही कहते हैं कि जितने भी फैमिली के अंदर जो डैड हैं या डैड होने वाले हैं, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट फर्नीचर रिलेटेड है, सो प्लीज़ हमारे रिट्स फर्नीचर्स पे आइए, फैमिली लेकर आइए, आके देखिए। हमारे पास एक से एक बढ़िया हमारे पास फर्नीचर नए कंटेनर्स आए हुए हैं। सेक्शनल चाहिए, सेक्शनल्स मिलेंगे। बेडरूम सेट चाहिए, बेडरूम सेट्स मिलेंगे। अगर आपको सोफा, रेगुलर सोफा लेना है, वो मिलेगा जी। डाइनिंग टेबल मिलेगा, उसमें हमारे पास फादर डे की स्पेशल स्पेशल जो सेल्स चल रही हैं वो हैं बेडरूम सेट्स के ऊपर हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जी, इसमें क्वीन साइज का बेड, आप ड्रेसर, मिरर, नाइट स्टैंड भी मिलेगा और एक अच्छी ऑप्शन के साथ। इसका जो हमारा रेगुलर प्राइस $1000 था, वो हमने 698 का किया हुआ है। और प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी कस्टमर आता है इस फादर डे में, तो हम उसको मैट्रेस जो है बिल्कुल फ्री गिफ्ट करेंगे। क्वीन साइज का अगर आप बेड लेते हैं, ड्रेसर, मिरर, नाइट स्टैंड लेते हैं, 698 के अंदर अमेजिंग प्राइस है जो आपको मैट्रेस के साथ मिलेगा जी। इसके साथ साथ अगर आपने किसी ने स्टोरेज वाला बेड लेना हो, इंडियन स्टाइल स्टोरेज बेड्स चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। वो आपको हम स्टोरेज बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट स्टैंड जो होगा वो भी आपको 698 का देंगे जी। उसमें कलर्स की चॉइस भी है। इसके अलावा अगर किसी ने एशली के बेड सेट लेने हो, वो भी हमारे पास 498 से क्वीन साइज का बेड मिल जाएगा। उसमें दो तीन ऑप्शंस हैं, सॉलिड वुड का बेड सेट है, आप आके देख सकते हैं। अगर किसी ने स्टोरेज वाला बेड लेना हो एशली का, तो 848 का हमारे पास स्पेशल प्राइस लगा हुआ है स्टोरेज वाला बेड सॉलिड वुड का। इसके अलावा अगर किसी ने सोफास लेने हैं, सोफास में हमारे पास, अगर किसी ने कस्टम मेड बनवाना है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप आके देखिए, साइज बताइए, कलर चूज कीजिए, हम आपको एक बढ़िया सा सोफा आपकी मर्जी के फैब्रिक का बना के देंगे। अगर किसी ने रेगुलर सोफे उठाने हो, तो वो भी हमारे पास है। स्पेशल प्राइस जो है सोफा लव सीट अगर कोई लेना चाहे, तो 698 का हमारे पास सोफा और लव सीट दोनों पड़े हुए हैं। आप कलर आके देखिए, पसंद कीजिए और ले सकते हैं। कॉफी टेबल्स लेने हैं, कॉफी टेबल्स हैं, नई लेटेस्ट कॉफी टेबल, मार्बल फिनिश है, वुड का है हमारे पास, कैसा भी उसको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप प्लीज हमारे रिट्स फर्नीचर्स में आइए, फादर डे की सेल हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। अगर किसी ने फाइनेंस की ऑप्शन करानी है, तो वो भी हम करके देते हैं, जिसमें 0% इंटरेस्ट है एक साल के लिए। सो प्लीज रिट्स फर्नीचर्स पे आइए और इस डील का फायदा उठाइए। और हमारा जो रिट्स फर्नीचर का एड्रेस है 5200 डिक्सी रोड, हमारा मेन इंटरसेक्शन है मैथिसन एंड डिक्सी, और हमारा फोन नंबर है 6477657657। एक मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आप आते हैं तो हमारे रिट्स फर्नीचर की वेबसाइट खोलिए, उस पर करंट फ्लायर है, उसको क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी डील्स आ जाएंगी। आप कोई भी डील सेलेक्ट कीजिए और हमारे फोन पे बात करना चाहें, फोन कीजिए, हम आपको बता देंगे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है और कब तक मिल जाएगा आपको, वो भी हम आपको डिटेल बता सकते हैं। सो रिट्स फर्नीचर से आइए प्लीज और इस डील का फायदा उठाइए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
0: चरणजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों और भाइयों, जरूर पहुंचिएगा रिट्स फर्नीचर प्लेनेट। डिटेल जानकारी rizfurniturplanet.ca पर। ये ही टू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
2: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289 4010009 2894010009.
2: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 2894010009.
3: जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का तांता शुरू हुआ उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

अगेन ऑन द डे जहाँ बात होती है उसकी, जो हमेशा से हमें समय पे रेडी ना होने पर ना बाबा लोगों से डांट पड़वाता रहा है, जो स्कूल देर से पहुंचने पे हमेशा से कभी मुर्गा बनवाता रहा है और कभी असेंबली में वो नमूनों की तरह अलग से खड़ा करवाता रहा है। याद है वो सिनेरियोस? वेल, जिसकी नॉन स्टॉप टिक-टिक इज द कारण ऑफ मेनी खिटखिट्स। पर यूं भी है कि घड़ी घड़ी समय बताती वाली घड़ी ही ना होती ना तो कितने लोगों की कुंडली ही सही ना बनी होती। अच्छा कुंडली छोड़ो, कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ना बने होते, सेकंड से आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। सो वेल, जीवन का पल पल बंधा है भाई समय के साथ, और समय बंधा है हमारी कलाइयों पे, और यहाँ पे टंगा है हमारी दीवारों पे इस वॉच के साथ या घड़ी के साथ वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड अवनीश ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि दिस नेशनल वॉच डे आज इसी की सिग्निफिकेंस बताता है। बाकी ये है कि घड़ी महंगी हो या सस्ती, मेक श्योर लाइफ की तरह वो भी रहे लगातार चलती।

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located at 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit karein waynesautogroup.com.
1: Movies released, Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkad's Weekend Watch. राइट तो चले सबसे पहले वीकेंड वॉच में आई एम गोइंग टू रिव्यू हिंदी फिल्म जो अभी रिलीज हुई और काफी उसकी चर्चा भी थी नाम है कॉकटेल 2 सीक्वल है कॉकटेल 1 का अब जैसा कि नाम है ये भी इमोशंस के कॉकटेल से भरपूर है कहानी कपल की है दिया और कुणाल दिया इज प्लेड बाय रश्मिका कुणाल इज प्लेड बाय शाहिद ये 10 साल से रिलेशनशिप में है पर परिवार रिश्तेदार दोस्तों को सवाल से भाग जाना चाहते हैं कहीं ऑब्वियसली साथ साथ जहां उनसे पूछा ना जाए बार बार कि शादी कब कर रहे हो भाई क्योंकि अभी वो दोनों सेटल डाउन होने के मूड में नहीं है अब वेकेशंस पे चले जाते हैं ये सिसिली इटली सुंदर सी जगह तो आपको अच्छी अच्छी लोकेशंस देखने को मिलेंगी अब ये जो कपल है उसमें से दिया को लॉयल्टी इश्यूज हैं बॉयफ्रेंड की वफादारी टेस्ट करना चाहती है और वहां उसको मिलती है अपनी पुरानी दोस्त यूनिवर्सिटी की एली कृति रोल प्ले कर रही है बहुत अच्छे से प्ले किया है वो उसको काम पे लगा देती है कृति को कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड जो है कुणाल उसके साथ फ्लर्ट व्लर्ट करो अगर ये तुम पर फिसला तो फुटा दूंगी और नहीं तो सदा के लिए अपना लूंगी पर वो होता है ना जब तक अपना प्लान अपने हिसाब से चले तब तक चंगा जब कैरेक्टर्स मनमानी करने लगे तो केओस होना तय रहा है ना और यहाँ तो इमोशनल केओस फुल ऑन है क्योंकि दोस्ती प्यार मजाक डिजायर्स कमिटमेंट्स इन सब की लाइंस धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं एंड देन क्लाइमेक्स तक आते आते क्लाइमेक्स नहीं बताऊंगी क्या है पर वहां तक आते आते तीनों की जिंदगी में एक वो सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर उन्हें चाहिए कौन और क्या सेल्फ डिस्कवरी वो सफर उन्हें तय करना ही पड़ता है टू मेक अ वाइज चॉइस फॉर देयर लाइव्स तो ये तो था प्लॉट अब फिल्म कैसी है तो कृति की तो भरपूर तारीफ हो रही है बेस्ट इन द फिल्म बताया जा रहा है कि इन्हीं की फिल्म है एक्चुअली रश्मिका भी अच्छी है पर डायलॉग डिलीवरी की थोड़ी प्रॉब्लम है विद एक्सेंट आई गेस ये सब ने कहा है शाहिद वेल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो आई गेस आई एम बायस्ड ऑब्वियसली एंड बेसिकली फिल्म सुंदर है अच्छी है मजेदार भी है प्यार जलन डिजायर्स कंफ्यूजन और वो जो डिसीजन वाले इमोशंस होते हैं उन सबसे भरपूर गाने भी ठीक ठाक हैं स्टैंड अलोन देखो तो अच्छी लगेगी पर अगर आपने कहीं कंपेयर कर दिया इसे कॉकटेल 1 से तो मुझे लगेगा लग रहा है कि आपको लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है खासकर द कनेक्शन विद द इमोशंस वो मुझे ट्रेलर देख के भी लग रहा था और गाने देख के भी ओवरऑल आई गेस अगर सीक्वल समझ के ना देखी जाए इसे तो फिल्म हैज द पोटेंशियल टू बी योर टेम्परेरी ही सही माशुका गाना फिल्म से यही सुना देती हूँ माशुका

0: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक इस साल की जबरदस्त ऑफर। एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन। A proud member of Wayne's Auto Group.
1: ऑल राइट आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम के साथ। और भाई इस वक्त आपकी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बात करानी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा रिसेशन वैसा रिसेशन, और फिर जब करियर पे पड़ती है लात तो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर भी आ जाता है एकदम परेशानी में। और ऐसे में आप अगर रूहानी कॉलेज में जाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि करियर भी सिक्योर हो सकता है और फ्यूचर भी, क्योंकि वहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं उनकी गारंटी होती है, लिमिटेड टाइम में आपके करा देते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा असिस्टेंस रहती है उनकी हर तरीके से, सो दैट उनका जो रिजल्ट होता है ना 100% वो आपका भी एक्चुअली फुल रिजल्ट है। इसका मतलब कि पास तो आप हो ही जाएंगे, सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, वो डिप्लोमा हाथ में आएगा और वो करियर आप परस्यू कर पाएंगे जो आपने वहाँ से पास किया है। और उसके बाद वो जो इनकम बताते हैं वो बहुत अमेजिंग है। प्री मेड कोर्सेस वो भी बहुत अच्छे हैं, पर क्या है डिटेल वो मैं आपकी बात ओम जी से करा देती हूँ। ओम जी वेलकम।
2: थैंक यू जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ ओम जी, बड़े दिनों बाद बात हो रही है आपसे। थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, मुझे लगा आपका भ्रमण काम की वजह से बहुत रहता है। मुझे पता है जैसे आप लास्ट टाइम भी बता रहे थे कि प्री मेड कोर्सेज जब आपके होते हैं आप कितनी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप कर रहे होते हैं, उनके लिए आपको मिलने जाना पड़ता है, अच्छी यू नो सारी चीजें सिक्योर करनी पड़ती हैं फ्यूचर वाइज जो यहाँ से बच्चे उनके पास जा रहे हैं। तो हाउ वॉज योर ट्रिप एंड फाइनली वेलकम बैक ऑन बोर्ड।
2: थैंक यू स्वाति जी। एक्चुअली इसमें देखो क्या होता है कि अगर हम कोई भी बच्चा भेजते हैं यहाँ से सो दे हैव टू स्टडी वन ईयर विद अस हियर इन कनाडा, हमारे पास एक साल का प्री मेड करते हैं, देन उसके बाद में डायरेक्टली वो जो चाहे कैरेबियन हो, आयरलैंड हो और यूएस हो, कहीं भी हो, तो पहले हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे घर के हमारे बच्चे जा रहे हैं तो दे हैव गुड एकोमोडेशन, दे हैव गुड फूड, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुड सक्सेस रेट, तो सारा चीज हम खुद ही इन पर्सन जाते हैं, हमारे जो डीन हैं उनके साथ में जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि इज रियली वर्थ, और पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वहाँ पे जो आज बच्चा जा रहा है डॉक्टर बन के निकलेगा तो कैसे निकलेगा, क्या क्या उनके सक्सेस रेट हैं, वो सब कुछ हम एकदम से पूरी जैसे अपने बच्चे को भेजना होता है उस तरीके से करके फिर यहाँ पर हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि दिस इज फॉर गुड फॉर यू। और आप यकीन नहीं करोगे कि मेडिकल डॉक्टर बनना इज सो ईजी, हमें पता ही नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, बिकॉज चार साल आपका पहले बच जाते हैं, प्लस टू के बाद में सीधा हमारे एक साल का एडमिशन और आपको बीकॉम बीएससी फोर ईयर का डिग्री जो है किनेसियोलॉजी, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, एमकेट भी करने की जरूरत नहीं है, सो आफ्टर 12th ग्रेड यू डायरेक्टली कम टू अस और वहां से आपकी जर्नी चालू हो जाती है और चार साल पहले आप डॉक्टर बन के निकलते हैं, देन की बाकी जो नॉर्मल रूप से जाते हैं। और मैं चीज बताना चाहूंगा आपको, अभी रिसेंटली हमारे बच्चे जा रहे हैं अभी और उनकी जितने भी थे सबका गारंटेड एडमिशन मिला है और जहाँ पे चाहते थे जिस जो भी हमारे पार्टनर्स कॉलेजेस हैं उनमें मिला है और अभी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, इनको सामने दिख रहा है। जी तो
1: ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि व्हेन यू नो योर फ्यूचर इज सिक्योर। और देखिए ना प्री मेड में तो मुझे ये जो आपका मेडिकल कोर्स है उसमें तो मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगती है कि एक तो गारंटीड आपको पता है आप डॉक्टर बन जाओगे, अच्छी जगह से आपकी ट्रेनिंग होगी और कम समय में बन जाओगे, तो कम समय का मतलब तो ये होता है आप जल्दी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, मच अर्लियर देन अदर गाइज, और उसके बाद जल्दी प्रैक्टिस का मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस इन लेस टाइम और आप फ्यूचर वाइज कितनी जल्दी एस्टैब्लिश हो सकते हैं। तो ये तो ब्यूटीफुल थिंग है जो मुझे रूहानी कॉलेज की लगती है और इसलिए मैं अपने लिसनर्स को एक बार रिकमेंड जरूर करूंगी, अगर आप चाहते हैं, आपके बच्चे चाह रहे हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक बार रूहानी कॉलेज से संपर्क जरूर करें एट 905-731-2555, 905-731-2555। अच्छा ओम जी मुझे एक चीज और बताएं कि ये तो हुई बच्चों की बात जो प्री मेड करना चाह रहे हैं, अब हमारी आपकी उम्र के जो लोग हैं जो करियर चेंज चाह रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी आजकल किसी करियर में नहीं है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं?
2: बिल्कुल, आपने शुरू में ही बोला था कि रिसेशन है, बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, तो जो हेल्थ केयर का सेक्टर, सबको पता है कि कैनेडा में स्पेशली रिसेशन फ्री है, मतलब कि अब कोई बीमार होगा कोई डॉक्टर का तो कभी भी काम रहेगा लाइक व्हाट एवर रीजन, तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है कभी भी इसमें कोई जॉब लॉस का बहुत कम चांस होता है, और एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि हमेशा ग्रोथ होती है, तो इस सेक्टर में आपको एंट्री नहीं है, आपने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, कभी ऐसा लगता है कि मैंने तो मैथ पढ़ा है, मैंने साइंस पढ़ा, मेरा कोई आईटी का पढ़ा, कॉमर्स का, कुछ भी मतलब कि बैकग्राउंड नहीं है, देन हाउ विल यू डू? तो अगर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट 12th ग्रेड पास है, तो हमारे पास आए, मैं आपको रास्ता बताते हैं, और बहुत टाइम नहीं है, जस्ट विद इन वन ईयर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, चाहे आप RMT में जाएं, चाहे आप ऑस्टियोपैथ में जाएं, चाहे एक्यूपंचर में जाएं, हाँ एक्यूपंचर ऑस्टियो में थोड़ा सा और टाइम ज्यादा लगता है, डिपेंड करता है कि कितना आपकी नॉलेज है, बट जो एक हमारे पास आते हैं RMT से रास्ता खुल जाता है, और इसके बाद में आपका एक पूरा लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि इनकम बहुत अच्छी है, और इसमें आपको जो जॉब की 100% गारंटी, कोई भी कोर्स बंदा करता है सोचता है कि व्हाट आई विल डू आफ्टर द दिस कोर्स, तो यहाँ पे जॉब की इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपका सर्टिफिकेट लाइसेंस आने से पहले आपके पास कई सारी जॉब रेडी होती है।
1: वेरी नाइस। तो देखिए, मैं फिर से वही रीइंस्टेट करना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि ओम जी ने भी कहा हेल्थ सेक्टर तो सभी मानते हैं कि उसमें रिसेशन वाली चांसेस नहीं होते, और यहाँ पे तो पूरी पर्सनल टच वाली चीजें हैं, जिसे AI भी पता नहीं कब करेगी, अगर करेगी तो, क्योंकि पर्सनल टच वाली चीजें तो वहां पे आपकी जॉब को वहां पे भी खतरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इतने अच्छे कोर्सेज हैं, कम टाइम में हो जाते हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं, इनका रिजल्ट 100% है, तो आप एक बार फोन करके पता करें, इवन इफ यू आर 12th पास देयर इज एन ऑप्शन, 905-731-2555 is the number, or you can also visit ruhanicollege.com. College बहुत पास में है, Brampton में, बिल्कुल easily accessible है, Queen और Kennedy का intersection मोटा मोटा, आप एक बार पहुंचना भी, आपके लिए जो public transit है उससे पहुंचना भी बहुत आसान होता है, तो 905-731-2555 is the number for you to call and make an appointment to call and discuss. Thank you, Om ji. मैं फिर आपसे बात करती हूँ अगले हफ्ते.
2: Thank you.
1: जी, thanks.

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: तो फादर्स डे है संडे को और जैसी मैं फैन गर्ल हूँ ना अपने पापा की, मुझे लगता है आई कैन टॉक एंड टॉक एंड टॉक इन लेंथ देर तक विद हिम एंड अबाउट हिम. हालांकि मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ये विद हिम वाला नहीं होता सिनेरियो. कहते इतनी लंबी बात हम अपने पापा से कर ही नहीं पाते, पर हाँ ऐसे मुझे बहुत लोग मिले हैं जो कहते हैं अबाउट अपने पापा वो बहुत बोल सकते हैं. तो यहाँ तो हम एक से हैं. वेल, मेरे साथ दोनों हैं, लकी मी. तो कभी तो कविता लिखती हूँ उन पर और कभी उनकी सिखाई बातें कविताएं बोलती हूँ. आज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कुछ क्विक बट फॉरएवर वाली लर्निंग्स जो उन्होंने बचपन से हमें बड़ी सटल तरीके से बिना सिखाए सिखा दी. गाने गा गा के और गाने सुना सुना के गानों में सिखा दी. तो कुछ सॉन्ग्स की कुछ लाइंस आपको सुनवाती जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी कि मैंने उनसे क्या सीख लिया बस वो गाने उनसे सुनते सुनते. करें शुरू. तो पहला गाना.

चूहा बिल्ली का गाना बताता है कि लोगों को फेस वैल्यू पर बिल्कुल मत लो, व्हाट दे डू उसको देखो, नॉट व्हाट दे से।

ये सीख देता है टेक टाइम बिफोर यू ट्रस्ट. वेल, ये तो थी मेरे पापा की सिखाई कुछ सीखें गानों के जरिए. आप भी शेयर करें, कुछ है आपके पास तो. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055.

advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही में

0: राजधानी खुद आइए दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: घर कहीं भी लेना हो या

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkad's Weekend Watch. तो भाई कॉकटेल के अलावा दो और हिंदी फिल्में रिलीज हो रही हैं, दोनों लो बजट सिनेमा है। एक है मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर, फिल्म का नाम है वो आपको शोले का डायलॉग याद दिला देगा। पूछे क्या, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जी हाँ, यही फिल्म का टाइटल है। कास्ट में ऑब्वियसली असरानी है इसमें। लुक्स लाइक कि एमवीसी फिल्म है। कहानी एक मोनिका लड़की की है जिसकी माँ ने सुसाइड कर लिया है और उसकी वजह ठाकुर विश्वजीत सिंह का खानदान। तो मोनिका को बदला लेना है उस ठाकुर और फैमिली से बाय सिस्टमैटिकली वाइपिंग देम ऑल आउट, मर्डर करती जाती है। फैमिली झगड़ा है बेसिकली, तो बन जाता है डेडली और मर्डर्स हो रहे हैं तो तहकीकात भी होगी। ट्रेलर मुझे बहुत बहुत बहुत बकवास लगा। मेरी है सलाह, इस पर ना करें वक्त बर्बाद। देन दूसरी फिल्म जो है वो भी लो बजट सिनेमा है, जैसे मैंने कहा फादर्स डे पर स्पेशल रिलीज है। ये इमोशनल त्याग वाली ड्रामा जहाँ एक पिता अपने बेटे को एज अ सिंगल फादर पालता है, माँ बाप दोनों बनकर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, पर बच्चे को पढ़ाता है, बनाता है और वही बेटा बड़ा होकर इल ट्रीट करता है। ट्रेलर देखकर वो 80s की फिल्में थी ना, घरेलू जैसी थी, वो याद आ जाएंगी, अवतार, घर हो तो ऐसा, वो सारी कहानियां जो थी जहाँ आप बहुत बहुत बहुत बहुत रोते थे। नाम है फिल्म का समर्पित फादर लव। आई एम नॉट इन फॉर दिस मेलोड्रामा आइदर, वो भी थिएटर पर तो बिल्कुल ही नहीं। बाकी OTT पर इस हफ्ते दृश्यम 3 मलयाली वर्जन रिलीज हो रहा है सबटाइटल्स के साथ, मुझे लगता है कि मैं उसे जरूर देख सकती हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैं ये भी सोचती हूँ कि कभी कभी फिल्में देखने के बजाय अपनी जिंदगी की फिल्मों पर भी गौर फरमाएं, है ना। छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हमारी चलती रहती हैं इधर उधर, उन्हें वक्त दें, उन्हें सींचें, क्यों ना उस पर प्यार लौटाएं, है ना बेटर आइडिया।

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: And tumsa nahi dekha aisa kehne wale hain aap bhi when you hear about this project jo ki leke aa rahe hain Janak Chhabra ji aur isme jo pricing hai na bahut awesome hai isme jo availability of variety hai wo bahut awesome hai aur location wo bhi bahut achhi hai gor aur mayfield ka jo area hai wahan pe Caledon mein wild field village naam se aa rahe hain towns bhi semis bhi aur detached bhi प्राइसिंग बहुत अच्छी है और फिर जब जनक जी लेके आते हैं तो प्राइसिंग के साथ साथ वहाँ पे आपको जो सर्विस मिलती है जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वो अपनी जेब से देते हैं वो भी बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं यूं ही नहीं कहते वो जो कहते हैं वो करते हैं वेल जनक जी का नंबर टिल यू कॉल 6479990935 पर आप एक बार बात करें और सुने कि वो क्या बता रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जनक जी वेलकम
2: बहुत मेहरबानी स्वाति जी कैसे हैं आप
1: बिल्कुल बढ़िया है फ्राइडे मूड में ऑन है हम
2: शुक्र है कि शुक्रवार है आज
1: जी बिल्कुल हम शुक्र ही मना रहे होते हैं सुबह से
2: सबसे पहले आपके प्यारे लिसनर्स को गुड इवनिंग सत श्री अकाल नमस्ते आदाब और आप नमस्ते। और आपकी पूरी ब्रिलियंट टीम को विशेषकर
1: जी
2: ये जो प्रोजेक्ट है ये आया है मेफील्ड और गोर रोड पे ये कम्युनिटी नहीं कम्युनिटी से ज्यादा कुछ है ये आप देखिए क्रिकेट ग्राउंड आपको इसमें मिल रहा है
1: जी
2: टेनिस पिकल बॉल बैडमिंटन कोर्ट्स मिल रहे हैं
1: जी
2: फ्लैश पैड किड्स के प्ले ग्राउंड मिल रहे हैं पार्क और रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं 9 फीट की मेन सीलिंग और प्राइवेट बैकयार्ड है 2500 मकानों की मास्टर प्लान कम्युनिटी इन सब सुविधाओं के साथ बन रही है हाईवे 413 और गो स्टेशन इतनी दूर है जितनी देर पत्थर फेंका जाता है इतनी स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस
1: अच्छा
2: और ये जो शेरिडन कॉलेज के कैंपस हैं और ब्रैम्पटन वगैरह ये सब 10 से 12 मिनट की दूरी पे ट्रांजिट बहुत बढ़िया है टाउन आ रहे हैं जी 7 लाख के नंबरों में फ्री होल्ड कोई सेट अच्छा। नहीं कोई मेंटेनेंस फीस नहीं कोई पीओटीएल नहीं है एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री होल्ड डिटैच 9 लाख के नंबरों में बड़े वाले और वो भी प्रोविजन है कि अगर आपके पेरेंट्स साथ में हैं तो मेन फ्लोर पे एक बेडरूम लिविंग किचन डाइनिंग और वॉशरूम फुल ताकि उनको ऊपर ना जाना पड़े कईयों के पैर में थोड़ा सीनियर हो जाते हैं तो चढ़ने में तकलीफ आती है
1: बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी है ये तो हम क्योंकि हमारी फैमिलीज में तो पेरेंट्स साथ ही रहते हैं और बड़ी दिक्कत होती है उन्हें
2: जी हाँ जी उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोलोमार डेवलपर जो 36 सालों से कम्युनिटीज डेवलप कर रहे हैं और सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बनाते हैं तो जब हम इन्वेस्टमेंट के बात करते हैं तो वो एक अलग बात है वो हम सीएमएससी एमएलआई सेलेक्ट प्रोजेक्ट बेचते हैं जो वर्ल्ड में नंबर वन इन्वेस्टमेंट है वहां 5% आपको डालना होता है अप टू 95% की गवर्नमेंट बैक फंडिंग होती है पर जब रहने की बात आती है मकान लेना है तो फिर आप ताजमहल लें आपको बढ़िया जगह लेना होता है जहां सारे स्कूल कॉलेज ये वगैरह सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है तो उस एंगल से लोकेशन लोकेशन लोकेशन जो बात चलती है सारे चेक मार्क यस यस यस हैं और ये प्राइस कोई 5-7-8 साल पहले किसी ने सुना होगा क्योंकि अभी 13% की जो रिबेट मिल रही है गवर्नमेंट से वो बिल्डर आगे एक्सटेंड कर रहे हैं इन्वेस्टर को बायर्स को दे रहे हैं उस वजह से जो लोग आपको 11,30,000 की जो डिटैच मिलता था वो आज 1 मिलियन का मिल रहा है और उसकी एक विंडो है उसके टाइम पीरियड में ही आपको लेना है वो तो इसमें डिपॉजिट जो है वो टाउन्स के लिए 10% है और डिटैच के लिए भी 10% है। क्लोजिंग इनकी अगले साल है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। पहला डिपॉजिट है टाउन्स के लिए 10,000 और डिटैच के लिए 15,000
1: जी।
2: मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ योगदान करूंगा। बाद वाला कोई सीन नहीं है कि क्लोजिंग पे मिलेंगे पैसे, मैं क्लोजिंग तक वेट नहीं कर रहा, मैं पहले अपने पैसे डाल के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंस है कि हर बंदा इसे क्लोज कराएगा, मेरा कमीशन आ ही जाएगा साल भर का। तो पहला डिपॉजिट 10,000 है टाउन में, उसमें मैं 25% डालूंगा, मतलब 2,500 मेरी तरफ से जाएंगे, 7,500 आप देंगे, आपके जमा पूरे 10,000 होंगे बिल्डर के पास।
1: राइट।
2: और डिटैच में 15,000 आपने देने, उसमें से 3,750 मैं दूंगा, 11,250 आपने डालने, आपको रसीद बिल्डर के डिपॉजिट की 15,000 की ही मिलेगी। इस कंट्री में एक एक डॉलर कीमती है, हर चीज से हेल्प मिलती है, तो ये थोड़ा सा भेज योगदान, बिजनेस अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव, जो भी आप इसको नाम दें, वो मैं अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ। और पहले दिन से आखिरी दिन तक आपके साथ हूँ, जिस ब्रोकरेज के साथ मैं काम करता हूँ, ओरिजिनल टीएफएन रियलिटी जो है, उनको मार्केटिंग राइट्स मिले हैं इसके, वही इसको मार्केट कर रहे हैं, वो एम्पायर बिल्डर की मार्केटिंग विंग है। तो हमारे पास सब तरह का एलोकेशन है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ सेंटर सब में, हमें जो आपको चाहिए वो आप उंगली रखेंगे वो मिलेगा। लिप सर्विस नहीं है, ऐसा करेंगे हम, बात नहीं करेंगे, करके देंगे। और हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे आपकी यूनिट हम रिजर्व करा लें। तो कॉल करें 6479990935, 647-999-0935। बाकी मेरी इंटेलिजेंट बहन स्वाति संभालें।
1: नहीं, आपने इतना अच्छा संभाल रखा है जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है इतने अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट्स आप लेके आते हैं अच्छे अच्छे, और क्योंकि हर जगह अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, वरना अच्छी प्राइसिंग पर नहीं मिलते, अच्छी लोकेशंस पर हो, एक कॉम्बो होता है, वो कॉम्बो जब आप लेके आते हैं, क्योंकि आप सिलेक्टेड काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप ही नाम बोलता है कि जनक जी लेके आए हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन टू इट। वेल, मैं नंबर आपका जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगी, 6479990935। इस नंबर पे एक बार आप जनक जी को कॉल जरूर करें। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे दो तीन चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं जो कि आम तौर पे देखने को नहीं मिलती हैं, कि ये जो मास्टर प्लान कम्युनिटी है, इसमें आप देखें क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, टेनिस ग्राउंड्स हैं, कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन, पिकल बॉल, पूरे जो बच्चों के साथ आप एक फैमिली लाइफ जीते हैं, तो सारे स्पोर्ट्स वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब हैं, लोकेशन अच्छी है, और साथ में अगर पेरेंट्स साथ रहते हैं तो उसका भी प्रोविजन है कि आप नीचे मास्टर बेडरूम विद फुल वॉशरूम एक बना सकते हैं। तो आई थिंक इट्स यू नो परफेक्ट एक सिनेरियो है, पर आप एक बार कॉल करके पता करें, प्राइसिंग भी ठीक है, 6479990935। थैंक यू जनक जी, थैंक यू सो मच।
2: बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच
1: जी।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353.
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.

दुगना हो जाता है मजा ऑफ एनी सफर. इट्स अ बिगर बिगर फन टू वंडर. साथ हो अपनों का घर है ना. तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, ये भी कोई बात है. आशा भोसले जी ने भी बताया है. वेल ऑन द वर्ल्ड सॉन्टियरिंग डे टुडे, अ रिमाइंडर टू ऑल बिजी बीज आउट देयर कि थमो टेरो, स्लो डाउन एंड अप्रिशिएट द वर्ल्ड अराउंड. थोड़ा थोड़ा भटकना समटाइम्स लीड्स टू लोड्स ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन. वो कहते हैं ना, यू विल नेवर नो अंटिल यू गो. मतलब सब गूगल के भरोसे मत छोड़ो. हवाओं की सुनो, सूरज के किरणों में नहाओ, थोड़ा बाहर जाओ, जस्ट एक्सप्लोर द मैजिक ऑफ नेचर. यूं ही लेजी लैड बनके सोफे पे ना पड़े रहो.

0: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक। इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन। A proud member of Wings Auto Group.
1: और हम बात कर रहे थे फादर्स डे की। तो भाई फादर्स डे बेशक संडे को है, लेकिन संडे तक तो इंतजार नहीं करना ना, गिफ्ट तो पहले ही लेके रखनी है उनके लिए, है ना। और उसके लिए कुछ यूटिलिटी आइटम हो और जिसमें टेंशन भी हो तो क्या ही बात है, जिसमें आपकी पॉकेट में कुछ पैसे भी बच जाएं तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना हमारे, वो तो इस बात पे भी नाराज होते हैं गिफ्ट देने में कि यार महंगी गिफ्ट ले आए, तो अगर महंगी गिफ्ट हम उन्हें सस्ते में दे पाए तो कितना मजा आए, है ना। हमारा मन भी हो जाएगा, उनसे भी डांटनी पड़ेगी और हम गिफ्ट भी दे पाएंगे। तो एक ऐसी जगह बताती हूँ आपको जहाँ पे ब्रांडेड सनग्लासेस या चश्मे आप बनवा सकते हैं अपने फादर्स के लिए या मदर के लिए, और साथ में आपकी बचत बहुत अच्छी होगी क्योंकि उनकी डील्स इतनी सुपर्ब होती है ना। फादर्स डे के लिए तो बहुत स्पेशल डील्स हैं, पर क्या है वो उन्हीं से पूछ लेते हैं। राजन जी वेलकम।
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी और फिल्म निकड़ के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। तो बिल्कुल ठीक आपने जी कि अगर फादर्स डे है तो कोई गिफ्ट ना मिले तो ऐसे कैसे हो सकता जी। स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर हमने स्पेशल स्पेशल स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं जो भी हमारे लिसनर्स आ रहे हैं जी आज और कल। और अगर आपकी परचेज $200-$500 की है तो आपको साथ में फॉसिल के ब्रांडेड सनग्लासेस हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। और मैं रिपीट कर दूं जी कि अगर आप फ्राइडे और सैटरडे नहीं आ पाए और अगर आपको लगता है कि आपका ये गिफ्ट मिस हो जाएगा तो बेस्ट थिंग है कि जी आप कॉल करें, कॉल करके हमें अपना नाम रजिस्टर करवा दें। और जो भी लिसनर्स हमें कॉल कर अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं उनको ये डील हम नेक्स्ट वीक तक भी देंगे। आपने सिर्फ कॉल कर अपना नाम रजिस्टर करवाना है और कॉल करने के लिए नंबर है जी 905-460-8888 905-460-8888। और फादर्स डे के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया डील्स चल रही हैं जी हमारे पास, खास करके जिन्होंने हाई एंड ब्रांडेड फ्रेम्स लेने हैं या ब्रांडेड सनग्लासेस। तो हमारे पास 2026 की सारी ही समर कलेक्शन आ चुकी है जी, जिसमें अगर आपको गुची के, प्राडा के, टॉम फोर्ड के, टिफनी के, ब्लेंसियागा के, वर्साची के या फिर बर्बरी के ब्रांडेड फ्रेम्स चाहिए या फिर ब्रांडेड सनग्लासेस, तो इन सब के ऊपर आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है जी। अगर आपको रेबन के फ्रेम चाहिए या फिर अरमानी के या फिर कोच के, माइकल कोर्स के या फिर टॉरी बर्च के या फिर केज पेट के, तो इन सब ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है जी। और सबसे बढ़िया डील आपको कैल्विन क्लाइन के फ्रेम, टॉमी हिलफिगर के फ्रेम, साथ के साथ वैलेंटिनो के फ्रेम एंड फैंडी के फ्रेम फ्लैट 75% ऑफ करके दिए जा रहे हैं जी। ये सब अमेजिंग अमेजिंग डील्स मिल रही हैं आपको स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर। अब स्वाति जी जिन्होंने ये बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बनवाने हैं उन्होंने आई एग्जाम भी करवाना है, तो दोस्तों अगर आपने आई एग्जाम करवाना है तो डॉक्टर हमारे पास जी आज भी अवेलेबल हैं। अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल सुबह भी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं। और स्वाति जी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर आई एग्जाम होता है, विजन चेक होती है, आंखों की हेल्थ चेक होती है, और जब आंखों की हेल्थ की बात आती है तो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है इसमें OCT है जो आंखों का रेटिना स्कैन कर देती है, फिर हमारे पास रेटिनोग्राफी है जो रेटिना की इमेजेस लेती है, और अगर आप बच्चों का एग्जाम कराते हो तो हमारे पास टोपोग्राफी मशीन है जो बच्चों का एक्सियल लेंथ मेजर करती है ताकि बच्चों का अगर नंबर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो उसको हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देकर रोक सकते हैं। तो ऐसा डिटेल्ड एग्जाम अगर आप अपना या अपनी फैमिली का या अपने फ्रेंड्स का करवाना चाहते हैं तो जरूर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं 905-460-8888। और सबसे बढ़िया डील है जी हमारी हमारा वैल्यू पैकेज। स्वाति जी इसके बारे में क्या कहूं कि वाकई ही लोग ड्राइव करके आते हैं। अभी हमारे पास कस्टमर खड़े हैं जी, ये किंगस्टन किंग सिटी से आए हैं जी, किंग सिटी से ड्राइव करके आए हैं सिर्फ हमारा वैल्यू पैकेज लेने के लिए। तो वैल्यू पैकेज में सबसे पहले बताऊं आपको $300 की कीमत का सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम हम दे रहे हैं, और साथ के साथ आपको दोस्तों $100 की कीमत के सिंगल विजन लेंसेज ये भी दे रहे हैं, और ये कुल मिलाकर 400 का पैकेज है जो हम आपको सिर्फ $129 में दे रहे हैं। और स्वाति जी, मजे की बात यह है कि जो आप ये फ्रेम चूज करते हैं, ये कोई 10, 20, 50 फ्रेम में नहीं से आप चूज करते, आप 700 से 800 फ्रेम डिस्प्ले के ऊपर लगे हैं, आप इनमें से कोई भी फ्रेम चूज कर सकते हैं, लेडीज का, जेंट्स का, बच्चों का, आपकी चॉइस के हिसाब से। तो ये 400 का पैकेज सिर्फ $129 में है। और अगर आपको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए तो एसिलॉर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, $300 की कीमत के लेंसेज एंड $300 की कीमत का फ्रेम, 600 का पैकेज सिर्फ $258 में, सिर्फ 258 में। और स्वाति जी, अब होता क्या कि जब हम ग्लासेस बनवा लेते हैं फिर हमें चाहिए होती कोटिंग, कि अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आपको एंटी ग्लेयर चाहिए, अगर आप स्क्रीन यूज करते हो सेल फोन या कंप्यूटर तो आपको ब्लू लाइट चाहिए, अगर आप बाहर जाते हो तो आपको यूवी प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, सभी की सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ दी जा रही है जी। और अगर आपको है कि मैं दो पैर बनवा लूं, एक मैं घर पे रखूं, एक गाड़ी में या ऑफिस में, तो पहले पैर के ऊपर कोटिंग्स 50% ऑफ है जी, और दूसरे पैर के ऊपर कोटिंग्स एब्सोल्युटली फ्री है। सो ये सोने के ऊपर सुहाग है जी कि आपको दो पैर ले रहे हो तो पहले पे कोटिंग 50% दे रहे हो और दूसरे पे कोटिंग बिल्कुल फ्री है। तो डील लेनी है तो पहुंचे हमारे लिसनर्स स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, क्योंकि ये सभी डील्स के साथ आपको दोस्तों, अगर आपकी या आपकी फैमिली की परचेज 500 की हो जाती है तो इस वीकेंड आपको साथ में फॉसिल के ब्रांडेड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो मैं एड्रेस बता दूं
1: जी, प्लीज मैं वही बताई थी कि एड्रेस आप बताएं प्लीज।
2: हाँ जी, एड्रेस है जी स्पेक्स एक्सप्रेस का, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स के अले या कैनेडियन स्टील्स के इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा है। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं, बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बुक करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो एक ही नंबर है जी, 905-460-8888, 905-460-8888। एंड अगेन, अगर आप फ्राइडे एंड सैटरडे बिजी हैं, नहीं आ सकते, तो कॉल करके हमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दें, ताकि आपको यही डील हम नेक्स्ट वीक भी देंगे जो भी लिसनर्स हमें कॉल कर अपना नाम लिखवाते हैं। अगेन 905-460-8888, 905-460-8888।
1: बहुत ही अच्छी सी डील्स हैं, मैंने कुछ तो नोट करी है ताकि मैं भी आके पकड़ के ले जाऊं कुछ अच्छा सा। पर जैसे कि आपने कहा कि आज और कल $500 तक का परचेज अगर पूरी फैमिली का हो जाता है, कि जो कि बहुत चांसेस हैं, तो फॉसिल के सनग्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आप आज और कल नहीं जा सकते बट यू वॉन्ट टू अवेल दिस, तो आप फटाफट कॉल करके बस अपना नाम बुक करा दें, रजिस्टर करा दें, आप अगले हफ्ते भी ये डील अवेल कर सकते हैं। बाकी वैल्यू पैकेज है, 300 वाली चीज आपको 129 में मिल जाएगी और $600 के पैकेज वाली चीज आपको 258 में मिल सकती है। कोटिंग जिसमें 50% फ्लैट है ऑफ या फिर सेकंड पेयर लेते हैं तो वो तो बिल्कुल फ्री मिल सकता है। सारी ब्रांड्स आपको मिलेंगी और किसी पे 75% ऑफ है, किसी पे 50% ऑफ है, किसी पे 30% ऑफ है, बट यू शुड गो देयर। स्पेशली आई एग्जाम की जब बात आती है, चाहे वो बच्चों के आई एग्जाम की बात हो या आपके, एक कंप्लीट डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम हो सकता है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट जरूर बनाएं। कॉल 905-460-8888। थैंक यू राजन जी एंड गुड लक।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू सतीश।

पप्पू कान डांस आ रहा। वेल मुझे लगता है ये गाना आप बनाने वाले ना शायद रेमो डिसूजा से नहीं मिले थे, या हो सकता है ये पप्पू ना मिला हो उनसे वरना डांस जरूर कर पाता है ना, क्योंकि एज पर रेमो डिसूजा एनीबडी कैन डांस। अब आप सोचेंगे कि अरे क्योंकि वो खुद कर पाते हैं ना ऐसे उन्हें लगता है कि सब कर पाते हैं एनीबडी के डांस, पर नहीं, विश्वास है उन्हें पूरा पूरा। तभी तो देखो ना इसी नाम से और फोकस में डांस पे दो फिल्में बना डाली, ABCD 1 ABCD 2, और उसके बाद इसी सीरीज में स्ट्रीट डांसर भी आई। बेहतरीन कोरियोग्राफी, म्यूजिक मस्सा, और हिट भी हुआ ऑफ ऑल थ्री फिल्म्स। एंड टुडे मार्क्स द रिलीज एनिवर्सरी ऑफ ABCD 2, जिसमें फोकस में था हिप हॉप डांस, जो कि एक कंपटीशन हुआ था हिप हॉप डांस पे इन सैंटियागो। वो साथ में यू नो दैट स्पिरिट ऑफ विनिंग लूजिंग कॉन्स्पिरेसीज लव एंड जेलेसी वो सब था उसमें। एंड द गाना विच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द फिल्म इज द वन जो इसलिए भी नोटिस हुआ था उस वक्त क्योंकि इसमें फ्रांस की दो ट्विंस डांस कर रहे थे, लॉरेन और लेरी। और गाना टॉक्स अबाउट व्हेन लव गेट्स टैटूड इन अंग्रेजी।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare sirf 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: फायदा उठाएं जून के हॉटर ट्रेड्स का विद अमित खुराना 3 ईयर फिक्स 4.19% 5 ईयर फिक्स 4.24% 5 ईयर वेरिएबल 3.55% साथ ही मिले $5,100 तक का हॉटर कैशबैक भी और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500 है ना आइसिंग ऑन द टॉप कॉल अमित खुराना एट 6473412785 6473412785 और विजिट amitkhurana.com

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
6: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
5: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com. Retro in Metro. Nukkad Classic.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: And a quick reminder to FIFA enthusiasts कि ड्रोन उड़ाना है मना आज FIFA Fan Festival and Centennial Park। अगर हीरोपंती दिखाई फिर भी और नचाया ड्रोन आसमां में तो सोच लो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है तैनात ऑलरेडी, तो भाई कैसे बचोगे उसकी नजरों से? पकड़े गए अगर तो ना चलेगा एक्सक्यूज कोई, ना कोई माफी, ऊपर से देनी होगी पेनल्टी। रूल है सॉलिड और सिंपल, ड्रोन्स नहीं तो मतलब नहीं। तो मैच का मजा लो, सेल्फी वेल्फी लो, टीम्स को चीयर करो, ड्रोन को रखो घर पे और आसमा को खुला फ्री और क्लियर रहने दो। नेचर वाइज तो देखो ना, आसमा को घेरने का काम यूं भी बादलों का ही है, उन्हीं पर छोड़ दो। One more time.

0: लेट डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Movies released Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkad's Weekend Watch.
2: कल का मैच तो मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, कनाडा वर्सेस कतर। 6 गोल से जीते हम और इसके साथ ही हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बन गया। दैट इज फर्स्ट विन दर्ज कर ली हमने इन वर्ल्ड कप, वो भी छोटी मोटी नहीं, 6-0 से जीते। तो हौसले भी बुलंद हैं अपने तो बस। बाकी आज की जो मैच लिस्ट मैं देख रही हूँ उसमें USA ऑस्ट्रेलिया, ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैच काम का टाइम होता है ना। स्कॉटलैंड मोरक्को एंड ब्राजील हेटी का है 8:30 बजे। एंड देन तुर्की और पैराग्वे का मैच है 11:00 बजे, ये शायद देख पाऊंगी। देन वीकेंड पर भी लाइनअप है पूरा 8 मैचों का ऑन सैटरडे संडे, वो तो बस अपन पॉपकॉर्न लेके बैठे रहेंगे और देखना हुआ तो, है ना। और इधर विमेंस वर्ल्ड कप T20 भी चल रहा है, जहां कल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड और इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड है। तो भाई गेम्स वेम्स के अलावा बहुत से फेस्टिवल्स हो रहे हैं यहाँ पर लोकली। वेदर भी ब्राइट है ओवरऑल, दो विद सम रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स के चांसेस, और समर्स के वीकेंड हैं यूं भी जो लिमिटेड होते हैं, तो ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम ऐसे या वैसे।

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: Talawat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861.
0: तो तलावट्टी को कॉल मिला।
1: Talawat 647-295-7861.
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550, 746-5550.
6: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
7: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
6: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्स रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
8: सिर्फ मॉर्गेजेस, दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की

0: आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
1: अंजुम कुरैशी सभा के रबते का नंबर है। खुदा नखास्ता आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाएं कहीं, आपको ट्रैफिक टिकट मिल जाए, नंबर एक नोट कर लें 416-570-0157। बहुत अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं, आपके अपनी जुबान में बात करते हैं आपसे, और बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ काम कर रही हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन फीस, आपका केस सेटल हो जाए उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे। अंजुम कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को भी आदाब नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको यही याद दहानी करानी है कि अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले लोगों को ये फिक्र होती है कि आया हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमें लॉयर की फीस अपफ्रंट देनी होगी, या ये कैसा वर्क करता है। तो पूरे कैनेडा में यही एक तरीकाकार है कि ये कंटेंजेंसी फीस कहलाती है। चाहे आप हमारे साथ आए, चाहे आप किसी के साथ भी जाए, आपको फीस आखिर में दिलानी होती है, देनी होती है। और क्योंकि ये फीस जब आप आखिर में देते हो तो लॉयर अपनी मेहनत से आखिर तक ये अपनी पूरी जितनी भी उसकी स्किल्स होती हैं, जितनी उसकी महारत होती है, वो अपनी पूरी महारत के साथ अपनी पूरी एक्सपर्टीज को जो आजमा के वो कोशिश करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलाए। क्योंकि उसको मालूम होता है कि जितना ज्यादा पैसा वो आपको दिलाएंगे उसमें से जो एक सर्टन परसेंटेज तय है वो आप देंगे। तो एक तो ये कि जाहिर है कि आपके अपने ऊपर कोई बोझ नहीं है। दूसरी बात ये कि लोग अक्सर बेहतर पूछते हैं कार एक्सीडेंट में कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। तो उसका जवाब अक्सर वेस्टर्न लॉयर ने ये दिया कि ये कोई मर्डर केस नहीं है जिसमें आपका लूज एंड विन होगा। आपने एक कार की पॉलिसी ली हुई है जिसकी आप पॉलिसी के पैसे, प्रीमियम के पैसे हर महीने पे करते हो। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि आप सिर्फ पिंक स्लिप को तावीज समझ के रख लेते हैं और पढ़ते नहीं है कि आपने अपने लिए क्या पॉलिसी खरीदी है। उस पॉलिसी के तहत आपको तमाम तर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जो एग्रीमेंट आप शुरू में करते हो कि आपके पास रेंटल कवरेज है, आपके पास कार एक्सीडेंट में क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, आपके पास जो है एडिशनल बेनिफिट कवरेज है कि नहीं है, या आपके इंजरी क्लेम जो है वो हर हालत में कवर होता है, और इंश्योरेंस कंपनी आपका ट्रीटमेंट, आपका IRB इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट और आपका सेटलमेंट आपको हर हालत में मिलता है। फिर एक बात यही कहूंगी, डेविड के कहे हुए अल्फाज में आपको दोबारा से दोहराती हूँ कि ये कोई मर्डर केस नहीं है जिसमें आप विन करेंगे या लूज करेंगे, ये विनिंग ही विनिंग है। हाँ, अलबत्ता डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कितनी सीवियर है। अगर आपको खुदा ना करे कोई फ्रैक्चर है तो ऑब्वियसली आपके सेटलमेंट का पैसा ज्यादा है। अगर आपकी माइनर इंजरी गाइडलाइन तो आपके आपकी सेटलमेंट का पैसा बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेन इंजरी है, कैटास्ट्रोफिक है, आपको लेगामेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट अगर कोई आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आपका पैसा है। क्योंकि जब हम इसको कहते हैं कि पेन एंड सफरिंग, इसका मतलब ही ये हो गया कि जितना आपको तकलीफ है, जितना आपने सफर किया, उस हिसाब से एक लॉयर उस पर जो है कोशिश करता है और आपको उसका पैसा दिलाता है जो आपने उस पेन को उठाया, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खराब हुई, जो आपकी परेशानियां हुई, उस चीज को आपका लॉयर इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेटलमेंट की मत में लेकर आपको देता है। आपने बस ये याद रखना है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है आपने राइट अवे मुझे कॉल करना है 416-570-0157। और इस वादे के साथ ये जिंदगी ने वफा की तो फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अंजुम कुरैशी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नंबर नोट करें 416-570-0157। इट्स 416-570-0157। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। अच्छा जनाब, जंगबंदी तो हो गई लेकिन इसराइल की तरफ से लेबनान में फिर जो है वो बमबारी की गई है। उसके बाद फिर आज कहा गया कि फिर दोनों फरीकैन जो हैं वो आपस में हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान फिर मुआहदा हो गए हैं और उसके बाद अब कोई लड़ाई नहीं होगी। अभी इस बात की समझ नहीं आ रही है, इसराइल शायद किसी तौर नहीं चाहता कि जंग बंद हो। और आज अमरीकी सदर ने भी सख्त बयान जो है सवाल दिया कि इसराइल जो है मेरी ही वजह से इसराइल है, मैं ना हूं तो इसराइल भी ना हो। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल चल रही है, आज डिफरेंट जो रहनुमाओं ने आपस में बात भी की है, प्राइम मिनिस्टर सऊदी वलीहद के दरमियान में टेलीफोनिक रबता हुआ, एक दूसरे को ईरान अमरीका माहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद भी दी गई है और इतफाक़ किया है कि ईरान अमरीका माहदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाना नागुजीर है और मुज़ाकराती अमल सबताज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शरारतें तो इसमें होंगी ही, क्योंकि अभी जो मुज़ाकरात होने थे जुमे को स्विट्ज़रलैंड में वो भी नहीं हुए हैं, कब होंगे इसके बारे में कोई इत्तला भी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो आपने हुरमज़ वाला मामला था और बाकी मामला थे वो कम अज़ कम बेहतर हो गए हैं, जिससे दुनिया भर की मईशत पर पॉजिटिव असर जो है वो नज़र आ रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
4: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111. Or visit mwcanada.org.
5: Radio Pakistan Toronto.
1: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। एक बार फिर आपके लिए चलेंगे मिड्डा फर्नीचर होलसेल गैलरी मिसिसागा ब्रैम्पटन स्कारबरो कैम्ब्रिज लंदन ओंटारियो में 5 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। 416-901-2810 midhafurniture.com इनकी वेबसाइट है। आप किसी से भी कंपेयर कर लें 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट आपको मिलता है। फादर्स डे की बहुत ही स्पेशल डील्स आपके लेकर आए हैं। मेरा साहब हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साहब वेलकम यू अगेन सर।
6: थैंक यू वेरी मच जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर है। फिर दोबारा से जो बहन भाई नए जुड़े हैं हमारे से सुनने वाले हैं, तो फादर्स डे आने वाला है, बड़े भाइयों को, छोटे भाई को, या हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पिता तुल्य हैं, उन सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले से यही अरदास दुआ कि आपका सेहत अच्छी रहे, आप खुशहाल रहें, धन धान्य से भरपूर रहें, और आपका बच्चों के साथ परिवार बना रहे, प्यार बना रहे
1: जी,
6: हमारे साथ भी आपका प्यार यूं ही बना रहे। यही बात फादर्स डे, तो मैंने पिछले लिंक में भी कहा था, फादर तो कहते स्तंभ होता है, फैमिली का वृक्ष होता है, सारी धूप सह जाता है और बच्चों पे छांव ही रखता है। रही बात फादर को, बच्चे तो कहते टोकन ऑफ लव भी दे दें तो फादर तो उसी से भी निहाल हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप तो जीते ही बच्चों के लिए हैं। रही बात हमारी तरफ से, हम चाहते हैं कि अगर सारे बच्चे मिलके, बिल्कुल स्पेशल फील कराना भी चाहिए डैड को, ये उनका एक दिन है। और जब मैं कहता हूँ आप मेरे बहन भाई हैं, अगर आप को कुछ फील कराना चाह रहे हैं तो इस भाई की भी इनपुट, जैसे वो बच्चे मिल मिलके करते हैं ना, तीन चारों पांचों भाई जो सिबलिंग होते हैं मिलके कुछ डैड के लिए लेते हैं, तो हमारी तरफ से अगर कुछ फर्नीचर का तोहफा लेना के, आप तोहफा लेकर देने के सोच रहे हैं, तो ईमान से ऐसे बोलने के लिए नहीं, जो कॉस्ट हमारी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट पे अपना प्रॉफिट छोड़ के वो अपना जो इनपुट हम देना चाह रहे हैं। और हमने तीन चार आइटमें सोची भी हैं जो कॉस्ट हमने ऑलरेडी लगा दी है। रिक्लाइनर चेयर 399 की लगाई है, तीन चार मॉडल हैं, अलग अलग कलर भी हैं, पावर रिक्लाइनर, कोई भी, जब मार्जिन ही नहीं लगाना तो डैड के लिए कुछ भी अगर जो आप लेना चाहेंगे तो ये आप क्योंकि आप देख लें। और इसके अलावा अगर डैड को साथ लाते हैं और फर्नीचर की कोई आइटम लेना चाहते हैं तो उसमें भी मार्जिन अपना कम कर देंगे, क्योंकि रिश्ता तो तभी बनेगा जब आपके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करके देंगे आपको। हम चाहते हैं आप एक बार आए तो सही, आए तो सही, अपना बनाए तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगेगा मिड्डा फर्नीचर पे आके। तो 416-901-2810 416-901-2810 हमारा नंबर है, middafurniture.com से भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत शुक्रिया मिड्डा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और हैप्पी फादर्स डे भी आपको। और बड़ी जबरदस्त बात है कि आप फादर्स डे के वाले से स्पेशल रीज लगा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। फिर आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करते हैं, थैंक यू।
6: थैंक यू,
1: नंबर नोट कीजिए 416-901-2810 416-901-2810 middafurniture.com इनकी वेबसाइट है। जदीद तरीन फर्नीचर आपको यहाँ पे मिलेगा और प्राइसेस ऑलवेज जो है कंपेयर करेंगे तो 10-30% डिस्काउंट मिलेगा। खबरें आपके लिए वर्दीन साहब पेश किया करते हैं। 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान और एफएम पे सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 647-295-7861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए। अपना ई मेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ई मेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, ताला भट्टी 647-295-7861 लिए चलेंगे आपको न्यूज की तरफ। जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
7: यू आर लिसनिंग टू सीएमआर एफएम 101.3।
8: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
0: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے